दोस्तों, सुबह सिर्फ शरीर को नहीं विचारों को भी जगाती है। थोड़ा चलिए, गहरी सांस लीजिए, खुला आसमान देखिए। जीवन कभी कभी बहुत आसान होता है, हम ही उसे बहुत कठिन बना देते हैं। कहते भी हैं, जो सुबह को अपना लेता है दिन उसका साथ देता है।

0: खबर किसको?
1: आहा।

हर दिन किसी और जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। आज अपने जैसा दिन बनाइए, एक मुस्कान बांटिए, एक अच्छी बात कहिए, जिंदगी का एक नया विचार सोचिए और देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगने लगेगी।

दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई सुबह, नए विचार और नई मुस्कान के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराइए और सुबह का स्वागत दिल से कीजिए। अपनी दोस्त अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 23वीं तिथि तदनुसार 13 जून 2026 सुबह के 5:53 और 34 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको एफएम गोल्ड पर प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आपसे कुछ देर बाद आप सुनेंगे 6:45 पर कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान के अंतर्गत बालकांड, 7:10 पर कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात प्रस्तुत करेंगी सुनीता चौहान, 7:30 कार्यक्रम आज सवेरे और सुबह 8 समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर और 8:30 न्यूज बुलेटिन उर्दू में प्रसारित किया जाएगा। 8:45 पर म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम पेश करेंगी सुनीता चौहान, 10:30 पर दिल का मेल बॉक्स रिक्वेस्ट पर आधारित कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी भावना सान्या। पर एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम तस्वीर, जिसमें हम आपको पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की तस्वीर सुनवाएंगे। इस कार्यक्रम को पेश करेंगी भावना सान्या। पर महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन प्रसारित किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे स्वास्थ्य के लिए नींद लेना आवश्यक है, घरेलू जीव जंतु के साथ भी अकेलापन दूर हो सकता है और अष्टांग योग पढ़ने की आदत जैसे विषयों पर भी जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी प्रतिभा नागपाल और सिमरन कौर।

दिन में 1:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीतकार प्रेम धवन को और ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी संगीता राय।

दिन में 2:30 बजे आप सुनेंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। सुबह के 6 बजने को हैं, वक्त हुआ है समाचारों का, आइए सुनते हैं समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने

0: पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed three

100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। समय हो रहा है 6:12 और 2 सेकंड। भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण के साथ मैं हूं सुनीता। नमस्कार, सुप्रभात।

महात्मा विदुर ने कहा, जो लोग आलोचना होने पर आपा नहीं खोते और तारीफ होने पर खुशी से पागल नहीं होते, वही ज्ञानी कहलाते हैं।

श्रीमद् भगवद गीता में उल्लिखित है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय नोट कर लें, 6:32 और 2 सेकंड। और आज अर्पण कार्यक्रम के साथ मैं हूं सुनीता

भगवान बुद्ध के अनुसार हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

समय मिला लीजिए 6:54 और 12 सेकंड, यही समय है हमारे स्टूडियो की घड़ी में और यह आकाशवाणी एफएम गोल्ड का स्टूडियो 100.1 MHz पर आप इसे ट्यून करते हैं। और अब समय हो चला है कि हम जाने देश दुनिया का हाल, सुने समाचार और समाचार के बाद एक बार फिर सुनीता होगी आपके साथ और प्रोग्राम रहेगा गोल्ड सुप्रभात। तो फिलहाल समाचार संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में और फिर लौट के आती हूं 7:10 पर लेकर प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात।

0: एक्शंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिफ्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में एससीओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुरक्षा संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इन बैठकों का उद्देश्य नीट पुनर्परीक्षा के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना, तैयारियों को मजबूत करना और परीक्षा की निष्पक्षता तथा विश्वसनीयता बनाए रखना है। परीक्षा 21 जून को होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कम्प्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। नई मुद्रास्फीति श्रृंखला के अंतर्गत लगातार 5वें महीने में महंगाई में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed 3 Indian mariners. In a post on social media platform, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after 3 Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau flag tanker MT Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. The vessel had 24 Indian crew members on board, of whom 21 were rescued, while the 3 missing sailors were later confirmed dead. Following the incident, India lodged a strong protest with Washington and summoned the U.S. Chartered Affairs in New Delhi. President Draupadi Murmu will review the passing out parade at the Indian Military Academy.

जून का सेकंड सैटरडे आप में से कुछ लोगों की छुट्टी होगी और कुछ काम पे निकलने की तैयारी कर रहे होंगे या निकल चुके होंगे। सिचुएशन कोई भी हो, हम हैं आपके साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 7:11 और 5 सेकंड सुनीता आ गई है गोल्ड सुप्रभात के साथ।

लता मंगेशकर जी की आवाज में ये सॉन्ग 1959 की फिल्म गेस्ट हाउस से, म्यूजिक चित्रगुप्त का था और गीत लिखा प्रेम धवन ने। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेम धवन जी सिर्फ गीतकार नहीं बल्कि कंपोजर और कोरियोग्राफर भी थे। यही नहीं, उन्होंने 50 के दशक में दो फिल्मों में अभिनय भी किया था। अम्बाला हरियाणा में उनका जन्म हुआ 13 जून 1923 को। वैसे अगर आप इस वर्सटाइल पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनना ना भूलें कलाकार बेमिसाल प्रोग्राम यहीं एफएम गोल्ड पर दोपहर 1:10 पर। और नेक्स्ट मैं प्ले कर रही हूं प्रेम धवन जी का कोरियोग्राफ किया हुआ एक बहुत ही हिट गाना फिल्म नया दौर से।

ये है आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:20 और 9 सेकंड। और वैसे गाना चलते चलते अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की के बाहर झांका तो पता चला कि जो सूरज है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है, बादलों के बीच में छुप गया है। और कारण ये भी हो सकता है कि जो रात को झमाझम बारिश हुई है और कुछ दिनों से मौसम ऐसा ही है तो उसे हम एंजॉय कर रहे हैं। दिन में बेशक बहुत गर्मी होती है, वैसे आज के बारे में भी मौसम विभाग कुछ यही कह रहा है कि आज भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और टेम्परेचर जो है मैक्सिमम 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 22 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। तो ये है गोल्ड सुप्रभात, मैं हूं सुनीता। फिलहाल मदहोशी वाला जो ये मौसम है उसे एंजॉय करते रहें।

मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बता दूं कि आज कौन से प्रोग्राम्स आप एफएम गोल्ड पर सुन पाएंगे। एक झलक दे देती हूं, दिल का मेलबॉक्स, ये रिक्वेस्ट बेस्ड शो आप सुनेंगे सुबह 10:30 बजे, 11:10 पर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की सैर प्रोग्राम तस्वीर में, और 12:10 पर होगा प्रोग्राम घर आंगन, और 1:10 पर कलाकार बेमिसाल में, जैसा मैंने पहले भी बताया, प्रेम धवन जी की बातें होंगी।

0: दिल में छुपा लूं।
1: प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात बस यहीं तक। अब समय है समाचार सेवा प्रभाग के प्रोग्राम आज सवेरे का, आइए सुनते हैं।
2: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार, सुप्रभात। घड़ी की सुइयां एक नए दिन की ओर बढ़ चुकी है। चाय की खुशबू भी शायद आपके आसपास होगी और हम हाजिर हैं आपके साथ इस सुबह को और भी खुशनुमा बनाने के लिए। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बात होगी आज की प्रमुख खबरों की, इतिहास में आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं की और उन महान लोगों की जिन्होंने अपने कार्यों से समाज पर गहरी छाप छोड़ी। तो शगुन, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: वेल, नमस्कार वैष्णवी एंड टू आवर लिसनर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वी आर डेल्विंग इनटू द फ्रेशनेस ऑफ द मॉर्निंग विद आवर डेली मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो टुडे एज ऑलवेज मी Shagun Chopra and Vaishnavi, we have for you headlines first, Metro City updates then follows, and also we will explore why today it's special. This is a special day. It's 13th of June today. We'll explore the history of this day as well in great detail, and this is our way of telling you that there is so much stuff that we have lined up for you, so much interesting stuff, and because of that, you have to stay listeners till the very end of the program. First, well, let's begin with the headlines.
0: जी, आज की पहली प्रमुख खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: From rockets and quantum technologies to artificial intelligence and advanced healthcare solutions, India's next generation of innovators is preparing to take center stage in France. Bharat Innovates 2026, a 3-day showcase of the country's deep tech ecosystem, opens at the Palais des Expositions in Nice tomorrow. Part of the India-France Year of Innovation 2026, the event will bring together startups, investors, researchers and policy makers and will be jointly inaugurated by Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron. From space technology and semiconductors to artificial intelligence and quantum communications, Bharat Innovates 2026 will showcase the depth of India's growing deep tech ecosystem on a global stage. More than 1,800 startups applied for participation, with just 120 making the final selection after a rigorous process. Chief Marketing Officer of Q New Labs, Mr. Sudipta Paul Chaudhary, has said that the event is designed to bring Indian innovators face to face with global investors, researchers and industry leaders in Nice.
3: We are one of the quantum cybersecurity leaders globally. We are very grateful to Government of India and our mentors giving us this platform, because we were incubated 10 years back in IIT Madras. This is where, you know, we got our validation, and now last few years our products had been already deployed in India in various sectors of critical infrastructure, armed forces, not just in India but also globally.
1: So, among the startups heading to Nice are Agnikul Cosmos, known for its 3D printed rocket engine Sarvam AI, which is building AI models for Indian languages, healthcare innovator Cure.ai. Let's listen to Chief Business Officer of FabHeads Automation, Nivas Valaman.
4: We are into developing automated solutions for carbon fiber, for manufacturing parts out of composites. We make parts like drone airframes, some components for fighter jets, and all lightweighting components basically. So we predominantly are there in defense, space and robotics and other sectors. So we are here at Bharat Innovates in Nice. We hope to showcase our innovations to the globe, to explain about how India is becoming the hub for manufacturing. So looking forward to the event.
1: For participating startups, the event is more than an exhibition. It is an opportunity to tell India's innovation story to the world, with leaders from government, academia and industry gathering under one roof. Bharat Innovates 2026 is expected to strengthen India-France cooperation in science and technology, while also showcasing India's growing capabilities in deep tech innovation. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has described this initiative as a national innovation movement reflecting India's commitment to not just developing cutting-edge technologies at home, but building global partnerships to create solutions for the world.
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद

0: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है।
1: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed three Indian mariners. In a post on X, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after three Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau flag tanker MT Sethabelo off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. The vessel had 24 Indian crew members on board, of whom 21 were rescued, while the three missing sailors were later confirmed dead. Following the incident, India lodged a strong protest with Washington and summoned the U.S. Charge d'Affaires in New Delhi. The Ministry of External Affairs said that it had conveyed its deep concern over the use of lethal force against civilian shipping and stressed that attacks on commercial vessels undermine the safety, security and stability of international maritime commerce.
0: और अब खेल जगत से कुछ खबरें। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था, वहीं यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
1: Another sports story, in the opening match of the 10th edition of the ICC Women's T20 World Cup, hosts England defeated Sri Lanka by 87 runs at Edgbaston in Birmingham. So put into bat first, England posted a massive 219 for 1 in their 20 overs, riding on Danny Watts and Hodges, unbeaten 105 runs. In reply, Sri Lanka were bowled out for 132 in 20 overs, so Danny Watt Hodge was named as the player of the match. The month-long tournament is being hosted across England and Wales, while the final will be played on 5th of next month at the iconic Lord's Cricket Ground.
0: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं देश के प्रमुख महानगरों की ओर, जहां से जानेंगे शहरों की हलचल और दिन भर की कुछ खास गतिविधियां। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी ने राजधानी में सार्वजनिक यातायात की पहुंच को और ज्यादा बेहतर बनाने और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी क्रम में डीटीसी ने एक नया रूट 806A का शुभारंभ किया है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: नया रूट 800A सेवा पापर वदगांव, नांगली, सकरावती, काकरोला और आसपास के इलाकों के नागरिकों को सीधा बस कनेक्टिविटी देगी। डीटीसी ने देवी रोड डी 6606 को शुरू किया है, जो उत्तम नगर टर्मिनल को डीडीए फ्लैट बकरवाला से जोड़ता है। डीटीसी ने रूट नंबर RL79 को द्वारका सेक्टर 23 पोचनपुर से आगे बढ़ाकर द्वारका सेक्टर 23B महादेव अपार्टमेंट्स तक कर दिया है। आदित्य प्रताप सिंह।
0: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजधानी में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए डेवलप रिस्पॉन्सिबल आउटलुक फॉर प्लास्टिक परियोजना DRPO का शुभारंभ किया है। ये पहल प्लास्टिक अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन को सुदृढ़ करने, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: We'll now head to Chennai, where scientists at the Indian Institute of Technology have built a three-dimensional atlas of the human brainstem, charting more than 200 structures at the resolution of individual cells, which is a feat which could transform how doctors diagnose and treat neurological diseases. The brainstem, a stalk-like structure connecting the brain to the spinal cord, controls breathing, sleep, wakefulness and movement, so the new atlas has been named Anchor. It works like Google Earth of the brainstem. A doctor can begin with an MRI scan, then zoom down the tissues through fiber tracks that work like internet cables carrying signals between brain regions all the way to a single cell. How interesting. So Ajay Kumar Sood, principal scientific advisor to the government of India, has said that these maps will then help identify specific cell populations affected in brainstem lesions, which could be critical for clinical applications.
0: और मुंबई की ओर अब रुख करते हैं। महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को कृषि क्षेत्र में अधिक अधिकार और पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार विधानसभा में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है, जिसके अंतर्गत महिला किसानों को स्वतंत्र किसान के रूप में कानूनी मान्यता दी जाएगी। मुंबई में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत खेती के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी और अन्य कृषि संबंधित कार्यों में लगी महिलाओं को भी किसान माना जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 अगस्त 2026 से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अमृत वरिष्ठ नागरिक योजना के लाभार्थियों के लिए एमएसआरटीसी बस सेवाओं में यात्रा करने के लिए एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्मार्ट कार्ड अनिवार्य होगा। अब तक 51 लाख से अधिक लोगों ने कार्ड के लिए पंजीकरण कराया है, जबकि 25 लाख नागरिकों को कार्ड जारी कर सक्रिय किया जा चुका है।
1: नाउ वी आर हेडिंग टू बेंगलुरु। वैष्णवी, Union Heavy Industries and Steel Minister H.D. Kumaraswamy addressed the 65th Foundation Day celebrations of the Central Manufacturing Technology Institute in Bengaluru yesterday. The minister said that Prime Minister Narendra Modi has placed unprecedented emphasis on manufacturing-led growth and employment generation. These efforts, he added then, that have accelerated industrial growth and generated large employment opportunities. H.D. Kumaraswamy informed that the Central Manufacturing Technology Institute, headquartered in Bengaluru, is making significant contributions to the research in the strategic sector, and it will be provided financial and institutional support to strengthen its capabilities so as to expand its national footprint.
0: और अब बेंगलुरु से चलते हैं कोलकाता की ओर। पश्चिम बंगाल की नई सरकार आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के लिए जन कल्याण शिविर शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अगले सोमवार को करसियांग में इस पहल का शुभारंभ करेंगे। 15 से 17 जून तक राज्य के सभी ब्लॉक में 3 दिनों के लिए शिविर लगाए जाएंगे।
1: नाउ वील हेड टू हैदराबाद। Defence Minister Rajnath Singh has emphasized the importance of equipping India's armed forces with state-of-the-art systems in adequate quantity and at the right time to meet future challenges, highlighting that success in warfare depends not only on technological superiority but also on large-scale production capabilities. He urged the Defence Research and Development Organisation, DRDO, the armed forces and industry partners to function as an integrated ecosystem. He called on DRDO to treat production as an essential part of development, aiming to reduce the gap between innovation and mass production. He stressed further the need to simplify manufacturing processes, increase indigenous content, and ensure rapid scalability of technologies for the defense sector. Noting the government's efforts over the past 12 years to promote research and development under the Make in India and Atmanirbhar Bharat initiatives, Rajnath Singh praised DRDO's role in transforming the defence ecosystem through greater collaboration with public sector units, private industry, startups, MSMEs and academia.
0: और शगुन, अब बात कर लेते हैं महानगरों के मौसम के बारे में। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से काफी राहत दी है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। शगुन, ऐसे में राजधानी का मौसम सुहावना बने रहने की संभावना है।
1: दिस इज व्हाट वी हैव ऑल बीन वेटिंग फॉर।
0: बिल्कुल। और श्रोताओं, आज का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
1: थैंक गॉड इट्स नॉट 40। सो चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 28 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज।
0: वहीं मुंबई में आज मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
1: एंड बेंगलुरु विल हैव सेम वेदर कंडीशंस लाइक चेन्नई। It is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees.
0: कोलकाता में बारिश और आंधी का अनुमान व्यक्त किया गया है। बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है।
1: So Hyderabad, this is also expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature, minimum temperature will be around 28 degrees Celsius. And maximum temperature will be around 38 degrees Celsius in Hyderabad.
0: जी, और अब समय है इतिहास के उन महत्वपूर्ण पन्नों को पलटने का जो आज के दिन से जुड़े हैं, लेकिन उससे

0: मेरे शगुन आज के दिन की एक खास विशेषता श्रोताओं को बताते चलते हैं।
1: श्योरली
0: श्रोताओं, आज 13 जून को विश्वभर में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य एल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और समाज में समानता एवं सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करना है।
1: वेल राइट, सो एल्बिनिज्म इट इज अ रेयर non-contagious, genetically inherited difference present at birth, and in almost all types of albinism, both parents must carry the gene for it to be passed on, even if they do not have albinism themselves. So this year's theme, it is proudly in my skin, celebrating all skin tones, and this draws specific attention to how color-based discrimination can affect dignity, safety and well-being, mental well-being. So Vaishnavi, color-based discrimination can appear in everyday ways that are often dismissed as harmless. These include prolonged staring, mocking comments, exclusion, stereotypes or dehumanizing लैंग्वेज।
0: बिल्कुल सही कहा आपने शगुन, ये दिन हमें ये संदेश देता है कि हर व्यक्ति को समान अवसर, सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए, चाहे उसकी शारीरिक बनावट या विशेषताएं कैसी भी हों।
1: श्योर, एंड दिस 2026 इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, इट एक्चुअली कॉल्स ऑन अस टू कन्फ्रंट प्रेजुडिस, सेंटर द वॉइसेस ऑफ पर्संस विद एल्बिनिज्म, एंड थर्ड वन, एडवांस एनवायरमेंट्स व्हिच आर ग्राउंडेड इन इक्वालिटी, सेफ्टी एंड इंक्लूजन।
0: तो श्रोताओं, ये तो थी आज के दिन की विशेषता, और अब पलटते हैं इतिहास के उन अहम पन्नों को जो 13 जून के नाम दर्ज है।
1: जी, फर्स्ट वील टेक आर लिसनर्स वे बैक इन टाइम इन द ईयर 1878, वेयर व्हेन कांग्रेस ऑफ बर्लिन बिगैन ऑन जून 13th, व्हिच वाज अ डिप्लोमेटिक मीटिंग ऑफ द मेजर यूरोपियन पावर्स, एट व्हिच द ट्रीटी ऑफ बर्लिन रिप्लेस द ट्रीटी ऑफ सैन स्टेफानो। And in 1932, England and France signed a peace treaty on this day, 13 June.
0: और 1940 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लेने वाले भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह को लंदन की पेंटनविल जेल में फांसी दी गई थी।
1: In 1971, the New York Times began publishing the top-secret Pentagon Papers, exposing the classified history of U.S. political and military involvement in Vietnam. In the year 2000, the historic Inter-Korean Summit took place from today to June 15th, 2000 in Pyongyang, marking the first ever meeting between the leaders of North and South Korea since the peninsula's division.
0: और 2002 में अमेरिका आधिकारिक रूप से 1972 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से अलग हो गया, जिसके साथ ही ये संधि समाप्त हो गई। वहीं 2003 में आज ही के दिन दानियल अखमतोव को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, और 2005 में भारत और ईरान के बीच लगभग 22 अरब डॉलर का एक ऐतिहासिक एलएनजी समझौता हुआ। इसके अंतर्गत ईरान ने वर्ष 2009 से अगले 25 वर्षों तक भारत को प्रतिवर्ष 50 लाख टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात करने पर सहमति व्यक्त की थी। और शगुन, अब आज के दिन से जुड़े उन अहम नामों की बात करते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी थी।
1: वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सेगमेंट।
0: जी, राजस्थान की धरती से जुड़े एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी जिनका नाम इतिहास की किताबों में बहुत कम मिलता है, लेकिन उनकी कुर्बानी आज भी बूंदी के गांवों में जिंदा है। नानक भील। आज ही के दिन 1922 में बूंदी के डाबी गांव में किसानों की एक सभा के दौरान अंग्रेज पुलिस ने अचानक गोलीबारी कर दी। उस अफरा तफरी में भी नानक भील डरे नहीं, उन्होंने झंडा थामे रखा, झंडा गीत गाते रहे और अंग्रेजों का विरोध जारी रखा। इसी दौरान गोली लगने से वे शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद इलाके के किसानों में एक नई जागृति आई, और आज भी उनके याद में मेले लगते हैं और कई जगह मूर्तियां भी स्थापित हैं।
1: वेल, वी सैल्यूट द ब्रेव हार्ट।
0: आज हम याद कर रहे हैं उस वीर सैनिक को जिनकी शहादत कारगिल युद्ध के सबसे गर्वीले पलों में दर्ज है, मेजर मनोज तलवार। मुजफ्फरनगर के इस जाबाज अफसर ने 1999 में आज ही के दिन करगिल के टुरटुक पहाड़ियों पर दुश्मनों को परास्त कर तिरंगा लहराया, और इसी दौरान दुश्मन के तोपखाने के हमले में वे शहीद हो गए। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी शहादत आज भी हर भारतीय के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। और श्रोताओं, आज ही के दिन एक और वीर सपूत ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, मेजर विवेक गुप्ता। देहरादून में जन्मे मेजर विवेक गुप्ता ने 12 जून 1999 की रात तोलोलिंग चोटी पर पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ

0: अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और दुश्मनों को पीछे धकेलने में अहम भूमिका निभाई। इस अदम्य साहस के दौरान वे शहीद हो गए। उनकी असाधारण वीरता और नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के युद्धकालीन सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: Well, yes, we were telling you about Major Vivek Gupta, the officer in the Indian Army, and for his actions, he was conferred posthumously with Mahavir Chakra. We salute the brave heart. Today, we are also remembering W.B. Yeats. Well, the Irish poet and writer and literary critic, one of the most foremost figures of the 20th century literature, he was a driving force behind the Irish literary revival. And he was awarded the 1923 Nobel Prize in Literature and later served two terms as a senator of the Irish Free State as well. His early poetry, it was influenced by John Keats, William Wordsworth as well, big names. These topics feature in the first phase of his work. Well, then he had actually become the chief playwright for the Irish Literary Theatre in 1897. His major works include The Land of Heart's Desire and The Wild Swan School and The Tower.
0: हिंदी साहित्य की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ कलम से बल्कि अपने विचारों से भी समाज को झकझोरा, मुद्रा राक्षस। उनका मूल नाम सुभाष चंद्र गुप्ता था। लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक और व्यंग्यकार, हर भूमिका में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने कई नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह और व्यंग संग्रह लिखे, जिनमें आला अफसर, कालातीत, नारकीय, दंडविधान और हस्तक्षेप जैसी कृतियां शामिल है। उनके योगदान के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान और संगीत नाटक अकादमी सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लंबी बीमारी के बाद 83 साल की उम्र में 2016 में आज ही के दिन लखनऊ में उनका निधन हो गया था।
1: टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग अ बैंड लीडर क्लैरिनेटिस्ट बेन्यामिन डेविड गुडमैन, बेनी गुडमैन एक्चुअली, द किंग ऑफ स्विंग। ही इज ऑल्सो नोन एज द क्वींग ऑफ स्विंग। सो फ्रॉम 1935 अंटिल द मिड 1940s, बेनी गुडमैन लेड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्विंग बैंड्स। सो हिज अदर कॉन्सर्ट्स, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैज और पॉपुलर म्यूजिक कॉन्सर्ट इन हिस्ट्री, इज डिस्क्राइब्ड एज जैज़ कमिंग आउट पार्टी टू द वर्ल्ड ऑफ रिस्पेक्टेबल म्यूजिक। ही कंटिन्यूड परफॉर्मिंग अंटिल द एंड ऑफ हिज लाइफ वाइल पर्स्यूइंग एन इंटरेस्ट In classical music, we have one of his creations. It's called Moon Glow. Let's listen in.

0: So Benjamin David Goodman, I told you we call him King of Swing. His fans actually used to play clarinet, and from 1935 until the mid 1940s he actually started his band then, and he has been very popular among the instrumental music sections.
1: आज हम याद कर रहे हैं हिंदी कविता की एक खास आवाज कीर्ति चौधरी को। वे अज्ञेय द्वारा संपादित प्रसिद्ध संकलन तीसरा सप्तक की एकमात्र कवित्री थी। उनकी कविताओं में एक अलग ही बनावट और गहराई थी, कुछ ऐसा जिसने हिंदी कविता में महादेवी वर्मा के बाद आई एक खालीपन को भरने का काम किया। साहित्य उनके ही विरासत में मिला था। उनकी माँ सुमित्रा कुमारी सिन्हा खुद एक जानी मानी कवित्री और गीतकार थी।
0: Today, listeners, we are also remembering another musician, Clyde Lensley McFatter, rhythm and blues, soul and rock and roll singer, a singer-songwriter as well. He was one of the most widely imitated R&B singers of the 1950s and early 1960s and was a key figure in the shaping of doo-wop and R&B, both of which are styles of music.

0: श्रोताओं, लक्ष्य कितना भी दूर क्यों ना हो, अगर निशाना अडिग हो तो सफलता रास्ता खुद बना लेती है। भारतीय तीरंदाजी की दुनिया में ये बात सबसे बेहतर ढंग से साबित करती हैं दीपिका कुमारी, जिनका जन्म आज ही के दिन 1994 हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक दीपिका ने अनेक पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है।
1: वेल, टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग द लिरिसिस्ट एंड कंपोजर प्रेम धवन।
0: जी शगुन, कुछ लोग गीत लिखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने शब्दों से पूरे दौर की भावनाओं को आवाज दे देते हैं। ऐसे ही रचनाकार थे प्रेम धवन, जिनका जन्म आज ही के दिन 1923 को हुआ था। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार, संगीतकार और कवि प्रेम धवन ने देशभक्ति, प्रेम और मानवीय संवेदनाओं से भरे अनेक गीतों की रचना की थी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए प्रेम धवन के शब्दों की ताकत को महसूस करते हैं उनके लिखे एक यादगार गीत को सुनकर।

श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए वैष्णवी और शगुन को आज सवेरे कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।

0: घर खर्च के पैसे 2,000 जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक

0: किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड तालित जैन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया? इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
2: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
2: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with US Secretary of State Marco Rubio over US strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's singles semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a 2-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's 7th official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the

0: Paraguay's Damian Bobadilla for an own goal. The game quickly grew intense in the ninth minute when Paraguay defender Jean-Jose Caquez received a yellow card for a hard foul. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. According to IMD, conditions are favourable for further advance of southwest monsoon into some more parts of Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, West Bengal, Orissa, Jharkhand, Bihar and Chhattisgarh during the next 2 days. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shakun Chopra.
1: Thank you, Sarabjit. Almost all newspapers today open with condemnation of US attack on ship with Indian crew. The Asian Age writes, India flays Hormuz ship attacks, US blames Iran. Hailing diversification of its energy basket, EAM calls out West's double standards on oil purchases, writes the Statesman. In the backdrop of US and Iran signing peace deal, war premium to peace dividend, stock surge, crude cools and the rupee rebounds on hopes of easing tensions, reports the Financial Express. Termed as student-friendly changes, extra 15 minutes, more rough work space for students in NEET retest, informs the Hindustan Times. Rain, strong winds deliver city its cleanest air since September 15th, reports the Times of India. The Statesman on its editorial page under the caption Demanding Proof writes, for much of the past 2 years, investors appeared willing to suspend disbelief. Artificial intelligence was not merely a promising technology, it became the foundation of a market narrative. Share prices soared, valuations stretched, and every earnings season was interrupted through the lens of an AI-driven future. The recent turbulence in global stock markets suggests that this phase may be ending. Technological revolutions have always generated excitement, but financial markets eventually demand evidence. And finally, under the caption Peck Party, the Delhi Tribune captures a serene picture of a parrot and black-rumped flame-back woodpecker feeding on a wall. And with that, it's back to you, Sarabjit.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with US Secretary of State Marco Rubio over US strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it open to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australian Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। डीआरडीओ ने कसीर सतही बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार 3 कामयाब तजुर्बे किए हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने तेल जहाजों पर अमरीकी हमलों के बारे में, जिनमें 3 भारतीय जहाजी हलाक हो गए हैं, अमरीकी वजीर खारजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अजायम को दोहराया है। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम के लिए तैयार है। बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। और फीफा आलमी कप में लॉस एंजलिस में ग्रुप डी के एक मैच में अमेरिका और पैराग्वे के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान भारत की शराकतदारी में मजीद गहराई पैदा करना है। इस दौरे से यूरोपीय यूनियन के साथ और ज्यादा वसी दिफाई शराकतदारी की जानिब भारत के अज़्म को दोहराए जाने की भी अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के पहले मरहले में नीस जाएंगे, यहां वो कल सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ दो तरफा मीटिंग करेंगे। दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दो तरफा ताल्लुक

0: के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे और भारत इनोवेट्स तकरीब का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में भारत, फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा इख्तराई स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स यकजा होंगे। वो स्लोवाकिया के अपने हमनसब रॉबर्ट फीको से बातचीत करेंगे और तआवुन के नए मौके दरियाफ्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म का साल 2014 के बाद फ्रांस का सातवां सरकारी दौरा होगा। इस दौरे को खसूसी सिफारती हैसियत हासिल है क्योंकि इस साल भारत फ्रांस ताल्लुकात को खसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदलने के बाद ये जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के दरमियान पहली दोतरफा चोटी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के एवियों में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जो इस बात की यकीन दहानी होगी कि भारत आलमी स्टेज पर आलमी खित्ते जुनूब की मजबूत आवाज बना हुआ है। पेश है फ्रांस के नीस से हमारे नुमाइंदे की खसूसी रिपोर्ट।
1: फ्रेंच रिवियरा शहर नीस में आज शाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयारियां हैं, जहां इस साल की सबसे अहम सिफारती मुलाकातों में से एक मुलाकात होने वाली है। आज शाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी होटल पहुंचेंगे, जहां वो जुनूबी फ्रांस की भारतीय बिरादरी की जानिब से मुनाकिद कम्युनिटी ज़ियाफ़त में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ पैलेस दिस एक्सपोजिशंस दी नीस में भारत की अहम इख्तिराई नुमाइश भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान फ्रांस और दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियां, सरकर्दा सरमायाकार और सनती रहनुमा यकजा होंगे। इस नुमाइश के दौरान डीप टेक, मसनूई जहानत और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत को आलमी मकाम के तौर पर पेश किया जाएगा। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाक जमहूरिया का दौरा करेंगे। पेश है ब्रतिस्लावा से हमारे खसूसी नुमाइंदे की एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाक जमहूरिया की राजधानी ब्रातिस्लावा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पहले दौरे के लिए तैयार है। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के वज़ीर-ए-आज़म फीको से बातचीत करेंगे और तआवुन के नए इम्कान तलाश करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी स्लोवाकिया के सदर पिल्ले गिरिनी से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी दौरा अहमियत का हामिल है क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत में लगातार इजाफा हो रहा है और ये साल 2024 के 1 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर गुज़िश्ता साल 1.8 अरब अमरीकी डॉलर हो गई। ये दौरा यूरोपीय यूनियन रुकन ममालिक के साथ तआवुन को मजबूत करने के भारत के अहद को मजीद तकवीत देगा। स्लोवाक जमहूरिया के ब्रातिस्लावा से सीएम पल्लोरसी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड का जायजा लेंगी। इस साल की पासिंग आउट परेड तारीखी अहमियत की हामिल रहेगी क्योंकि पहली मरतबा खवातीन कैडेट्स मर्द कैडेट्स के साथ मार्च करेंगी। इस अजीमोशान तकरीब में 500 से ज्यादा मर्द और खवातीन कैडेट्स भारतीय फौज में अफसर के तौर पर कमीशन लेने के लिए आखिरी कदम उठाएंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड महज एक फौजी रिवायत नहीं होती, बल्कि ये मुल्क की खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवान अफसरान के नए सफर के आगाज की अलामत भी होती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO को परवाजों के लगातार 3 कामयाब तजुर्बों पर मुबारकबाद दी है, जिसे ज्यादा दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल और औसत दूरी वाले बहरी जहाज शिकन सलाहियत पर वार करने वाले कसीर सतही दिफाई निजाम का मुजाहरा होता है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि इन तजुर्बों से भारत उन मुल्कों में शामिल हो गया है जिनके पास बैन बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिसाइल तक बैलिस्टिक मिसाइलों को काम में लाने की सलाहियत मौजूद है। जनाब सिंह ने कहा कि DRDO ने एम टेक्नोलॉजी के साथ कामयाबी का इजहार किया है, जिससे दुश्मन की तरफ से मुख्तलिफ खतरों से निमटने वाली मुल्क की दिफाई सलाहियतों में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि इस तजुर्बे में कसीर सतही वाली बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत और दुश्मन के हथियारों को फिजा में ही कामयाबी के साथ मार गिराने की नुमाइश की गई। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह निजाम मिसाइलों के उभरते हुए खतरों से निमटने के लिए ताजा तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया गया है। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो से बात की और अमरीकी बहरिया के जरिए खलीज में किए गए उन हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया जिनमें 3 भारतीय मल्लाहों की मौत हो गई थी। एक्स पर अपनी पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि तिजारती बहरी जहाजों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाइयों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ओमान के साहिल के करीब पलाऊ के झंडे वाले टैंकर MT सेटाबेलो पर अमरीकी हमले में अमले के 3 अराकीन की मौत के कुछ दिनों बाद ये बातचीत हुई है। ये हमले नई दिल्ली के सख्त रद्दअमल की वजह बने हैं। बहरी जहाज के हमले में 24 भारतीय शामिल थे, जिनमें से 21 अफराद को बचा लिया गया, जबकि दीगर 3 मल्लाह पहले लापता करार दिए गए और बाद में उनकी मौत की तस्दीक।

0: गई। इस वाकये के बाद भारत ने वाशिंगटन के साथ अपना सख्त एहतजाज दर्ज कराया और नई दिल्ली में अमरीका के शॉज डी अफेयर्स को तलब किया। वजारत खारजा ने कहा कि उसने शहरी जहाजरानी के खिलाफ जानलेवा ताकत के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि तिजारती बहरी जहाजों पर हमले बैनुल अक्वामी बहरी तिजारत की सेफ्टी, सलामती और इस्तेहकाम की अहमियत को कम करते हैं। इससे पहले वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा था कि अमले के भारतीय अफराद को ले जा रहे मर्चेंट जहाजों पर हमले फौरी तौर पर रोके जाने चाहिए। जनाब जायसवाल ने खित्ते में अमनो इस्तेहकाम की जल्द वापसी को यकीनी बनाने के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अपील की है। भारत और बांग्लादेश ने भारत बांग्लादेश सरहद पर अमनो सुकून और इस्तेहकाम बरकरार रखने के तहत अपने अज्म को दोहराया है। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के दरमियान नई दिल्ली के बीएसएफ हेडक्वार्टर में 8 से 11 जून तक डायरेक्टर जनरल सतह की 57वीं बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई। इस कॉन्फ्रेंस ने सरहद की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेने और सरहदी सलामती और सरहदी इंतजाम से मुतालिक बाहमी तशवीश के मौजूदात पर तबादला ख्याल के लिए अहम प्लेटफार्म फराहम किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान फरीकैन तालमेल पर मबनी गश्त, चौकसी बढ़ाने, हकीकी वक्त में मालूमात के तबादले और सरहद पार जराइम नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को तेज करने से मुत्तफिक हो गए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी तर्ज के मिजाइल निजाम की गैर मामूली कारकर्दगी से भारतीय दिफाई तहकीक और तैयारी इको निजाम की बढ़ती ताकत का इजहार होता है। वजीर दिफा ने हैदराबाद के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम मिजाइल कॉम्प्लेक्स के हिस्से के तौर पर डीआरडीओ डीआरडीएल में जदीद तरीन हथियारों के निजाम की इमारत का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीआरडीओ की जानिब से तैयार करदा निजाम जैसे आकाश और ब्रह्मोस ने आलमी दिफाई टेक्नोलॉजी इको निजाम में मुकाबला आरई की भारतीय सलाहियत का मुजाहरा किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
0: वजीर दिफा ने तेजी से बढ़ती आलमी गैर यकीनी सूरत हाल और इर्तका पजीर जंगी हरबों की नौयत के पस मंजर में कौमी सलामती मफादात की हिफाजत के लिए लचकदारियत और जंग से बाज रखने की सलाहियत हासिल करने की अहमियत पर जोर दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि वो एक वसीतर न्यूक्लियाई माहदे के तौर पर ईरान में न्यूक्लियाई ताउन के सिविल प्रोग्राम को तस्लीम करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि ईरान अपने वो बुनियादी ढांचा मुनहदिम कर दे जिससे वो न्यूक्लियाई हथियार बना सकता है। ये वजाहत कल एक सीनियर इंतजामी अफसर ने की जिसमें एक मुजवजा अमरीका ईरान न्यूक्लियाई माहदे की तफसीलात बताई गई हैं। अफसर ने बताया कि इस माहदे पर महज चंद रोज में ही दस्तखत किए जा सकते हैं। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी के तकरारात से मुतालिक तरीकेकार का जायजा लेने के लिए भारतीय रेलवे के सीनियर अफसरान के साथ कल आला सतही जायजा मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग के दौरान जनाब वैष्णव ने ज्यादा शफाफ, दुरुस्त और टेक्नोलॉजी पर मबनी निजाम की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने महकमा जाती इम्तिहानात की कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड की जानी मुंतकली की पेशरफ्त का भी जायजा लिया और कहा कि तकरारात के अमल को तेज रफ्तार, मौसर और उम्मीदवारों के लिए आसान बनाने के लिए और ज्यादा टैबलेट पर मबनी इम्तिहानात मुतारिफ कराए जाने चाहिए। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में पिछले 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसूलों के तहत काबिल जिक्र तब्दीलियां हुई हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के सकाफती विरसे को मुस्तहकम बनाने और इसका जश्न मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदाम का जिक्र कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 12 साल में भारत का सकाफती सफर काफी तेज रफ्तार रहा और यह सफर भारत की रवायतों से वाबस्ता नीज दुनिया के लिए काबिल-ए-दीद है। काशी विश्वनाथ राहदारी महाकाल लोक प्रोजेक्ट, मां कामाख्या मंदिर की तजदीद, जूना सोमनाथ मंदिर की तामीर नो और अयोध्या में राम मंदिर का कयाम मोदी हुकूमत के काबिल जिक्र इकदाम हैं। इनमें एक कदम म्यूजियम ग्रांट स्कीम और सकाफती का कारकर्दगी नीज पैदावार से मुतालिक ग्रांट स्कीम भी है। इन स्कीमों से भारत के तहजीबी विरसे को तहफ़ देने में मदद मिली है और साथ ही साथ सकाफती तखलीक और समाज के निचले तबके की इसमें शिरकत काबिल जिक्र है।

0: ड्रामे से वाबस्ता यूनियन सोरखाइम्बम शरतचंद्र ने हुकूमत के तई इजहार तशक्कुर किया कि उसने बड़े माली फ्रेमवर्क के जरिए खित्ते के फनून लतीफा को मजीद मुस्तकम बनाया। आज भारत की ये मालामाल सकाफत न सिर्फ मुल्क में अपने जलवे बखेर रही है बल्कि उसकी रोशनी दुनिया भर में फैल रही है। न्यूज डेस्क से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सिडनी में भारत की पीवी सिंधु का मुकाबला आलमी चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा आलमी कप में अमरीका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। मैच की शुरुआत से अमरीका मुकाबले पर हावी रहा। खेल शुरू होने के सिर्फ 6 मिनट बाद पैराग्वे के खिलाड़ी डेमियन बोबोडुइला ने गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गोल कर दिया। कुछ देर बाद पैराग्वे के डिफेंडर जोस कैसेरस को हार्ड फाउल की बिना पर येलो कार्ड दे दिया गया। इससे पहले मुश्तरक मेजबान कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। कनाडा की जानिब से साइल लेरिन ने जबकि बोस्निया की जानिब से जोवो लुसिक ने 1-1 गोल किए। इसके नतीजे में कनाडा ने फुटबॉल आलमी कप का पहला पॉइंट हासिल कर लिया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजाम इनकलाब ने बहरे ओमान में एहतियाती बहरी जहाज पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय जहाजरानों की मौत पर रात खारजा की जानी से एहतियात दर्ज कराने के लिए अमरीकी नाजिम उमूरों को तलब किए जाने से मुतालिक खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। रात खारजा ने उन्हें अपनाए हुरमुज में भारतीय शहरियों की हिफाजत और सलामती के बारे में भारत के खदशात से आगाह किया। इनकलाब ने कांग्रेस की लीडर मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामजदगी को मुस्तरद किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी को खारिज किए जाने से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अदालत ने इस तरह की दरखास्तों पर समाअत न किए जाने का जिक्र करते हुए इसमें किसी तरह की मुदाखलत से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने ग्लोबल कन्वर्जेंस फॉर ग्रोथ समिट की वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात का सबसे ज्यादा मनफी असर तरक्की पज़ीर ममालिक पर पड़ता है। इस खबर को रोज़नामा प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
1: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। DRDO ने कसीर सतही बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई सलाहियत के इजहार के लिए लगातार 3 कामयाब तजर्बे किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तेल जहाजों पर अमरीकी हमलों के बारे में जिनमें 3 भारतीय जहाजी हलाक हुए हैं अमरीकी वजीर खारजा से सख्त एहतजाज जाहिर किया है। भारत और बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर अमन सुकून बरकरार रखने के अपने अज़्म को दोहराया है। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा अमन माहदे के तहत ईरान के सिविल न्यूक्लियाई प्रोग्राम के लिए तैयार है। और बैडमिंटन में आज ऑस्ट्रेलियन ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आलमी चैंपियन अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से ये खबरनामा खत्म हुआ।

सैटरडे मॉर्निंग सुनीता है आपके साथ। 8:45 हो चुके हैं, म्यूजिकल जिंदगी का टाइम है ये। यह आपका अपना आकाशवाणी FM गोल्ड, और अर्ज किया है कि खूबसूरत है आंखें तेरी रात को जागना छोड़ दे, खूबसूरत है आंखें तेरी रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझको सोचना छोड़ दे।

0: मुकेश जी और कंचन का डुएट, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इंदिवर के बोल। ये फिल्म थी 1975 की धर्मात्मा। वैसे आपकी खूबसूरती को बढ़ाने में आपके कपड़े बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, ये तो आप भी मानते होंगे ना। और इन्हीं कपड़ों से मुझे याद आ रही है सिलाई मशीन, क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्सों में आज यानी 13 जून को नेशनल सोइंग मशीन डे के तौर पर मनाया जाता है।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख।

0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
1: म्यूजिकल दिल्ली की आप एंजॉय कर रहे हैं सुनीता के साथ, यह स्टूडियो एफएम गोल्ड का। अगला गाना मैं प्ले कर रही हूं फिल्म कभी कभी से, आवाजें लता जी और किशोर दा की, बहुत ही प्यारा सा गाना।

जिंदगी के इस पहले सेगमेंट का अंतिम पड़ाव आ पहुंचा है। तो अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते या फिर जल्द ही आपसे होगी फिर मुलाकात। आप बस हंसते मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की सातवीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
1: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024 में $1 अरब से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर $1.80 अरब तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से इसमें

0: उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोमनाथन ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और सुचारू संचालन को किसी भी तरह से प्रभावित करने या बाधित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रेलवे अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड की भर्ती प्रक्रिया की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में श्री वैष्णव ने अधिक पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने विभागीय परीक्षाओं को कम्प्यूटर आधारित कराने की दिशा में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित करने का प्रस्ताव है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान को समृद्ध परमाणु ऊर्जा सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को भी नष्ट करना होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्वकप में अमरीका ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया है। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to France and Slovakia from today to further deepen India's partnership with two European nations. The visit will also reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. In the first leg of the visit, the Prime Minister will visit Nice for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will review the full spectrum of the India-France bilateral relationship and jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which will bring together top innovation startups and venture capital funds from India, France and other countries. On the second leg of his visit, Mr. Modi will pay visit Slovakia. He will hold talks with his Slovakian counterpart, Robert Fico, and explore new avenues of cooperation. On the third leg of the visit, the Prime Minister will participate in the G7 summit in Avignon, France, on 16th and 17th of this month. During the summit, he will exchange views with G7 leaders and those from invited partner countries and international organizations participating in the summit. On the final leg of the visit, the Prime Minister will visit Paris on the 18th June for further bilateral engagements and to attend the Europe's largest technology and startup event, WeaveTech Summit. Mr. Modi is also expected to address the members of the Indian community in Paris. Prime Minister's presence at the G7 reflects India's standing as a leading voice of the Global South and a key partner in addressing global challenges. Defence Minister Rajnath Singh today congratulated Defence Research and Development Organisation DRDO for successfully conducting 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layer defence against long-range ballistic missiles and anti-ship capability at medium range. In a social media post, the minister said that these tests have put India in an elite group of nations having ballistic missile defense capabilities to engage ballistic missiles up to intercontinental ballistic missile. Mr. Singh said that DRDO has successfully demonstrated multiple crucial technology bolstering nations' defense capabilities against

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूँ आपके साथ भावना।

मुलाकात हो तो दिल लग जाए और दिल लग जाए तो फिर मुलाकात बिन रहा ना जाए, इसलिए मुलाकात करिए लेकिन संभल कर। देखिए जनाब, सीधी सी बात है, सावधानी हमेशा रखनी चाहिए, इंसान को हमेशा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और यही बात सड़क पर चलते वक्त भी लागू होती है। अगर आपको सीधे हाथ की तरफ यानी राइट जाना है तो गाड़ी को राइट लेन में ही रखें, और अगर लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट लेन में रखिए ना, क्योंकि अगर सड़क पर आपकी गाड़ी दूसरी दिशा में है और आपको जाना दूसरी दिशा में है तो गाड़ी मोड़ते वक्त आपको भी परेशानी होगी और पीछे से आने वाले वाहन को भी। ट्रैफिक रूल्स का पालन करिए, स्वयं भी सुरक्षित रहिए और अपनी गड्डी को भी सुरक्षित रखिए। हमेशा जोश में गाड़ी चलाते वक्त होश को भी साथ में रखना अति आवश्यक है बंधुवर।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: सौ.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। ये है म्यूजिकल दिल्ली, मैं हूं आपके साथ भावना।

प्यार बढ़ाना है और भेदभाव हटाना है। आज है 13 जून और आज है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस। ये एक तरह की बीमारी है। इसमें क्या है ना, जो इससे प्रभावित लोग होते हैं उनके बाल त्वचा पूरी तरह से सफेद होते हैं और आंखें गुलाबी होती हैं या फिर हल्की नीली स्लेटी रंग की हो सकती हैं। हमारे शरीर में ना मेलानिन नामक एक पिगमेंट होता है। इस बीमारी में इस पिगमेंट का निर्माण बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं होता है शरीर के अंदर, और मेलानिन ही हमारी त्वचा बालों और आंखों के रंग को तय करता है। इससे क्या होता है कि त्वचा जो है ना पराबैंगनी किरणों के प्रति यानी यूवी किरणों के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाती है और धूप में जाने से बचना पड़ता है। दृष्टि संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस बीमारी से जो पीड़ित लोग होते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाने लगता है। उन्हें लगता है कि ये अलग तरह की, कई बार होता है ना स्किन कहीं से सफेद हो गई और कहीं से सामान्य है,

लोग उसको देखकर थोड़ा सा भेदभाव वाली प्रवृत्ति लाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ एक मेलानिन की जो शरीर में कमी है उसकी वजह से होता है। इसलिए हमें केवल प्यार बढ़ाना है अपने लोगों के साथ। अगर त्वचा या आंखों का रंग थोड़ा अलग है तो क्या फर्क पड़ता है, वो हमारे अपने हैं और उतने ही प्यार के लायक हैं जितने बाकी सब लोग।

0: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

100.1 MHz आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी समय मिला लीजिए 9:46 और 36 सेकंड हो गए हैं। मैं हूं आपके साथ भावना।

समय के इशारे पर चलना ही समझदारी होती है। हम सबको समय के इशारे पर नाचना ही पड़ता है, लेकिन इंद्रधनुषी रंग हमारे जीवन में फैल जाते हैं, आ जाते हैं जब हम समय के साथ साथ धीमे धीमे आगे बढ़ते जाते हैं और सही निर्णय लेते जाते हैं। इंद्रधनुष मिशन, 7 रंग हैं इंद्रधनुष के और उन्हीं के नाम पर इंद्रधनुष मिशन जो है इस योजना का नाम रखा गया है। 7 जानलेवा बीमारियां हैं जैसे कि डिफ्थेरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी। इनसे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को बचाने के लिए ये जो है टीकाकरण मिशन है, इंद्रधनुष मिशन जो है। मतलब 0 से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं, मतलब एकदम न्यू बॉर्न बेबी, 2 साल तक के बच्चों को ये टीकाकरण करवाया जाता है। 100% सुनिश्चित करते हैं कि सब बच्चों को ये टीका लगे ताकि वो इन 7 बीमारियों को, जैसे इंद्रधनुष के रंग ऐसे अर्ध गोलाकार रूप में होते हैं ना, ऐसे एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे जाता है, इसी प्रकार से ये जो टीकाकरण है ये एक एक करके इन 7 बीमारियों को ऐसे यूं हाथ से हटा के अर्ध गोलाकार बना दे, ये इस मिशन का जो है वो उद्देश्य है। सभी को, मतलब जो गर्भवती महिलाएं उनको भी टीका लगे और जो नवजात शिशु हैं 2 साल तक की उम्र के उनको भी टीका लगे, इसका ये उद्देश्य है इस मिशन का। जैसे हम काले कोए के मुंह में खंड पाते हैं ना कि नजर दूर हो और सब तक ये संदेशा चला जाए, हमारी बात पहुंच जाए, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों के मुंह में जब ये ड्रॉप्स डलती है तो वो हर नजर से दूर उनको जो बीमारियों की नजर ना लगे, इस तरह की जो मतलब जो काम है वो किया जाता है। और ये संदेशा कि हमारे इंद्रधनुषी बच्चे उनके मन में, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां फैले, ऐसा इस मिशन का उद्देश्य है।

0: इसी के साथ म्यूजिकल दिल लगी से भावना लेती है विदा। 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स लेकर मैं भावना आपके साथ रहूंगी, लेकिन पहले समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के नीस शहर जा रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है।

0: होने चाहिए। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित करने का प्रस्ताव है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वे ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान को समृद्ध परमाणु सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को नष्ट करना होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुए। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। लॉस एंजलिस में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to France and Slovakia from today to further deepen India's partnership with two European nations. The visit will also reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. In the first leg of the visit, the Prime Minister will visit Nice for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will review the full spectrum of the India-France bilateral relationship and jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which will bring together top innovation startups and venture capital funds from India, France and other countries. On the second leg of his visit, Mr. Modi will visit Slovakia. He will hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico and explore new avenues of cooperation. On the third leg of the visit, the Prime Minister will participate in the G7 summit in Avignon, France, on 16th and 17th of this month. During the summit, he will exchange views with G7 leaders and those from invited partner countries and international organizations participating in the summit. On the final leg of the visit, the Prime Minister will visit Paris on 18 June for further bilateral engagements and to attend Europe's largest technology and startup event, VivaTech Summit. Mr. Modi is also expected to address the members of the Indian community in Paris. The Prime Minister's presence at the G7 reflects India's standing as a leading voice of the Global South and a key partner in addressing global challenges. Finnish Foreign Minister Elina Valtonen defended India for buying Russian oil, explaining that India followed the rules of the Western price cap. Speaking at a meeting in Finland alongside Indian External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, she explained that the price cap was created to keep global oil flowing while limiting Russia's profits, meaning India did exactly what was intended. Mr. Jaishankar strongly rejected European criticism by pointing out that Western sanctions forced Europe to buy up Middle Eastern supplies, leaving India to find other affordable options. He also criticized the United States for changing its rules, noting that Washington originally asked India to buy Russian oil to stabilize global markets before later putting tariffs on Indian imports. The Trump administration said it is prepared to accept civilian nuclear energy program in Iran as part of a broader nuclear agreement, provided Tehran dismantles the infrastructure that could enable it to build a nuclear weapon. The clarification came as a senior administration official outlined details of a proposed U.S.-Iran nuclear agreement yesterday that officials said could be signed within days. The official drew a clear distinction between civil nuclear power generation and nuclear weapons capability, arguing that Washington's objective is not to eliminate Iran's nuclear energy sector, but to prevent Tehran from retaining the capacity to produce a bomb.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने खाड़ी में भारतीय तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। ईरान के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के तहत अमेरिका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहमत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की यह फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
3: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया? इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लियाकी फ्रीडम जहाज में भारतीय नाविकों के जान गंवाने की खबरें फर्जी हैं। मंत्रालय ने बताया कि जहाज के कप्तान से इस बारे में संपर्क किया गया है और कप्तान ने बताया है कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने लोगों से ऐसे फर्जी दावों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान को समृद्ध परमाणु सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को भी नष्ट करना होगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने ये बात कही। श्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों ने यूरोप को मध्य पूर्व से तेल खरीदने के लिए मजबूर किया, जिससे भारत को अन्य किफायती विकल्प तलाशने पड़े। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी ने किया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। श्री सिंह ने कहा कि इस दृष्टिकोण में मध्य एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच की मेजबानी करेगा। दक्षिण कोरिया में सियोल अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने का दोषी पाया। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। लॉस एंजल्स में

फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया है। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार यह मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया है। बर्मिंघम के एडबेस्टन में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 219 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 132 रन पर ही सिमट गई। भारत का पहला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने खाड़ी में भारतीय तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। ईरान के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के तहत अमेरिका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहमत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपकी दिल की बातें करने के लिए मैं हूं आपके साथ भावना। लीजिए, पहला संदेश आ गया है। सुप्रीम नमस्कार जी, फिल्म का नाम है नाम। ओके, ये डोंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से हमें संदेश मिला है। देवशंकर तामुरिया है, अजय देव तामुरिया है, तुषार देव तामुरिया है, डॉली बेबी पूजा तामुरिया है, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया है और मास्टर अल कबीर भी इनके साथ हैं। बहुत ही बहुत आपका स्वागत, पहला संदेश आपका। और लीजिए, इस संदेश के साथ आपका संदेश भरा फिल्म नाम का ये गीत।

आप सबके भी चिट्ठियां आ रही हैं ईमेल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप पे आपका संदेश आ रहा है। अपना ईमेल एड्रेस तो हमने बताया ही नहीं। अरे ईमेल आईडी हमारा नोट कर लीजिए, वो सब जिन्हों के पास नहीं है, वैसे बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी है हम जानते हैं, fmgoldairdelhi@gmail.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868867 3। तो फिर आपके संदेश कहाँ छुपे हैं, जल्दी से भेजिए। ये हमारे पास गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से संदेश आया है। तुलसी मस्कीन है, वीना मस्कीन है, आशीष राजा है, चैतन्य मस्कीन है, मेघा मस्कीन है, और इन्होंने साथ में लिखा है चंडीगढ़ से भी जुड़े हैं लोग, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, तो इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सईद अब्बासी साहब हैं, उनका पूरा परिवार है हमारे साथ। ये हमारे साथ ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। इनकी निगहत परवीन अब्बासी जो हैं वो हैं, शाहनवाज अब्बासी हैं, सरफराज हैं, फरदीन हैं, सुहान हैं, इसके अलावा अरजान हैं, अबान हैं, और पूरा अब्बासी परिवार हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ा हुआ है। सतीश अनेजा जी भी हैं और चंडीगढ़ से इनका संदेश हमारे पास आया। बिमला अनेजा जी भी साथ में हैं। राम नरेश चिक हैं, इनके साथ रेखा चिक हैं, करण हैं, अल्पाश हैं, रघु यादव, रचना यादव, सृष्टि यादव, सावी यादव, संगम विहार हनुमान मंदिर दिल्ली से इनका संदेश हमारे पास आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डीके साहब जो है इनका भी संदेश हमारे पास आया है। ये लिखते हैं, तुम्हारी यादों के झोंके मुझे सोने नहीं देते, भिगा देते हैं पलकों को मगर रोने नहीं देते। मैं अक्सर भूल जाता हूँ जरूरी काम सब अपने, वो बीते पल मुझे तुमसे जुदा होने नहीं देते, जैसे आकाशवाणी रेडियो। ये इन्होंने पूरा लिखकर भेजा है। नई दिल्ली से इनका संदेश हमें मिला है। कमलेश, मुकुल, सचिन, दीपांशु, इन्होंने अपनी पसंद का गीत भी हमें लिखकर भेजा है। हमारी कोशिश रहेगी सुनवा दें। इसके अलावा परिहार परिवार का भी हमारे पास जो है वो संदेश आया है। पूजा परिहार हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अंकित कांगड़ा हैं, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा, हरियाणा से इनका संदेश हमारे पास आया। हरियाणा में कहाँ से जी, ये तो लिख के नहीं भेजा आपने। अनिल मोहन जी भी हैं, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, ये सब हैं। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से इनका संदेश हमें मिला है। इसके अलावा सुदर्शन मुखी साहब हैं, इनका भी संदेश हमें मिला है। इन्होंने ईमेल हमको किया है बहुत ही प्रेम के द्वारा, और हम भी इनका स्वागत करते हैं उतने ही प्रेम से। बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से हमें संदेश भेज रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं ये वाला।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

फिल्म प्रेम ग्रंथ का ये गीत सुनना चाहा था। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा जी ने, उनके सभी साथियों ने। इसके अलावा हमारे पास जो संदेश आया ना वो है सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सरवत

प्रणाली सानवी और कल्पना देशमुख, ये सब हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। इनका संदेश हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यारा संदेश पहुंचाने के लिए। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव और छत्तीसगढ़, मतलब ये छत्तीसगढ़ से हमें बहुत ही प्यारा सा संदेश मिला है। इसके अलावा कीर्ति का संदेश हमें मिला है तिलक नगर दिल्ली से, कहती हैं फाफड़ा जी आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है, आकाशवाणी हमारी जान है, हमारी धड़कन है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा जी आपकी पसंद का गीत।

वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशक जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान, इन सबका हमारे पास संदेश आया है। ये हैं अनूप कौर और सरोज बंसल जी, गुरुग्राम से इनका संदेश हमारे पास आया है। नाइस प्रेजेंटेशन एंड नाइस सॉन्ग्स यू आर प्लेइंग, ये लिखकर इन्होंने हमें भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा रुपेश संघई हैं, महेश संघई हैं, इनका संदेश हमें परभणी महाराष्ट्र से मिला है। प्रवेश, प्रतेश और पूरा संघई परिवार भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा लिख रहे हैं ये। इसके अलावा आमिर हुसैन साहब हैं, बहुत ही प्यार भरा आदाब ये मेरा नाम लिखकर भेजा है इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा देखिए सबके नाम पढ़ देते हैं। आमिर हुसैन हैं, बेगम तैयबा शेख हैं, फौजिया शेख हैं, आहिल हुसैन हैं, अरहान हैं और परिवार के सभी सदस्य हैं। ये पटियाली रोड गंज डुंडवारा से इनका संदेश हमारे पास आया है। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, बहुत ही प्यारा और छोटा सा संदेश इनका आया है श्रीमाली परिवार का। कंवर कॉलोनी बड़वाह, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। और आशा नारंग, सुरेश नारंग, सैयद मसरूर सहारनपुर से हमें संदेश भेज रहे हैं, गाना सुनना चाहते हैं, बहुत ही प्यारा सा गाना है ये रहा। फिल्म का नाम है ना खुदा।

चलते चलते एक बहुत ही प्यारा सा संदेश आया है गांधी चौक वार्ड में राजस्थान से बबलेश पंवार हैं, डैनी पंवार हैं, मनीष पंवार हैं, रामदेवरा से दिनेश चौहान हैं, बाबूराम जयपाल डांगरी से हैं, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा हैं, ये अपने आप को रेडियो दीवाना कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना प्यार भरा संदेश हम तक पहुंचाने के लिए। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब, इन्होंने ये लिखकर भेजा है, अपनी फरमाइश भी लिखकर भेजी है, लेकिन आज तो समय हो गया है इसलिए आज आपकी फरमाइश तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसे ही हमें ईमेल या व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए हमसे जुड़े रहिए, संदेश भेजते रहिए, आपकी फरमाइश भी पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी हमारी। अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार, मैं कहीं नहीं जा रही। 11:10 पर तस्वीर प्रोग्राम में मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले अभी समय है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इसका उद्देश्य इन दोनों यूरोपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी को और प्रगाढ़ करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी दक्षिण फ्रांस में भारतीय समुदाय से भी भेंट करेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे। वे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि यह मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया है।

अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से मात दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार एक अलग जगह आपको लेकर चलते हैं, खूबसूरत जगह आपको लेकर चलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस पंक्ति में ना बहुत गहराई छिपी है। हम भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं की भी तस्वीर बनाएं, पूरे भारत की जो सुगंध है उसकी झलक, उसकी खुशबू हमारे साथ चलती है हर प्रोग्राम में, हर बार। मैं हूं आपके साथ भावना, और आज जहां हम जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब रेडियो तस्वीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसी जगह है जहां गर्मियों में घूमने के लिए हमेशा से लोग आते रहे। ब्रिटिश शासन के समय में भी ये जगह उतनी ही लोकप्रिय थी, और आज भी ब्रिटिश वायसराय भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए इस खूबसूरत पहाड़ी इलाके में आते थे। औपनिवेशिक काल की झलक के साथ साथ विशिष्ट पहाड़ी वातावरण, ये मिश्रण इसे दूसरे पहाड़ी जो इलाके हैं उनसे अलग बनाता है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, तो आइए मिलकर चलते हैं।

हम तो चले कहाँ, टाइगर हिल, दार्जिलिंग की टाइगर हिल से सूर्य उदय देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है। उगते सूरज की खूबसूरत नारंगी आभा के साथ साथ कंचनजंगा की पर्वतमाला का भव्य मनोरम दृश्य, इसकी कल्पना करके देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये ना पूरा जो क्षेत्र है इसके आसपास प्राकृतिक वन अभयारण्य है और यहाँ पर पहाड़ी की चोटी पर वेधशाला है। सूर्योदय देखने का समय जो है ना सुबह लगभग 4 बजे होता है और आमतौर पर लोग क्या करते हैं, मफलर, स्कार्फ, ऊनी टोपी, मंकी कैप और भारी जैकेट पहने हुए ठंड से कांपते हुए एक साथ जमा हो जाते हैं और सूर्य

को निकलते हुए देखते हैं और मुझे सब लोग एक साथ वो देख रहे होते हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं ना कि हाँ अब हल्की हल्की शुरू हो गई है किरणों का निकलना, बहुत खूबसूरत लग रहा है, देख रहा है, मतलब वो चीज एकदम अलग तरह का एक्सपीरियंस है, बहुत खूबसूरत लगता है। और धीरे धीरे जब सूरज क्षितिज से बाहर निकलता है, नजारा बेहद खूबसूरत होता जाता है। सूर्य की किरणें पहाड़ों को रंगों से भर देती हैं, क्योंकि कंचनजंगा की पर्वत माला जो है वो पूरी किरणों के रंग से सुनहरी सुनहरी दिखाई देने लगती हैं, बहुत खूबसूरत। जो फोटोग्राफी करने के शौकीन है ना, उनके लिए तो एकदम स्वर्ग के जैसी जगह है ये। वो सुबह 4 बजे अपने कैमराज लेके पहुंच जाते हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक, ऐसा लगता है कि बस कहीं ना जाएं, यहीं रुक जाएं, ठहर जाएं, रुक जाएं, आगे ना बढ़े, बस यहीं इन नज़ारों को निहारते रहें।

अगर आप ट्रेकिंग या पर्वतारोहण के शौकीन है ना तो ये जगह आपके ही लिए है, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान और दार्जिलिंग चिड़ियाघर। पता है ये एक संस्थान के साथ साथ एक हिमालयन मिनियापोलिस, ये एक साथ कई चीजें समेटे हुए है, संग्रहालय है, बोर्डिंग स्कूल है, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी है, साथ ही स्मृति चिन्हों की एक दुकान भी है।

यहाँ पर, तो बहुत चीजें एक साथ देखने को आपको मिल जाएंगी। संग्रहालय में जो पर्वतारोहण के लिए सारी चीजें जो जरूरी होती है ना, उपकरण, कलाकृतियां, वो सब यहाँ पर भरी पड़ी हैं। और ये संग्रहालय है दो प्रसिद्ध पर्वतारोही, तेंजिंग नावे और सर एडमंड हिलरी, इनको श्रद्धांजलि के रूप में देने के लिए बनवाया गया था। 1953 में एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की थी। एवरेस्ट के ऊपर बोर्डिंग स्कूल उन छात्रों के लिए जो पर्वतारोहण का अध्ययन करना चाहते हैं, और चिड़ियाघर यहाँ का दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। कई लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है ये। यहाँ पर साइबेरियाई बाघ को आप घूमते हुए देख सकते हैं, हिम तेंदुए को शांति से सोते हुए आप देख सकते हैं, दुर्लभ लाल पांडा भी यहाँ अक्सर आपको दिखाई दे जाएगा, बहुत सारे चमकीले और सुंदर पक्षियों की प्रजातियों को देखने पर्यटक यहाँ आते हैं। क्या कहना है इस जगह का, बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा दार्जिलिंग का रॉक गार्डन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जलप्रपात है, चट्टानी ढलानों से नीचे गिरता हुआ पानी नीचे गिर रहा है, और वहाँ पर बहुत सारे बेंचेस हैं, आप बेंचेस पे बैठकर पूरा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मोहित करेंगी, और उनमें से एक है बादलों की लुका छिपी। यहाँ पर ना एक पल आप अगर गाड़ी के शीशे के सामने बादल छाए होंगे तो आपको ऐसा लगेगा बस आप बादलों में ही अपनी गाड़ी लेकर अंदर जा रहे हैं, और कुछ ऐसा भी लगता है कभी कभी कि बादल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है देखकर। यहाँ पर झरना है, शांत लय में नीचे गिरता है, बहुत खूबसूरत झरना है। जब नीचे जाते समय ना आप देखेंगे उसको, तो ऐसा लगेगा शांति सुकून, और मौसम के अनुसार यहाँ पर चमकीले सुंदर फूल खिलते हैं। बगीचे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, जो इस गार्डन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, रॉक गार्डन, यहाँ का सबसे खूबसूरत जो हमें लगा, जो आपको भी लगेगा ना, बादलों का लुका छुपी खेलना, कभी बादल सामने, कभी आंखों से ओझल, कभी लगा थोड़े ऊपर चढ़ गए और कभी लगा ये बादल नीचे की ओर जा रहे हैं।

दार्जिलिंग रोपवे जो है ना वो भी बहुत बहुत मशहूर है बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी। सिंगामारी वो जगह है जहां से आपको रोपवे में चढ़ना होगा दार्जिलिंग रोपवे में, और इस रोपवे को ना रंगीत घाटी यात्री केबल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको छोटी रंगीत नदी के किनारे फैली घाटी जो है उसका शानदार हवाई दृश्य है। यानी आप ऊपर केबल में रोपवे केबल में बैठे हैं और नीचे से आप इस शानदार घाटी का हवाई दृश्य देख रहे हैं। केबल कार से ना हरे भरे चाय के बागान दार्जिलिंग है तो चाय की बात तो होगी ही ना, है कि नहीं। चाय के बागान, उफनती नदियां, घने जंगल, झरने, इन सब के खूबसूरत दृश्य को देखते हुए चलते हैं। और 45 मिनट में ना 7000 फीट की ऊंचाई से 800 फीट नीचे तक आसानी से उतर जाते हैं। रोपवे से उतरकर आप चाय के जो बागान हैं उनका भ्रमण कर सकते हैं, चाय की पत्तियां तोड़ती हुई महिलाओं को देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा और जो खास चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं दार्जिलिंग में, यहाँ का बतासिया लूप बहुत ही फेमस है। मतलब बतासिया लूप को ना खास तौर पे टॉय ट्रेन के लिए एक आसान ढलान के रूप में बनाया गया था ताकि घूम स्टेशन पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे नीचे उतर सके। ये जो ढलान था पहले 100 फीट का था और टॉय ट्रेन जो है वो आराम से इस ढलान का जो रास्ता है वो तय कर लेती थी, बहुत मुश्किल नहीं होता था। और इस तरह से बतासिया लूप टॉय ट्रेन के लिए एक आसान रास्ता बन गया था। और ये जो बतासिया लूप है ये लूप एक सुंदर उद्यान के चारों ओर बना हुआ है, गोलाकार रेलवे ट्रैक है। मतलब पूरा उद्यान है, बगीचा है, फुलवारी है चारों तरफ, बीच में जो है ये लूप है, गोल गोल लूप। कई प्रकार के फूल यहाँ पर हैं और बहुत खूबसूरत लगता है जब गोल गोल ये टॉय ट्रेन जो है वो घूमती है फूलों के आसपास। और इतने खूबसूरत फूल हैं यहाँ पर जिसे आप कह सकते हैं कि जिनको देखना, जिनकी खुशबू महसूस करना, लेना बहुत ही एक अलग प्रकार का खूबसूरत और अनोखा अनुभव आपको आएगा, बहुत प्यारा।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

101.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। ये है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम तस्वीर बना रहे हैं दार्जिलिंग की। यहाँ का घूम मठ बहुत खूबसूरत, भव्य वास्तुकला, 15 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा, जहाँ अनादि काल से बुद्ध की प्रतिमा के सामने हर साल 2 तेल के दीपक जलते रहते हैं। महाकाल मंदिर बहुत अत्यंत पवित्र, जिसे कहा जाए तो कम ही लगेगा, भगवान शिव को समर्पित है ये पवित्र मंदिर। और जिस मंदिर पर ये है उसे पवित्र पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का सबसे रोचक पहलू ये कि यहाँ वेदी पर एक हिंदू पुजारी के साथ साथ एक बौद्ध भिक्षु भी विराजमान है। तो बहुत ही खूबसूरत और अनोखा है पश्चिम बंगाल का हमारा दार्जिलिंग, जहाँ हम और आप चल रहे हैं और बना रहे हैं रेडियो तस्वीर।

चल के हम पहुंच गए संदकफू। संदकफू या संदकफू भी इसको लोग कहते हैं। 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है ये। यहां पर आपको रोडोडेंड्रॉन के फूल पूरी तरह खिले हुए दिखाई देंगे। मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये चोटियां अपने पूरे शबाब पे होती हैं, खूबसूरत रंगों से रंगी हुई होती हैं। और यहाँ पर आप सूर्योदय सूर्यास्त के जो नज़ारे हैं बहुत खूबसूरती से देख सकते हैं। यहाँ पर ना ट्रेकिंग भी कर सकते हैं आप, अलग

अलग व्यू पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर सबको आके। इसके अलावा मेरे ख्याल दार्जिलिंग से लगभग 50 किलोमीटर दूर होगा, 50 के अंदर अंदर ही है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप अपनी प्राइवेट कार से या फिर जीप से या फिर यहाँ से आप टैक्सी लेकर भी पहुँच सकते हैं, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता, पास में ही है। और पता है यहाँ पे जो मिरिक झील है उसके लिए इसको जाना जाता है, लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देखने, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और मिरिक झील जिसे सुमिंदु झील भी कहा जाता है। इस झील के ऊपर ना एक पैदल पुल बना हुआ है जिसे इंद्रधनुषी पुल के नाम से जाना जाता है। सब कुछ घूमने के बाद खरीदारी भी तो करेंगे ना आप, कहाँ से खरीदें, क्या खरीदें, अपने लिए, अपने अपनों के लिए, परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और पड़ोसियों के लिए भी। यहाँ आप यहाँ की मॉल रूट जा सकते हैं, दार्जिलिंग की मॉल रूट जो है, यहाँ पर आपको बेहतरीन डिज़ाइन वाले कालीन मिल जाएंगे, हाथ से कढ़ाई किए हुए शॉल मिल जाएंगे, नकली गहने आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। और इसके अलावा अनोखे डिज़ाइन वाले ऊनी सामान और मुखौटे यहाँ पर आप लीजिए, एक से एक मुखौटा आपको मिलेगा, लगाइए, लोगों को डराइए या चौंकाइए या फिर प्रसन्न कर दीजिए मुखौटा लगाकर, और फिर उसे हटाकर अपना चेहरा दिखा दीजिए।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें, pmsuryaghar.gov.in पर।

कलिम्पोंग यहाँ के गिरजाघर, यहाँ के मठ देखने लोग आते हैं जो दार्जिलिंग आते हैं। इसके अलावा कुर्सियोंग, जिसे सफेद आर्किड का स्थान भी कहा जाता है, यहाँ पर भी दार्जिलिंग घूमने वाले लोग आते हैं। 32 किलोमीटर दूर है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं है ये। और इसके अलावा लावा, ये दार्जिलिंग से 148 किलोमीटर दूर है लगभग। यहाँ पर प्रकृति की खोज के लिए लोग आते हैं। यहाँ बहुत सारे प्रकृति प्रेमी आते हैं यहाँ का उद्यान देखने, यहाँ को करीब से जानने। रोहिणी सिलीगुड़ी के नज़दीक है, 66 किलोमीटर दूर है दार्जिलिंग से। यहाँ के वन्य जीव, यहाँ के जंगल देखना। यहाँ दुधिया नाम का एक पिकनिक स्थल है, यहाँ पर घूमना। और यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं को करीब से देखना, पर्वतमालाओं को देखना, यही लोगों को सबसे ज्यादा भाता है। बहुत ही खूबसूरत है हमारा दार्जिलिंग।

0: 12:10 पर घर आंगन आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अभी समय है समाचारों का। अब स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं आपसे मिलूंगी अगले शनिवार। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: असम में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी हैं। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। निदेशालय के अनुसार कमरहाटी सहित विभिन्न नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों के नियुक्ति के बदले बिचौलियों के माध्यम से नकद और सोने के रूप में रिश्वत ली गई थी। एजेंसी का कहना है कि मदन मित्रा 125 से अधिक ऐसी अवैध नियुक्तियों से जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।

0: आंगन। घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके दोस्त और होस्ट सिमरन कौर,
1: और मैं हूं आज आपके साथ प्रतिभा।
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: और सिमरन, देखो अपने श्रोताओं को हम ये बता दें कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 KHz पर।
0: और प्रतिभा, देखो घर आंगन का जब शो शुरू होता है तो हमें याद आता है कि देखो आज फिर हमने अपने दोस्तों अपने श्रोताओं से मिलना है, और मिलने की जब बात होती है तो बहुत दिनों के बाद मिलना बहुत ही अच्छा लगता है किसी से, और ये मुलाकातें इतनी अच्छी लगती है ना कि मन करता है हम हमेशा मिलते ही रहे अपने दोस्तों।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा सिमरन तुमने। देखो सही मानों में घर आंगन जो कार्यक्रम है वो उस कड़ी की तरह है जो हमें हमारे श्रोताओं के साथ हमें जोड़कर रखा है, हमें बांधे हुए है। ये कड़ी जो है वो हर दिन हर प्रोग्राम के साथ और मजबूत होती जाती है।
0: मैं भी यही कहने वाली थी, क्योंकि और मजबूत के साथ साथ ये भी लगता है कि हमारा और हमारे दोस्तों के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है, और यूं ही ये रिश्ता चलता रहे हम ऐसी कामना करते हैं हमेशा के लिए, है ना। क्योंकि आवाज से जुड़ा हुआ हमारा रिश्ता और उनके मैसेजेस से जुड़ा हुआ हमारा रिश्ता, दोनों से हम ये चाहते हैं कि रिश्ता यूं ही चलता रहे, हमेशा बरकरार रहे।
1: हाँ देखो ये दो तरफा संवाद है, हम यहाँ से संवाद आवाज के जरिए होता है और वहां से संवाद जो होता है वो प्रतिक्रियाओं के जरिए होता है।
0: और प्रतिभा देखो कई बार जब वो मिलने की बात जब मैं करती हूँ, हम किसी दोस्त से भी बिछड़े हुए दोस्त से मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, तो ये मुलाकात हमें हमेशा याद रहती है कि हम हमेशा अपने दोस्तों से मिलते रहे, याद करते हैं। और देखो मिलने से क्या होता है कि मन भी बहुत खुश होता है और जिंदगी में जो तनाव है आपका स्ट्रेस है वो भी खत्म हो जाता है। तो इससे एक साथ जुड़े रहिए, जुड़ने से एक दूसरे के साथ संबंध बना रहता है और अच्छा भी लगता है, और आप अपने आप को एक रिलीफ जैसे कहते हैं ना सुकून भरी जिंदगी के लिए तैयार हो जाते हैं।
1: भाई देखो जैसे सिमरन हमें इंतजार रहता है ना कि प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है, और ऐसे ही हमारे जो लिसनर्स हैं हमारे जो श्रोता हैं उनको भी बहुत मतलब उससे इंतजार रहता है हमारा कि कार्यक्रम घर आंगन शुरू होने वाला है, और वो अपना रेडियो सेट अपना मोबाइल फोन ऑन कर बैठ जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: हाँ तो, और देखो हम अब आगे और ढेर सारी जानकारियों के साथ अपने दोस्तों के साथ जुड़ेंगे, तो सबसे पहले खूबसूरत सा गीत हम अपने दोस्तों को सुनाते हैं।
1: बिल्कुल

0: लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी लवर्स।
1: और देखो आज 13 जून है, तो आज 13 जून को कोई खास बात भी और खास दिन भी है।
0: आज खास दिन भी है क्योंकि आज के

0: दिन मनाया जाता है एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है ना सिमरन, वो पीड़ित लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखना और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकना है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित करके 13 जून को इस दिवस के रूप में स्थापित किया था और इसे पहली बार 2015 में मनाया गया था।
0: और देखो हर वर्ष जो ये जो दिन है वो थीम के तहत मनाया जाता है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो 2026 है उसका विषय है अपनी त्वचा पर गर्व, सभी त्वचा के रंगों का उत्सव मनाना।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और एक ये अनुवांशिक स्थिति है जिसमें शरीर में मेलानिन नामक जो है रंग द्रव्य कम या नहीं बनता और इसका असर त्वचा, बालों और आंखों के रंग पर पड़ सकता है। कई लोगों को दृष्टि से जुड़ी चुनौतियां भी हो सकती हैं।
0: और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्बिनिज्म जो है वो कोई संक्रामक बीमारी नहीं है और ना ही ये किसी व्यक्ति की क्षमता या प्रतिभा को सीमित करता है। सही जानकारी, स्वास्थ्य देखभाल, आंखों की सुरक्षा और सामाजिक सहयोग से एल्बिनिज्म वाले लोग शिक्षा, खेल, कला और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और ये जो दिवस है वो जागरूकता दिवस हमें ये संदेश देता है कि हमें भेदभाव नहीं बल्कि सम्मान और समान अवसर को बढ़ावा देना है।
0: और एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का भाव रखने का ये संदेश देता है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में आगे बढ़ने के लिए ये दिन प्रोत्साहित भी करता है।
1: बिल्कुल। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार में की आवाज में गीत, फिल्म में थोड़ी सी देर है।

0: और सिमरन, देखो योग जीवन जीने की और जीवन को साधने की एक ऐसी कला है जिसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में किया है और उन्होंने अष्टांग योग को सर्वोपरि बताया है। अष्टांग योग एक गतिशील और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण योग शैली है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने,
0: है ना।
1: और देखो योग की जब बात की जाती है तो मुझे याद आता है कि योग करने के बहुत ढेर सारे फायदे होते हैं और योग करना भी देखो बहुत जरूरी है जीवन में। ये नहीं कि मतलब हम सो रहे हैं और हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि सुबह की पहली किरण के साथ एक गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और महसूस कीजिए कि ये है योग। पर योग सिर्फ एक दिन का नहीं, रोज जीवन जीने का तरीका है, यही है योग की शुरुआत।
0: बिल्कुल। और देखो हम आज अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, अपने श्रोताओं को ये बता दें कि अष्टांग योग का अर्थ है योग के आठ अंग। ये योग की वह पद्धति है जिसका उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं बल्कि मन, व्यवहार और जीवन में संतुलन लाना भी है।
1: बिल्कुल।
0: और देखो अष्टांग योग के आठ नियम है, अंग है, जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, है ना।
1: और इन नियमों के द्वारा व्यक्ति जीवन में सही व्यवहार, अनुशासन सीखता है, साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ श्वास पर भी नियंत्रण का मार्ग सिखाता है ये योग।
0: बिल्कुल। और देखो अष्टांग योग इंद्रियों के नियंत्रण में भी सहायक है। मन को ध्यान द्वारा स्थिर कर व्यक्ति एकाग्रता की ओर अग्रसर होता है और व्यक्ति चेतना की उस अवस्था में पहुंचता है जिसके द्वारा शरीर और मन दोनों संतुलित होते हैं।
1: और देखो प्रतिभा, देखो तनाव और बेचैनी कम करने में मदद करता है योग, और अनुशासन और आत्मविश्वास बढ़ाता है, ध्यान और एकाग्रता बेहतर कर स्वस्थ जीवन शैली विकसित करने में सहायक होता है और साथ में रिश्तों और व्यवहार में सकारात्मक भी लाता है।
0: बिल्कुल। और देखो तो अष्टांग योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है जो स्वस्थ तन और संतुलित मन और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी हर जाई।
1: और प्रतिभा देखो, अभी तुमने योग की बात की, योग से मुझे एक चीज याद आ रही है, योग करने के बाद स्वास्थ्य कितना अच्छा हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: उसके बाद आप नींद कितनी अच्छी लेते हैं, गहरी नींद और अच्छी नींद आपके स्वास्थ्य की निशानी है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन नींद आने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद लेना बेहतर है, बेहतर है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद की कमी एक आम समस्या बन गई है। लोग काम, तनाव, सोशल मीडिया पर देर रात तक मोबाइल चलाने की वजह से अपनी नींद को नजरअंदाज कर रहे हैं।
0: बिल्कुल। और देखो मतलब लोग ये जानते भी हैं कि नींद की कमी का सबसे गहरा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, इससे एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता दोनों ही कमजोर पड़ जाती हैं।
1: और एक रिसर्च के अनुसार नींद के दौरान दिमाग दिन भर यादों के प्रोसेस करता रहता है और उन्हें लंबे समय तक याद रखने लायक बनाता है और आपकी मेमोरी कमजोर होने लगती है।
0: और देखो नींद की कमी से शरीर में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है और नींद की कमी से डिप्रेशन, एंग्जायटी और मूड स्विंग जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती है।
1: और जब दिमाग को पर्याप्त आराम नहीं मिलता तो उसकी रचनात्मक क्षमता प्रभावित होती है और व्यक्ति सही और गलत में फर्क करने में भी मुश्किल हो जाती है उसको।
0: बिल्कुल ठीक कह रही है सिमरन। देखो एक रात की जो खराब नींद जो है ना, वो क्या करती है कि दिमाग में टाउ प्रोटीन का स्तर बढ़ा सकती है। यानी नींद की कमी केवल थकान ही नहीं बल्कि मस्तिष्क रोगों का कारण भी बन सकती है।
1: और देखो अच्छी नींद के लिए कुछ आसान से टिप्स भी होते हैं। रोज एक तय समय पर सोएं, उठें, सोने से एक घंटे पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं।
0: और देखो इनसे तो दूरी बनाए बनाए साथ ही साथ कैफीन या निकोटीन का सेवन जो है वो रात में बिल्कुल ना करें और कमरे का वातावरण शांत और आरामदायक रखें।
1: और सोने से पहले कोई रिलैक्सिंग सा म्यूजिक और मेडिटेशन भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल ना? और देखो नींद सिर्फ जो है शरीर को आराम देने का जरिया नहीं है बल्कि ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल बैलेंस और क्रिएटिविटी को बनाए रखने के लिए भी बेहद जरूरी है।
1: और जो लोग रोज 7 और 8 घंटे की नींद लेते हैं वो ज्यादा फोकस्ड, खुश

और ऊर्जावान रहते हैं, और जब अच्छी नींद आप लेंगे तो अच्छे सपने भी आएंगे, तो अच्छा भी लगेगा आपको। तो अच्छी नींद ही लीजिए और अच्छे सपने भी देखिए। लीजिए सुनिए हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाज में की फिल्म है आंखियों की जरूरत।

0: प्रतिभा, देखो अब कुछ बात करते हैं कुछ व्यवसाय की, छोटे से लघु उद्योग की, जो हम महिलाओं के लिए स्पेशल खास तौर पर लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे एक छोटे लेकिन लाभदायक व्यवसाय की, जिसमें हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया। हमारा विषय है आज का सुगंधित मोमबत्ती निर्माण स्वयं सहायता समूह।
1: और देखो, आज के समय में सुगंधित मोमबत्तियों की मांग लगातार बढ़ रही है और घरों की सजावट, पूजा पाठ, त्योहारों, उपहारों और विभिन्न आयोजनों में इनका व्यापक उपयोग होता है। कम लागत में शुरू होने वाला यह व्यवसाय स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार और आय का अच्छा स्रोत भी बन रहा है।
0: और देखो, स्वयं सहायता समूह और आत्मनिर्भरता, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्थ ग्रुप महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम है।
1: और देखो, जब कुछ महिलाएं मिलकर नियमित बचत करती हैं और सामूहिक रूप से कोई व्यवसाय शुरू करती हैं, तो उनके लिए सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
0: और सुगंधित मोमबत्ती निर्माण ऐसा ही एक व्यवसाय है जिससे कम पूंजी और सीमित संसाधनों में साथ आप शुरू भी कर सकते हैं।
1: तो अपने श्रोताओं को बता दें, जैसे सभी जानते हैं कि सुगंधित मोमबत्ती क्या है। भाई, सुगंधित मोमबत्ती ऐसी मोमबत्ती होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की खुशबूदार सुगंध मिलाई जाती है, और जब ये मोमबत्ती जलती है तो उसकी सुगंध पूरे वातावरण को महका
0: और बहुत ही अच्छी लगती है उनकी खुशबुएं। जैसे कि आज बाजार में आप लेवेंडर, गुलाब, चमेली, चंदन, वनीला, लेमन ग्रास और कई अन्य सुगंधों वाली मोमबत्तियां उपलब्ध हैं, वो ले सकते हैं आप चाहे।
1: और देखो, इनकी जो मांग है, विशेष रूप से त्योहारों, विवाह समारोह, होटल उद्योग, स्पा सेंटर और उपहार बाजार में अधिक रहती है।
0: और एक बात, मोमबत्ती निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री जो होती है, अगर सुगंधित मोमबत्ती बनाने के लिए अगर आपने बनानी है या सीखनी है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत की हैं, वो हम बता देते हैं अपने श्रोताओं को।
1: वो है, देखो, वो है पैराफिन वैक्स या सोया वैक्स, मोमबत्ती की बाती, सुगंधित तेल, रंग, सांचे या कांच के जार, वैक्स पिघालने के लिए बर्तन और पैकेजिंग सामग्री। और इन सभी सामग्रियों को स्थानीय बाजार या ऑनलाइन माध्यम से आप आसानी से खरीद सकते हैं।
0: और देखो, मोमबत्ती बनाने की प्रक्रिया, सबसे पहले वैक्स को गर्म करके पिघलाया जाता है। इसके बाद उसमें मनचाही सुगंध और रंग मिलाया जाता है। फिर सांचे या जार में पहले से बाती लगाकर तैयार मिश्रण को सावधानी पूर्वक डाला जाता है और कुछ घंटों तक ठंडा होने के बाद मोमबत्ती को पूरी तरह से उसमें, वो जो सांचे में डालते हैं, उसके बाद वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है।
1: और देखो, इसके तैयार होने के बाद इसके जो आकर्षक पैकेजिंग होती है उसको करके उसे बाजार में बिक्री के लिए इसको भेजा जा सकता है, और रोजगार और आय के अवसर। सुगंधित मोमबत्ती निर्माण जो है, ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसे घर में भी संचालित किया जा सकता है।
0: और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मिलकर उत्पादन बढ़ा सकती हैं और बड़े ऑर्डर भी पूरे कर सकती हैं।
1: स्थानीय बाजारों, मेलों, प्रदर्शनियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से इन उत्पादों की बिक्री आराम से की जा सकती है।
0: और देखो, वैसे देखा जाए तो त्योहारों के मौसम में भी इसकी कई जो मांग है, कई गुना बढ़ जाती है, जिसमें अच्छी आय भी प्राप्त हो सकती है अगर हम ये काम करें तो, है ना, या कोई भी अगर इस काम को करना चाहे तो।
1: और देखो, डिजिटल युग में तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज इतने अच्छे अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं छोटे उद्यमों के लिए, जो उनके लिए नए रोज इन नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
0: और स्वयं सहायता समूह सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार कर सकते हैं और कई तरह से डिजिटल भुगतान की सुविधा के कारोबार को और भी आसान बनाया जा सकता है, है ना।
1: हाँ, बिल्कुल। देखो, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम जो है, ये बहुत ही सकारात्मक कदम है सुगंधित मोमबत्तियों का जो निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ये केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का माध्यम भी है।
0: और जब महिलाएं अपनी मेहनत से आय अर्जित करती हैं, तो परिवार और समाज में उनका सम्मान बढ़ता है। वे अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार की आर्थिक जरूरतों में महत्वपूर्ण योगदान देने लगती हैं।
1: और सही कहा जाए सिमरन, तो यही आत्मनिर्भर नारी सशक्तिकरण, मतलब सशक्तिकरण वाली नारी की जो है वो वास्तविक पहचान है।
0: और एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके गांव या क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह सक्रिय है, तो आप उससे जुड़कर कई प्रकार के लघु उद्योग की कोई शुरुआत भी कर सकती हैं, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और छोटी शुरुआत ही बड़े बदलाव की नींव भी बनती है।
1: और देखो, ये जो सामूहिक प्रयास, मेहनत और सही दिशा में काम करके महिलाएं आर्थिक सफलता भी प्राप्त कर सकती हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं।
0: और देखो, जैसे सुगंधित मोमबत्ती निर्माण से लघु उद्योग हैं, तो ये साबित करते हैं कि सीमित संसाधनों के बावजूद इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयास से आत्मनिर्भरता भी हासिल की जा सकती है।
1: देखो, है ना, जो ये जो समूह होते हैं, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं को न केवल आर्थिक मजबूती दे रहे हैं बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी दिला रहे हैं।

0: हरे रामा हरे कृष्णा। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।
1: प्रतिमा, मैं ये सोच रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि हमारा मन घर में नहीं लगता जब हम अकेले होते हैं, है ना। और कई लोग ऐसे अकेले होते हैं जिनका मन घर में नहीं लगता, और अकेलेपन को मिटाने के लिए सबसे अच्छा आपका जो अगर साथी है, सबसे

0: अच्छा अगर आपका साथ है, वो प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं, उनके साथ आपका मन लग सकता है और आपका जीवन भी सुकून भरा बीत सकता है और आप खुशी महसूस ऐसी करेंगे कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा सिमरन तुमने,
0: है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे पालतू हमारे जो जानवर हैं, हमारे पशु पक्षी के साथ अगर समय बिताना, जिसे हम पेट थेरेपी या एनिमल असिस्टेड थेरेपी भी कहा जाता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर खुशी प्रदान करना है। तो पशु पक्षी तनाव कम करने वाले हार्मोन को बढ़ाते हैं और ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे फील गुड रसायनों को बढ़ावा भी देते हैं।
1: बिल्कुल तुमने ठीक कहा। देखो जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, इनके साथ जब हम रहते हैं तो बहुत हमें, जैसा हमने भी बात की, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। क्योंकि होता क्या है कि जो पालतू पशु पक्षी है, अगर उनको गले लगाते हैं, उन्हें सहलाते हैं, तो इसे तनाव और एंजाइटी तुरंत कम हो जाती है। और अपने आप जानवर से, अपने पक्षी से अगर आप, क्योंकि अमूमन हम बात भी करते हैं उनसे, है ना, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो गाना भी गाते हैं, तो वो मानसिक तनाव को दूर करता है और हमारे अकेलेपन की भावना को कम करता है।
0: और देखो जैसे साथ में खेले, उनके साथ जैसे ना टग ऑफ वॉर या बॉल फेंकने जैसे खेल खेलें, जिसमें एंड्रोफिन बढ़ता है और मूड भी बेहतर हो जाता है। रोजाना सैर पर ले जाएं अपने पशु पक्षियों को घुमाने के लिए, आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मूड को भी बेहतर बनाएंगे।
1: बिल्कुल। और देखो घर में जब ये हमारे जो पालतू जानवर रहते हैं, तो उनके साथ दौड़ने भागने खेलने जैसी कुछ हम उनके लिए एक्टिविटी कराते हैं, तो उसमें हमारे शरीर में भी काफी हरकत होती है। हम उनके साथ भागते दौड़ते हैं तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है।
0: और जैसे खाना खिलाने, टहलाने, जैसे खेलने का एक निश्चित समय निर्धारित कर लें। ये ना हो कि कई बार होता है ना कि उसको स्वस्थ रखता है, अगर आपके समय निश्चित हो तो आपके जो पशु पक्षी वो स्वस्थ रहते हैं। तो इसके लिए आपको भी एक अनुशासन रहित काम और दिनचर्या रखनी पड़ती है।
1: बिल्कुल। देखो मतलब आप अपने जो जानवर है, आपका जो घर में पालतू जानवर है, उसके साथ आप एक एक रूटीन के साथ काम करते हैं, तो उसकी रूटीन के साथ, उस अनुशासन के साथ आपका जीवन, आपकी जो जीवन शैली है, वो भी अनुशासित हो जाती है ना।
0: बिल्कुल।
1: और शोध के अनुसार ये भी पता चला है कि 10 मिनट तक किसी भी पालतू जानवर के साथ समय बिताने से दर्द और तनाव में काफी कमी आ जाती है।
0: कितनी अच्छी बात है
1: ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है सिमरन कि इतने ये वफादार साथी होते हैं ना, जो सामाजिक मेलजोल बढ़ाने में भी मदद करते हैं।
0: और पालतू जानवर हमें अधिक दयालु और संवेदनशील बनाते हैं, जिससे इमोशनल जो इंटेलिजेंस हमारी बढ़ती है। और खास तौर पर अच्छी देखभाल, भोजन, स्वास्थ्य, प्यार करना, उनका जो है ये उद्देश्य को बढ़ाता है, भावना देता है हमें, और खुशी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पशु पक्षियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
1: बिल्कुल। और देखो अगर किसी ने अपने घर में पालतू पशु पक्षी नहीं भी रखा हुआ है, तो आप अपने जो सराउंडिंग में, आपके सोशल एनवायरमेंट में कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं, तो आप पानी रख सकते हैं, दाना रख सकते हैं, आप उन्हें खाता हुआ देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो खुशी का एहसास होगा।

0: और देखो सिमरन, आज का जो दौर है वो तकनीक और विज्ञान का है, और जिंदगी देखो कितनी आसान हो गई है, लेकिन हमने मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर के चक्कर में, है ना, किताबों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। और किताबों के पन्नों से आती खुशबू, मुड़े हुए पन्ने और किताबों के बीच रखे सूखे फूल, बुक मार्क्स कहीं ना कहीं अपने वजूद को समेटे घर के किसी कोने में शेल्फ में पड़े, यानी कि किताबें पढ़ने की आदत छूट गई है।
1: लेकिन किताबें सोच को गहराई देती हैं, कल्पना शक्ति को उड़ान देती हैं, पंख देती हैं, और किताबें एकाग्रता, हमारी भाषा शैली, सोच क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
0: बिल्कुल, देखो लोगों ने किताबों की ओर वापसी शुरू कर दी है। सही मायनों में किताबें इंसान की शांत और वफादार दोस्त होती हैं, और देखो साथ ही साथ किताबें मानसिक और व्यक्तिगत विकास की कुंजी भी हैं, जो व्यक्ति को गहरी और सुदृढ़ पहचान देती है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो अगर आप किताबें पढ़ने की आदत से आगे आ गए हैं, वो आदत छूट गई है, तो आप दोबारा से इन किताबों को अपना दोस्त बना लें। शुरुआत धीरे धीरे होगी, लेकिन परिणाम जो होगा वो सकारात्मक और काफी गहरा होगा, है ना। एकाग्रता बढ़ेगी, मन शांत होगा और समय का बेहतर उपयोग भी होगा।

0: और प्रतिभा देखो अब घड़ी इशारा कर रही कि हमारे कार्यक्रम का वक्त समाप्त होने को है, तो हम अपने श्रोताओं से अपने दोस्तों से फिर मिलेंगे घर आंगन के शो में, और इसी के साथ लेते हैं अनुमति
1: तो मुझे यानी प्रतिभा को
0: और सिमरन कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज पश्चिम बंगाल के नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 7 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री मदन मित्रा के ठिकानों से जुड़े परिसरों में की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया

वक्त हो चला है 1:10 और 57 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल और मैं संगीता हूं आप सभी के साथ। आज जिक्र एक ऐसे गीतकार का जिसने देशवासियों में वतन परस्ती का जज्बा जगाया, एकता और भाईचारे का पैगाम दिया। आज जिक्र प्रेम धवन का। प्रेम धवन शुरुआत से ही प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ गए थे। पढ़ाई के दौरान इप्टा की गतिविधियों और ड्रामों में हिस्सा लेना, यही उनका अकेला शगल था। उस जमाने में मुंबई सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। प्रेम धवन भी अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचते ही उन्होंने इप्टा ज्वाइन कर लिया। तो आज हम जिक्र अगर प्रेम धवन का कर रहे हैं तो बिना गीत संगीत की तो बात बनती नहीं है। तो चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं एक खूबसूरत सा गीत, फिल्म है प्यार का सागर, और हाँ उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रहेगा। ये खूबसूरत गीत आपके लिए।

कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं प्रेम धवन को। प्रेम धवन की आवाज जो है वो बहुत सुरीली थी। उन्होंने पंजाब किसान सभा की सांस्कृतिक टीम में गीत गाना शुरू कर दिया। मजदूरों के संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन के समय वो गीत रचने लगे। प्रेम धवन को गीत तैयार करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और उनकी इस खूबी का इप्टा को आगे चलकर बहुत बहुत फायदा मिला। इप्टा के नाटकों के लिए प्रेम धवन ने कई गीत लिखे। गीत लिखने के अलावा नृत्य और संगीत में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। इस दिलचस्पी का ही सबब था कि उन्होंने पंडित रविशंकर से संगीत सीखा और पंडित उदय शंकर से और शांति रॉय वर्धन से संगीत और नृत्य की बाकायदा शिक्षा ली। इस तरह प्रेम धवन जो है वो गीतकार के साथ साथ कोरियोग्राफर भी बन गए और इसके साथ साथ कंपोजर भी बन गए। कमाल है, एक ही इंसान में कितनी सारी खूबियां होती हैं अलग अलग तरह की। नहीं, चलिए सुनते हैं फिलहाल ये गीत।

प्रेम धवन को आज हम अपने कार्यक्रम में याद कर रहे हैं। प्रेम धवन को प्रचलित लोक धुनों पर नई धुन बनाने में महारत हासिल थी। हर प्रांत के लोकगीत उन्हें जबानी याद थे। जब देश आजाद हुआ तो बंबई की सड़कों पर भी हजारों लोग आजादी का स्वागत करने के लिए निकले। इप्टा के सेंट्रल स्क्वाड ने इस खास मौके के लिए एक गीत रचा जिसे प्रेम धवन ने लिखा। पंडित रविशंकर ने इसकी धुन बनाई और मराठी के मशहूर गायक अमर शेख ने इस गीत को अपनी आवाज दी। इस गीत के बोलों ने उस वक्त हर हिंदुस्तानी के मन में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और खुशी का जज्बा जगा दिया। झूम झूम के नाचो आज, गाओ खुशी के गीत। झूठ की आखिर हार हुई है, सच की आखिर जीत। गाओ खुशी के गीत। फिल्मों में भी देशभक्ति के गीत उनकी पहचान बन गए। वैसे हम जब भी मतलब हो सकता है कि ज्यादातर लोगों को ये ना पता हो कि 15 अगस्त या 26 जनवरी के मौके पर जो ज्यादातर हम फिल्मी गीत सुनते हैं वो किसने लिखे हैं, क्योंकि आम लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें गीत से मतलब है, गीत दिल तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जो देशभक्ति के गीत हैं वो प्रेम धवन की कलम से निकले हैं। चलिए फिलहाल हम आपको सुनाते हैं शहीद फिल्म से ये गीत।

0: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
3: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
7: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
6: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
7: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
6: और विनर्स को क्या मिलेगा?
7: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
6: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
0: एक बजकर 27 मिनट और 45 सेकंड हो चुके हैं। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और मैं संगीता हूं आप सभी के साथ। आज कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में हम याद कर रहे हैं गीतकार, संगीतकार और कंपोजर, संगीतकार और कोरियोग्राफर प्रेम धवन को। तो देश की आजादी के बाद जब इप्टा में बिखराव आया तो प्रेम धवन कुछ समय के लिए इससे अलग हो गए और फिल्मों की तरफ उन्होंने रुख किया। काबुलीवाला का गीत ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान प्रेम धवन की कलम से निकला। साल 1965 में निर्देशक मनोज कुमार ने अपनी फिल्म शहीद में प्रेम धवन को 3 जिम्मेदारियां सौंपी। प्रेम धवन ने न सिर्फ गीत लिखे बल्कि संगीत और नृत्य निर्देशन की जिम्मेदारी भी प्रेम धवन के हिस्से आई। बहरहाल जब शहीद रिलीज हुई तो इस फिल्म का गीत बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गया। उस समय की हम क्या ही बात करें, अगर आज की भी बात करें, और मुझे लगता है कि कुछ लोगों से अगर पूछा जाए कि अपने पसंदीदा देशभक्ति के गीत बताइए या सुनाइए, तो उसमें कम से कम मुझे लगता है कि 2 गाने प्रेम धवन के तो होंगे ही, और शहीद की बात किए बिना तो बात आगे बढ़ती ही नहीं है। तो देशभक्ति से भरे उनके ये गीत आज भी पूरे देश में बजते हैं। तो हम आपको इस फिल्म से, शहीद फिल्म से गीत सुना चुके हैं। अभी जो फिल्म हम आपको, जिस फिल्म से हम आपको गीत सुनाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है वल्लाह क्या बात है, और सुनिए इस गीत को।

अगर आप अभी अभी हमसे जुड़े हैं ना, तो हम आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम है इसका नाम है कलाकार बेमिसाल, और आज हम याद कर रहे हैं गीतकार संगीतकार प्रेम धवन को। प्रेम धवन बचपन से ही थोड़े विद्रोही किस्म के थे। लाहौर में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात मशहूर शायर साहिर से हुई थी, जो उनके क्लासमेट भी थे। तो अक्सर दोनों कॉलेज के बाद शेर व शायरी की बातें किया करते थे। वैसे आपको ये भी बता दें कि मुंबई पहुंचने से पहले लाहौर में ही अहमद अब्बास की फिल्म आज और कल में असिस्टेंट कंपोजर के रूप में प्रेम धवन ने नौकरी की थी, तो उनके सामने कला का अनंत आसमान खुल चुका था। मुंबई में इप्टा से तो जुड़ गए, पर सिनेमा से जुड़ना इतना भी आसान नहीं था। खैर, बॉम्बे टॉकीज ने उन्हें बुलाया और इंटरव्यू लेने बैठे कौन, अशोक कुमार और देविका रानी। असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन गीतकार के रूप में काम मिल गया। फिल्म जिद्दी के साथ सिनेमा जगत में उनकी यात्रा शुरू हुई। और फिलहाल हम आपको क्या सुनवाएंगे, क्या सुनवा रहे हैं हम आपको, फिल्म पवित्र पापी से ये गीत।

प्रेम धवन ने बतौर संगीतकार भी अपनी पकड़ मजबूत रखी थी। ये जो गीत अभी हमने आपको सुनाया फिल्म पवित्र पापी से, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था और प्रेम धवन ने पंडित रविशंकर से संगीत सीखा था, तो जाहिर सी बात है शास्त्रीय कला का उन्हें ज्ञान बखूबी था। फिल्म मुन्ना, वक्त, धूल का फूल, सहारा, नया दौर में उन्होंने कोरियोग्राफर के रूप में काम किया। बतौर अभिनेता उन्होंने फिल्म लाजवाब में काम किया। फिल्म गूंज उठी शहनाई में एक अभिनेता के रूप में इतना खूबसूरत अभिनय किया कि उनके साथ ही उन्हें सब कुछ छोड़कर एक्टर बनने की सलाह देने लगे, राय देने लगी, लेकिन वो नहीं माने। उनका कहना था कि गीत लिखना उनका जीवन है, संगीत देना उनका शौक।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल और हम याद कर रहे हैं प्रेम धवन को। प्रेम धवन ने जितना लिखा सार्थक लिखा, जितना लिखा सकारात्मक लिखा, संवेदनशील होकर लिखा। उनके गीतों में जटिल शब्दों की भरमार नहीं बल्कि सहजता है, भावुकता है। बतौर गीतकार वो अनिल बिस्वास, सलिल चौधरी, मदन मोहन और चित्रगुप्त के ज्यादा करीब रहे। गीतकार के अंदर भाव नहीं, भावुकता नहीं, तो वो कैसा गीतकार। अपनी ही लोरी तुझे सूरज कहूं।

या चंदा रचते हुए कई कई बार वो रो पड़े। आखिरी बार उन्होंने फिल्म अप्पू राजा के लिए लिखा था। वैसे उनकी एक और लोरी बहुत लोकप्रिय रही, आज भी है, चंदा मामा दूर के। ओहो, कमाल की लोरी है और लता दी की आवाज है चंदा मामा दूर के ये इस लोरी में। और कितनी खूबसूरती से इस लोरी को बनाया है और अपने बचपन में हमने इस लोरी को सुना है। सुनते हैं ये लोरी।

0: फिल्म वचन से आपने ये लोरी सुनी आशा जी की आवाज में, और याद कर रहे हैं हम प्रेम धवन को। 1970 में भारत सरकार ने प्रेम धवन को पद्मश्री से सम्मानित किया। 1971 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म थी नानक दुखिया सब संसार। भले ही प्रेम धवन को बहुत सारे अवार्ड्स न मिले हों, पर उनकी सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे राष्ट्रीय पर्व उनके गीतों के बिना पूरे ही नहीं होते। प्रेम धवन हर उस दिल में बसे हैं जो वतन परस्त है, हर उस दिल में बसे हैं जिस दिल में मोहब्बत है, जिस दिल में सच्चाई है। तो फिलहाल तो वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, समय कह रहा है कि अब जाना पड़ेगा। हालांकि प्रेम धवन से जुड़ी इतनी ढेर सारी बातें हैं, क्योंकि वो ऐसे कलाकार रहे जो वाकई में बेमिसाल हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बातों को यहीं समेटना होगा और आपसे इजाजत चाहिए। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा, और अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। कार्यक्रमों का सिलसिला तो चलता रहेगा, आपसे हम फिर मिलेंगे जल्दी ही किसी कलाकार बेमिसाल की बातों को लेकर हाजिर होंगे। फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी।

0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे से फ्रांस के साथ इक्तिसादी और सकाफती रिश्तों को तकवियत मिलेगी और स्लोवाकिया के साथ बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस में एवियों में ग्रुप 7 की छोटी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों का खैर मकदम किया और कहा कि पहली बार 9 खातून कैडेटों के इस परेड में शामिल होने से जाहिर हो जाता है कि भारत खवातीन की जेर कयादत तरक्की की राह पर गामजन है। भारत ने खलीजी खित्ते में एक तेल बरदार बहरी जहाज पर अमरीकी बहरिया की कार्रवाई पर अमरीका से सख्त एहतजाज किया है। कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय जहाजी मारे गए थे। भारत की फजाइया का AN-32 तैयारा आसाम में फजाइया के जोरहाट स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल अपने पैगाम में जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के स्ट्रेटेजिक विजन में फ्रांस का खास मकाम है। जनाब मोदी ने कहा कि दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के दरमियान इक्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात के फरोग पर खास तवज्जो दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह भारत इनोवेटिव का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि यह तारीखी तकरीब भारत फ्रांस की इख्तिरा के साल के पस मंजर में मुनक़िद हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे भारत के सबसे ज्यादा पुरअज़्म स्टार्टअप्स का आलमी सरमायाकारी से राबता कायम होगा और भारत के आला तालीम के इको निज़ाम से उभरने वाली इख्तिराआत में बड़े पैमाने पर रफ्तार पैदा होगी। इस तकरीब के बाद कल वजीर आजम 2 रोजा दौरे के लिए नीस से स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। जनाब मोदी ने कहा कि इस तारीखी दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में हुई पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज रहेगी। वजीर आजम ब्रैसिलावा में स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलिग्रिनी और वजीर आजम रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी ने बताया कि इस दौरे से भारत की यूरोपीय यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तेजी आएगी और स्लोवाकिया EU का एक अहम रुकन है। स्लोवाकिया के अपने दौरे के बाद जनाब मोदी इवियान फ्रांस जाएंगे, जहां वो इस महीने की 16 और 17 तारीख को G7 समिट में शिरकत करेंगे। बिलाखिर वजीर आजम का दौरा 18 जून को पेरिस में अख्ताम पजीर होगा, जहां वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह वीवा टेक 2026 में शिरकत करेंगे। अक्षित की रिपोर्ट के साथ मैं असगर अली।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 2 मुल्कों के दौरे के तहत आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। भारतीय वक्त के मुताबिक रात के 10:30 बजे वजीर आजम के वहां पहुंचने का इम्कान है। फ्रांस के दौरे के दौरान वजीर आजम एवियों में G7 छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक तआवुन को मुस्तहकम करने के मकसद से दो तरफा मुलाकात भी करेंगे। बाद में वो स्लोवाकिया का दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ अहम शोबों में फरोग के ताल्लुक से वहां के कायदीन से मुजाकरात करेंगे। वजीर आजम की आमद से कबल भारतीय बिरादरी, स्टार्टअप्स के बानियों और कारोबारी अफराद ने इस दौरे पर गर्मजोशी का इजहार किया है। तवक्को की जा रही है कि इस दौरे से भारत और यूरोप के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए वसीतर तैयारियां की गई हैं और भारतीय बिरादरी उनसे मिलने की मुंतजर है।
1: भारत और फ्रांस के दरमियान अवामी सतह के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। तकरीबन 10,000 भारतीय तलबा फ्रांस में जेर तालीम है, जिसे 2030 तक 30,000 तक पहुंचाने का हदफ है। फ्रांस ने भारतीय नौजवानों के लिए मुतअद्दिद नए मौके फराहम किए हैं, जिनमें 5 साल स्केनगन वीजा और तालीम मुकम्मल करने के बाद 2 साल का वर्क परमिट और 18 से 35 साल की उम्र के नौजवानों के लिए यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शामिल है। आकाशवाणी से बात करते हुए फ्रांस में भारत के सफीर जनाब संजीव संगला ने कहा कि वजीर आजम का यह दौरा दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत की फौज ने आज अपने 481 नए अफसरों का खैर मकदम किया, जिन्होंने उत्तराखंड में देहरादून में वाकई इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अपनी तरबियत पूरी की है।

0: मौर्या द्रौपदी मुर्मू ने 158वीं पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। इन अफसरों ने अपनी सख्त मेहनत और जांफिशानी के साथ फौजी तरबियत कामयाबी के साथ पूरी की है। इन अफसरों ने फौजी जज्बे, लगन और डिसिप्लिन की मिसाल पेश करते हुए परेड में हिस्सा लिया। इस साल की पासिंग आउट परेड तारीखी नौयत की परेड थी, क्योंकि इसमें पहली बार मर्द कैडेटों के साथ साथ खवातीन कैडेटों ने भी हिस्सा लिया। इस शानदार तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि वो 9 खातून कैडेट्स को देखकर बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। सदर जमहूरिया ने यह भी कहा कि ये न सिर्फ भारत की दिफाई अफवाज की तारीख में एक अहम संगे मील है, बल्कि ख्वातीन की ज़ेरे क़यादत भारत की तरक्की के सफर में एक बाइस फैजान मिसाल भी है।
1: आई एम स्पेशली डिलाइटेड टू सी 9 वुमेन कैडेट्स। दिस इज वाटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ IMA। It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय फजाइया में नए भर्ती होने वाले अफसरों पर जोर दिया है कि वो बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल में सैटेलाइट और ड्रोन समेत नित नई उभरने वाली जंगी टेक्नोलॉजी से खुद को हम आहंग करें। उन्होंने ये बात हैदराबाद में फजाइया की एकेडमी में 217वीं मुश्तरका ग्रेजुएशन परेड में शामिल अफसरों से खिताब करते हुए कही।
2: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम्स आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और एक्सरसाइजेज में आपको अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेज का सामना करने के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया है।
0: भारत ने अमरीकी बहरिया के जरिए खलीज में किए गए उन हमलों पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है, जिनमें 3 भारतीय अमले की मौत हो गई थी। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से बात की और कहा कि तिजारती बहरी जहाजों पर इस तरह की जानलेवा कार्रवाईयों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ओमान साहिल के करीब पलाव के झंडे वाले टैंकर माउंट सेटेबेलो पर अमरीकी हमले में अमले के 3 भारतीय अराकीन की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई है और नई दिल्ली के सख्त रद्देअमल की वजह बने हैं। उमूर खारिजा की वजारत ने आज बताया कि बहरी जहाज लियाकी फ्रीडम में भारतीय जहाजरानों की मौत की खबर सही नहीं है। वजारत ने बताया कि उसने लियाकी फ्रीडम बहरी जहाज के मास्टर से बात की है, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अमले के सभी अरकान महफूज हैं। MEA के हकाइक का पता लगाने से मुतालिक महकमे ने अवाम पर जोर दिया है कि वो सोशल मीडिया पर फराहम करदा इस तरह के झूठे और बेबुनियाद दावों और पोस्ट के खिलाफ होशियार रहें। आज सुबह आसाम में फजाइया के जोरहाट स्टेशन पर भारतीय फजाइया का एक AN-32 तैयारा हादसे का शिकार हो गया। भारतीय फजाइया ने बताया है कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए छानबीन की जा रही है। अवामी जमहूरिया कांगो में इबोला में मुबतला 689 अफराद की तस्दीक हुई है, जिनमें 139 अमवात भी शामिल हैं। सेहत से वाबस्ता एहलकारों के मुताबिक इतूरी सूबे से 17 नए केसों और मजीद 5 अमवात की तस्दीक हुई है। हुकाम ने दवाओं की फराहमी में किल्लत, इलाज मुआलजे की महदूद सहूलियात और 2,15,00,000 डॉलर की रकम की कमी पर तशवीश का इजहार किया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके इस दौरे से फ्रांस के साथ इक्तिसादी और सकावती रिश्तों को तकवियत मिलेगी और स्लोवाकिया के साथ बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस के एवियों में ग्रुप 7 की छोटी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों का खैर मकदम किया और कहा कि पहली बार 9 खातून कैडेटों के इस परेड में शामिल होने से जाहिर हो जाता है कि भारत खवातीन की जेरे क़यादत तरक्की की राह पर गामजन है। भारत ने खलीजी खित्ते में एक तेल बरदार बहरी जहाज पर अमरीका की बहरिया की कार्रवाई पर सख्त एहतजाज किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the Midday News.

0: sharp response from New Delhi. External Affairs Ministry today said reports of death of Indian sailors in vessel Liaki Freedom are incorrect. The ministry said it has spoken to the master of the vessel Liaki Freedom, which has confirmed that all crew members are safe. The fact-check unit of MEA has urged people to stay alert against such false and baseless claims and posts on social media. The Enforcement Directorate, or ED, today conducted searches at seven premises in Kolkata and nearby areas in connection with the alleged municipality recruitment scam in West Bengal. The searches are being carried out at locations linked to TMC MLA and former Minister Madan Mitra. According to ED, investigations conducted so far have revealed that Madan Mitra allegedly received bribes in the form of cash and gold through middlemen in connection with the appointment of ineligible candidates to various posts in different municipalities, including the Kamarhati municipality. The agency has alleged that Madan Mitra is linked to more than 125 such illegal appointments. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning. Indian Air Force said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Niti Aayog held a meeting with the German delegation aimed at advancing the Indian-Germany Development Partnership in New Delhi. The India-Germany Development Partnership highlighted the complementarity between Germany's technical expertise and development finance capabilities and India's policy ambition and institutional scale. According to the Niti Aayog, the discussions covered key areas of cooperation, including India's net zero transition, renewable energy, circular economy, agricultural transformation, water resource management and others. The government's flagship initiative, Beti Bachao, Beti Padhao, has emerged as a nationwide movement promoting behavioral change and empowering the girl child across the country. Data from the Health Management Information System show that the national sex ratio at birth has improved from 918 in 2014-15 to 929 in 2024-25, reflecting sustained efforts to prevent gender-biased sex selection and promote institutional deliveries. And in sports, in men's cricket, the toss for the first ODI of the three-match series between India and Afghanistan has been delayed due to rain in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match was earlier scheduled to begin at 1:30 p.m. Star India batter and former skipper Rohit Sharma is expected to be in action in today's match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai. The India Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. The weather agency also predicted heavy rainfall conditions over parts of Bihar, Kerala, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia, says his visit will focus on boosting economic and cultural linkages with France and building strong bilateral relationship with Slovakia. Prime Minister Modi will also attend G7 summit at Evian in France. President Draupadi Murmu hails cadets at IMA passing out parade in Dehradun, says inclusion of 9 women cadets for the first time reflects India's march towards women-led development. India lodges strong protest to the US over US Navy strikes on oil ship in the Gulf, killing 3 Indian sailors. Indian Air Force AN-32 aircraft meets with an accident at Jorhat Air Force Station in Assam. And in men's cricket, toss for first ODI of 3-match series between India and Afghanistan delayed due to rain in Dharamshala. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना, कहा यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंघला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: आईमे स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
6: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must

0: Remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया. ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे. प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया. साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून.
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया. इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है.
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का. तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है.
2: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया. रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार तीन सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है. रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए. बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा. केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है. इन हमलों में तीन भारतीय नाविक मारे गए थे. डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है. एक रिपोर्ट.
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई. जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे. इनमें से किस सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया? इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए. समाचार कक्ष से मेघना.
2: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए. नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है. लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है. अप्रैल में ये 3.48% थी. ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही. भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ. विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई. वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं. ये आकाशवाणी है. ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें

0: पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात।

0: कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, जिसे आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और कहते हैं कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। सदियों पहले कही गई ये पंक्तियां आज भी पहले से कहीं अधिक सच लगती हैं, क्योंकि जल है तो जीवन है, जल है तो अन्न है, जल है तो पशुधन है, जल है तो प्रकृति की मुस्कान है। लेकिन जरा सोचिए, जिस पानी को कभी हम असीम समझते थे, वही आज बूंद बूंद बचाने की बात हो रही है। तो आज के कार्यक्रम में कुछ ऐसी ही जानकारियां लेकर आए हैं हम आप सभी के लिए। मैं हूं आपके साथ कोमल और मेरे साथ हैं
2: निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। बिल्कुल सही बात कही आपने कोमल, के जैसे दुआ है इसका मतलब तो बहुत व्यापक है, रहीम का ये दुआ है, बहुत बड़ा व्यापक इसका अर्थ निकलता है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में अगर हम बात करें
1: जी,
2: तो पानी के बिना और हमारा जीवन भी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पानी को बचाना है। और वैसे देखें तो समुद्र भरे पड़े हैं हमारे, इतना सारा जल है ब्रह्मांड में, कहते हैं 2/3 तक तो पानी है। लेकिन हम जब पानी की बात करते हैं जो खेती के योग्य है और पीने वाला पानी है, उसकी हम बात करते हैं, और उसके घटने का बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि हम अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं जमीन से और जल का बचाव नहीं कर रहे हैं, या शहरीकरण इस तरह से हो रहा है कि हम लगातार पेड़ों को उजाड़ करके, खेतों को उजाड़ करके शहरीकरण करते जा रहे हैं। और आगे आकर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह से अगर हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो आज इसी विषय पर हम जानकारी लेकर कार्यक्रम में आए हैं कि जल संकट से समाधान की ओर व्यवहारिक जल संरक्षण, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ उपस्थित हैं डॉक्टर टीकम सिंह जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और कोमल, हम डॉक्टर साहब से जैसे बातचीत करेंगे, हमारे श्रोता भी कार्यक्रम को सुनते हुए हो सकता है उनके जहन में कुछ सवाल आए तो वो हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से।
1: बिल्कुल, टेलीफोन के माध्यम से इस व्यापक विषय के बारे में आप बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को आपको इस कार्यक्रम से मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सवाल है इस विषय से संबंधित कि जल संकट से आप समाधान की ओर किस तरीके से जाएं, व्यवहारिक जल संरक्षण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे इनका आप उपयोग कर सकते हैं, कैसे आप इनसे लाभ ले सकते हैं, इस सारी तमाम जानकारियां आज के किसान की बात कार्यक्रम में आप जानेंगे। तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ दोपहर 3 बजे तक, और हमारी टेलीफोन लाइन्स के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं जो कि है 2342108 और 2342103। इससे पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहां हम स्टूडियो में आप सभी के फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी है इस विषय पर हासिल कर सके और जल संरक्षण में अपना योगदान दे सके।
2: तो डॉक्टर टीकम सिंह जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं जल संकट की, जल का संकट बढ़ता जा रहा है, तो इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं?
3: बिल्कुल, आप लोगों ने सही बताया कि जो हमारा जो जल जो है, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो जीवन के लिए जरूरी है वो वायु है
1: जी।
3: उसके बाद में जो अगर कहीं दूसरी चीज आती है तो वो जल है। तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, और जल हमारा जो स्थिति में, हम इस स्थिति में जो पहुंचे हैं, जो संकट की ओर जैसे बढ़ रहा है, उसके बहुत सारे कारण हैं। और फिलहाल में अभी हम जब देखते हैं, हमारे नीति आयोग ने भी इस बात को जाना है कि करीब हमारे 20 से 25 ऐसे बड़े शहर जिनके अंदर पानी का बहुत दिक्कत है,
2: भूमिगत
3: जल गिर रहा है, पानी का पीने तक अवेलेबल अच्छी तरह से नहीं है। तो उससे करीब हमारी 100 से ज्यादा मिलियन आबादी प्रभावित है शहरी क्षेत्रों में। इसी तरह से गांव में एक तो पीने का पानी अच्छा हो, क्वालिटी का हो, तो हमारा जो पानी है गांव का, शहरों में जो पानी सप्लाई होता है इसका तो ट्रीटमेंट के माध्यम से मिलता है तो पीने योग्य अच्छा होता है। लेकिन गांव में हमारे अधिकतर किसान भाई और सभी जो एक भूजल स्तर ही भूजल पानी ही काम में लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा जो है ना लवणीय पानी होता है, उसकी क्वालिटी पीने योग्य इतनी नहीं होती। तो करीब हमारे गांव एरिया में 70% तक लोग प्रदूषित पानी पी रहे हैं
1: जी।

0: और सिटियों में थोड़ा स्थिति ठीक है क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट लग के पानी सप्लाई होता है, और डैम का पानी आता है तो वो मानते हैं कि वो अच्छा होता है बजाय भूतल, हाँ नदियों का जो पानी होता है। तो ये संकट बहुत है। और अभी जो हम देखते हैं कि संकट की बात क्यों आ रही है, क्योंकि एक सामान्य जीवन जीने के लिए आदमी के लिए करीब 1700 से 1900 क्यूबिक मीटर पानी चाहिए प्रति ईयर, लेकिन ये धीरे धीरे घटते घटते अभी हमारे देश में वर्तमान में करीब 1400 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति वाटर है प्रति ईयर अवेलेबल। तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ये हमें संकेत दे रहा है कि हमारा जो पानी का जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। और अगर ये हमारा इसी तरह कम होता गया तो 2050 तक जी। ये संभावना है कि ये 1100 के आसपास पहुंच जाए, उस समय परिस्थिति ज्यादा सीवियर हो जाएंगे, मतलब ज्यादा संकटग्रस्त हो जाएंगी। तो हमें ये सही समय है कि हमें हमारे जो जल स्रोत हैं उनका समुचित अच्छी तरह से उपयोग करें। और जो जल के जो साधन, देखिए पानी हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है वर्षा के माध्यम से
1: जी।
0: बाकी कुछ हमारा जो हिमालय क्षेत्र है, हिमालय पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ की ऊंची ऊंची चोटियों पे कुछ बर्फ होती है जिनको ग्लेशियर बोलते हैं, उसका पानी गर्मियों में पिघल करके नदियों के माध्यम से आता है, वो एक है। बाकी अधिकतर हमारा पानी जो आता है वो प्राकृतिक रूप से जो वर्षा होती है उसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। और ये वर्षा पूरे भारत में आपने देखा होगा समान रूप से वितरित नहीं है। पानी की वर्षा की मात्रा हमारे भारत में करीब 1100 से 1200 mm प्रति ईयर है, वो काफी अच्छी मात्रा होती है।
2: लेकिन अलग क्षेत्रों में कहीं
0: लेकिन कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। और उसका और आजकल क्या है ना, और ये पूरे साल भर अवेलेबल नहीं है, पूरे साल भर उपलब्ध नहीं होती है, ओनली अभी बारिश का जो सीजन चलेगा 3 से 3.5 महीने बारिश होती है, उसके बाद में हमारा अधिकतर सूखा ही रहता है।
1: और आजकल ये भी देखने में आता है डॉक्टर साहब कि पहले जो है बारिश कई दिनों तक होती थी, बारिश तो आज भी लगभग उतनी ही होती है, लेकिन अब जो है उसका समय थोड़ा सा सीमित हो गया, तो पानी बह जाता है
0: बिल्कुल, क्योंकि धीरे धीरे बारिश होगी तो वो अधिकतर पानी हमारा जमीन के अंदर जाता है और इंटेंसिटी बढ़ गई है क्योंकि जलवायु परिवर्तन हुआ है इसकी वजह से। और जहां पानी कम बरसना चाहिए वहां कभी ज्यादा हो जाता है, आपने देखा होगा रेगिस्तानों में भी बाढ़ की समाचार आते हैं जब बारिश के टाइम में। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जो हमें मैंने बताया जितना हमें पानी बारिश के रूप में मिल रहा है उसका केवल हम 1/4 उपयोग कर पाते हैं, 3/4 हमारा ऐसे नदियों में बह करके और सीधा समुद्र में चला जाता है। तो इसलिए हमें पानी के स्रोत में हमारा देश पूरी तरह से समृद्ध है, बट लेकिन उसका संरक्षण और उसका हमें जो है ना उपयोग करना बहुत जरूरी है, उसका मतलब हमें संरक्षण करना जरूरी है। अगर हम इसको 25% जो हम बता रहे हैं कितना यूज कर पाते हैं बारिश के पानी को, अगर हम इसको 50% तक कर दें तो हमारा जल संकट दूर हो जाएगा।
2: अच्छा, किसान जो है हमारे, हाँ वो क्या ऐसी लापरवाही करते हैं जिससे कि पानी बर्बाद होता है?
0: देखिए किसानों की जब बात करते हैं ऐसे जान के तो कोई करता नहीं है,
2: कुछ लोगों से
0: कुछ, लेकिन है क्या है अनजाने में हो जाती है। हमारे किसान भाई कभी अनजाने में ऐसा होता है कि बाढ़ का पानी, जैसे आपके कैनाल का पानी आता है, सिंचाई करते हैं तो किसान सोचता है कभी क्या ना पानी थोड़ा लेट होगा तो वो सोचता है कि बहुत ज्यादा खेत को भर दो तो ज्यादा लंबे समय तक पानी रहेगा और हमारे खेत में नहीं आएगा। लेकिन उससे पानी का तो नुकसान हो ही रहा है, इसके अलावा फसल का भी नुकसान होता है, क्योंकि फसल के लिए भी एक जो समुचित उचित मात्रा में पानी हमेशा बना रहना जरूरी है। अगर ज्यादा भरेंगे तो जो वायु का संचार है वो रुक जाएगा, पौधे पीले पड़ जाते हैं,
2: हाँ
0: तो किसान भाई कभी कभी कैनाल वाले एरिया में ये करते हैं। दूसरा ये होता है कि किसान भाई सोचते हैं कि भाई ज्यादा पानी देंगे तो ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। आप बार बार दीजिए लेकिन कम पानी दीजिए, बहुत ज्यादा उसमें पॉन्डिंग मत करिए, ज्यादा मत भरिए, और जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से पानी का उपयोग करिए।
2: और कई बार कई किसान भाई तो ऐसा है कि बहुत देख करके सोचते हैं कि इस फसल में कम पानी दिया जाए, कम दिया जाए, और कई ऐसे हैं जैसा आपने कहा कि बहुत ज्यादा पानी देंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा, उनके हाँ, दिमाग में
0: तो
2: ये रहता
0: है। वही बात है, तो वही हमारे जो हमारे जैसे ये प्रोग्राम है और इसी प्रकार से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत सारे संस्थान है, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय सरकार की कई योजनाएं हैं, वो भी इसका पूरा प्रचार प्रसार करते हैं कि किसान भाई इस चीज को समझें कि हमें हमारे पानी को

0: बूंद बूंद की जो कीमत है उसके हिसाब से इसको यूज करना है, ना कि ये कि हमें, जैसे हमारा स्लोगन भी है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हमें हर बूंद पे ज्यादा क्रॉप लगाना है, तो उस हिसाब से। तो किसान भाई की क्या है, थोड़ा एक और गलती है कि हमारे किसानों की नहीं है, वो इन जनरल प्रैक्टिस में है कि अधिकतर हमारी जो सिंचाई की जो व्यवस्था है वो हम सतही सिंचाई करते हैं, मतलब फ्लडिंग टाइप से ही सिंचाई होती है, जो हमारा जो
1: माइक्रो और सीधा पानी,
0: हाँ माइक्रो इरिगेशन की जो पद्धति है वो उसका बहुत कम योगदान है,
1: तो इसमें थोड़ा सा विस्तार से,
0: हाँ तो इसके अलावा साथ में ऐसे ही हमें जो दूसरी पद्धति है, चाहे हम
1: तरीके हैं वो बता, हाँ
0: सतही सिंचाई करें, पर अगर हम जो क्यारी और मैड बना करके जो सिंचाई करते हैं, कुंड बना करके खेती करते हैं, तो उसमें जो है ना पानी की करीब 20-30% तक बचत हो जाती है। आप ब्रॉड बेड बनाएं और उसके बाद में उस पे ब्रॉड बेड पे आपकी फसल लगाएं और नाली के अंदर पानी चला दें, तो इस तरह की अगर व्यवस्था किसान भाई करें तो कुछ हद तक आपकी फसल की भी उत्पादकता बढ़ेगी और पानी की भी बचत होगी।
1: और वैसे डॉक्टर साहब, जैसे इस समय मौसम में बहुत गर्मी है और बेल वाली फसलें हमारी खेतों में है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो कहते हैं कि एक बड़ी बेड बनाकर बेल फैला दें और एक नाली में पानी का कर दें तो बहुत ज्यादा बचत हो सकती है।
0: हाँ बिल्कुल, वो किसान करते ही हैं, जो गर्मी के सीजन में जो हम आप बेल वाली फसलें लगाते हैं उसमें नाली में सोइंग करते हैं, और बाकी करीब 60% एरिया जो रहता है, 60% का पास एरिया जो रहता है वो वैसा ही रहता है सूखा,
1: जिसपे तो
0: बेल रहती है।
2: डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये जो पानी का इस्तेमाल जो होता है वो सीधे तौर पे जो है किसान की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर पानी की सिंचाई की अगर कमी होगी या बहुत अधिकता हो जाएगी तो उसकी फसल को नुकसान भी हो सकता है। तो अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें तो उस पे इसका क्या असर पड़ता है?
0: देखिए, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे आधारित है, अधिकतर कृषि का इसमें शेयर है, तो अगर हमारी कृषि कहीं जगह प्रभावित होगी तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो उसी प्रकार से गांव में भी, गांव की जो अर्थव्यवस्था है, अगर हम पानी का सदुपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो गांव के, आप देखो गांव में कई गांव में जैसे 3-4 स्टेट हैं, जो अपना महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उसमें कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें पानी की हर साल दिक्कत रहती है, और ये गांव वालों ने भी एग्जाम्पल प्रस्तुत किए हैं कि उन्होंने जल संरक्षण की तकनीकें अपना करके अपने गांव को हरा भरा किया है। तो
2: वो कौन कौन सी तकनीकें हो सकती है जो किसान अपने मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है और सब लोग मिलकर के भी?
0: बिल्कुल, उन्हीं को व्यावहारिक तकनीक कहते हैं जिनको किसान भाई अपना सकता है। जैसे मैंने बताया, अगर आपकी जमीन ढालू जमीन है तो उसमें आप जो है कंटूर खेती करें, कंटूर बेड बना करके ढाल के हिसाब से,
1: मतलब पहले ऊंचा फिर उसके,
0: हाँ हाँ हाँ, उस हिसाब से खेती करें। कम ढाल है उसमें आपके लंबी बढ़ने वाली फसल, फिर फसल को आच्छादित करने वाली, कवर करने वाली फसलें, उस हिसाब से फसलों का उसमें समावेश करें तो आपका,
1: तो इस तरह का तो पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है,
0: पर्वतीय में मिलता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में भी कुछ जमीन का स्लोप रहता है।
1: मतलब आपका ये मतलब है अगर कोई ऊंचा खेत है तो हाँ, उसको मेड बना के अलग रख दें, नीचे वाले को अलग रख दें।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: अब ये इशारा मिल रहा है कि टेलीफोन आ गया है, एक श्रोता से हाँ, सुन लेते हैं। हेलो,
3: नमस्कार डॉक्टर।
0: नमस्कार जी, नमस्कार,
1: स्वागत है कार्यक्रम में आपका, परिचय दीजिए और क्या सवाल है आपका?
3: मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ
1: जी। हाँ जी,
3: ये जब तक सरकार पानी, बरसात के पानी का प्रबंधन नहीं करेगी, छोटे बड़े डैम नहीं, आज पानी का कोई इंतजाम होने वाला है नहीं देश में, और सरकार इस तरफ ध्यान देती नहीं, और नए नए काम, नए नए काम लिखे तब पैसे बगा के तरफ कुछ कर दिया, उन धंधों में सरकार रहती है। बाकी जल संरक्षण बार बार ये कहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं। इलाज इसका सिर्फ एक ही है कि इसका जल संरक्षण करो, जगह जगह बरसात के पानी के डैम छोटे बड़े आवश्यकता है वैसे बोला तो पर कुछ हो सकता है इस पानी का प्रबंध देश में।
1: हाँ, सुरेंद्र जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो आप सरकार की बात कर रहे हैं, सारी चीजें हम अगर सरकार के ऊपर छोड़ेंगे ना तो पूरा हमें व्यवहारिक होना पड़ेगा उसके साथ साथ।
0: नहीं ऐसा नहीं है, सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है। सरकार की समय समय पर बहुत सारी योजनाएं आती हैं, जल नीति आई, उसके बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, आपके अमृत सरोवर योजना है,

0: तो ये सब योजना अमृत सरोवर योजना में हर डिस्ट्रिक्ट में करीब 75 इस प्रकार के तालाब बनाए जाएंगे, जिससे किसानों को जो पानी का जो है संरक्षण कर सकें और वो किसान उस पानी को अपने खेती के लिए उपयोग कर सकें।
1: और हमें भी कहना चाहेंगे कि सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर के हमारे सभी श्रोता उसका लाभ उठाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत सारे प्रयास सरकार के चल रहे हैं
2: और इस तरह की योजनाओं की जानकारी और इस तरह की सारी जानकारी जो है वो हम अपने कार्यक्रमों में समय समय पर देते ही रहते हैं। और निरंकार, आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ हम सरकार या प्रशासन के भरोसे ही नहीं रह सकते, हमारी खुद की नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे कार्यक्रम में कि हम ग्रामीण स्तर पे अगर हम मिलकर के कुछ करना चाहें तो वो हम कुछ साझा प्रयास कर सकते हैं, कुछ अपने व्यक्तिगत प्रयास।
1: और एक और बात है कोमल, सरकार की योजनाएं होती हैं उसमें भी हमें अपनी भागीदारी देनी पड़ती है। सरकार ने योजना बनाई लेकिन इम्प्लीमेंट तो हम ही करेंगे, हम ही उसे चलाएंगे। सरकार ने कोई सुविधा हमें दी है, हम उसका लाभ अगर लेंगे तभी तरक्की हो पाएगी।
0: देखिए, ग्रामीण स्तर पर पहले हर एक गांव में तालाब होते थे जिनको पोखर बोलते थे, लेकिन अभी वो जब जो है उनके अंदर जमीन मिट्टी आकर के भर गई है, तो उनको जो है ना उनको दोबारा से हमें उनको जीर्णोद्धार करके दोबारा से उस स्थिति में लाना है। वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जगह खाली है, उसका अपना अलग महत्व होता है।
1: मिट्टी भर के मकान बनाना है, फिर पानी का स्तर कैसे ऊपर,
0: तो पानी का स्तर जब आप गांव में वो तालाब रहता है तो उसके साथ में ही कुआं होता था, कुआं के आसपास, तो जो आपका जो ग्राउंड है, जमीन का जो जल है वो भी रिचार्ज होता है, और उसके बाद में आपके पशुओं को और दूसरे जो साधन है उनके लिए पानी उसका उपयोग में किया जाता है। कम्युनिटी लेवल पर अधिकतर पशु उसको पीने के काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से जो तालाब है उनको वापस से पुनः हर एक गांव में उस तरह के, और वही जो मैंने बताया कि अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य वही है कि हर एक जिले में हर एक गांव में एक ऐसे तालाब हो। अब तो गवर्नमेंट जो है ना इन पे तालाब बनाने पे फार्म पॉन्ड जिसको बोलते हैं, फार्म पॉन्ड स्कीम के तहत सब्सिडी भी देती है, तो किसान भाई उसको लाभ उठा करके अपने फार्म पे फार्म पॉन्ड बना सकते हैं।
1: और मछली पालन के लिए तो बिल्कुल ही पड़ते हैं।
0: बिल्कुल, फिर बाद में आप उसको जब आपने फार्म पॉन्ड बनाया तो वो दूसरा लाभ है
2: जी।
0: उसका आपने पानी का तो वो
1: संरक्षण
0: भी होगा और उसको आप मछली पालन में भी काम में ले सकते हैं,
2: मतलब आपकी आय भी बढ़ाने के वो काम आ सकता
0: है। बिल्कुल बिल्कुल,
2: यानी आम के आम और गुठलियों के दाम, ये वाली बात होगी। और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आपको इस कार्यक्रम में मिलेगी कि आप जल संकट से समाधान की ओर किस तरीके से बढ़ सकते हैं, और व्यवहारिक जल संरक्षण चाहे आप व्यक्तिगत तौर पर करें या आप सामूहिक तौर पर करें, उसके बहुत सारे तरीके, बहुत सारी बातें उस बारे में आज हम आपको कार्यक्रम किसान की बात में बता रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कार्यक्रम में यहां पर ले रहे हैं हम एक छोटा सा विराम।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और

0: कार्यक्रम किसान की बात में आज हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप सभी के लिए कि आप किस तरीके से जल का संरक्षण कर सकते हैं व्यवहारिक तरीके से और कैसे इस जल संकट से आप उबर सकते हैं। चाहे आप किसान हैं, चाहे आप शहर में रहते हैं, चाहे आप गांव में रहते हैं, आप जहां पर भी रहते हैं, हम सभी के लिए जल जो है वो एक समान रूप से जरूरी है और उस सभी का संरक्षण करना भी हम सभी के लिए उतनी ही हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि आने वाले समय में जो है बरसातें भी शुरू होने वाली है, तो निरंकार ऐसे में ज्यादा हम लोगों को पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और हम बार बार कह रहे हैं कि पानी को बचाना जरूरी है, इसके महत्व को हम जान रहे हैं, डॉक्टर साहब ने इतने विस्तार से बताया। अब डॉक्टर साहब, जब जरूरी है तो क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं?
2: देखिए, तरीके जानने से पहले मैं थोड़ा सा इस पे बताऊंगा कि इसे संकट क्यों आ रहा है। तो जैसे कि हम किसान के लेवल पे हम देखते हैं तो हमारी जो सिंचाई की पद्धतियां हैं उनमें खामियां हैं, हमें उनको सुधारना होगा। जैसे हम सतही अधिकतर बाढ़ इरिगेशन है वो करते हैं, तो उसको थोड़ा हमें कुछ भाग हमें माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म इरिगेशन है, उसकी तरफ लाना होगा। इसी प्रकार से क्योंकि कुछ तो हमारे हाथ में चीजें नहीं होती हैं, जैसे आपका जलवायु परिवर्तन है, उसके हिसाब से जो वर्षा की जो तीव्रता है वो बढ़ी है और उसकी जो समय है, अवधि है बारिश की, वो कम हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमें इन साधनों को और अच्छे से हमें सुदृढ़ करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से ये संकट आ रहा है। और दूसरा, हमारी जो जनसंख्या है, हम संसार में अभी सबसे ज्यादा हैं, पूरी दुनिया में हमारी जनसंख्या करीब 18% है और जल के जो स्रोत हैं वो करीब 4% के आसपास हमारे जल के संसाधन हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जल की जो मांग है वो निरंतर कृषि के अलावा दूसरे जो हमारे औद्योगिक हैं और डोमेस्टिक जो उपयोग वाले हैं पीने के लिए और दूसरे कामों के लिए जो उपयोग आता है उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस वजह से भी हमें अधिक जल की आवश्यकता आने वाले फ्यूचर में भी और निरंतर इसकी मात्रा बढ़ती रहेगी। तो जहां तक उपायों की बात है, जल संरक्षण जो मैंने बताया शुरू में कि हमारा करीब हम 2/3 जल हमारा ऐसे ही चला जाता है, तो हम इस संकट को दूर कर सकते हैं उसको सही तरीके से हम संरक्षित करें। तो संरक्षित करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है जिसको हम बोलते हैं इनसीटू संरक्षण। इनसीटू का मतलब है जहां पानी बरसा, क्योंकि बरसात का पानी है, पानी जहां बरसा वहीं उसको, उस खेत का पानी खेत में
0: जी,
2: उसका मतलब ये है। इनसीटू का मतलब खेत का पानी खेत में ही आपको उसको संरक्षित करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसान भाइयों को जैसे बारिश अभी आने वाली है तो किसान भाई अपने खेतों की जो मेड़े हैं उनको थोड़ा बड़ा कर दें, जिससे हल्की बारिश होगी तो वो पानी आपका खेत में ही रहेगा, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो ही वो बाहर जाएगा। और इसके लिए किसान भाई अगर बाहर जाए तो ऐसा नहीं कि वो आपके चारों तरफ से जाए, उसके लिए आप जल निकास की व्यवस्था रखें, अगर बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो उसको जल निकास के माध्यम से, और दूसरे जो उन जल निकासों को ऐसा करें कि जैसे हम बता रहे थे गांव में अगर आपका तालाब है उसकी तरफ उसको डाइवर्ट करें, या फिर अपने फार्म पे ही छोटा तालाब बनाएं, अधिक बारिश हो तो उसको वहां संरक्षित करें
0: जी।
2: ये तरीका हो गया, ये इंसिटू का। दूसरा है इंसिटू में ही, जैसे मैंने बताया कि हमारी जो खेती है, ढलान वाले क्षेत्र हैं, ढलान वाले खेत हैं, उनमें ढलान के अक्रॉस खेती करें, ढलान के विपरीत साइड में आपकी जुताई करें, उसी साथ में आपकी उसकी बुवाई करें, तो जिससे क्या है कि जो आपका फसल होगी, पौधे होंगे, उनसे पानी का जो बहाव है वो अवरोध होगा और उसको समय मिलेगा कि वो आपकी जमीन के अंदर अधिकतर जाए। तो ये इंसिटू के कुछ साधन है। इसके अलावा आपका जो फसल अवशेष है उसको भी सरफेस पे रखें, वो भी हमारी जो है ना
1: नमी को रोकने
2: के लिए मल्चिंग करता है और वो आपके जो पानी का जो बहाव है उसको कम करता है और अधिक समय देता है कि वो ज्यादातर जमीन में जाए। दूसरे आते हैं एक्सीटू, जिनका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा बारिश हो गई, हम खेत में उसको संरक्षित नहीं कर सकते और ओवरफ्लो ज्यादा है, तो उसको हमें डाइवर्ट करके कहीं पास में तालाब में है या आपके बहुत बड़े बड़े डैम बनाते हैं उनके अंदर उसको करते हैं, तो वो जो एक्सीटू जो संरक्षण है
0: जी,
2: उसमें आपके तालाब में उसको संरक्षित करते हैं, तालाब में, डैम में, उसमें उसको संरक्षित,
1: यानी जो पानी बह रहा है उसे किसी डैम में या किसी तालाब में इकट्ठा करना।
2: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: और अगर हम किसानों की बात करें तो डॉक्टर साहब शायद फसल का चयन जो है वो भी पानी को बचाने के में काम आता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो फसल पद्धति है, जैसे मैंने कहा कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है। हम कहाँ कर रहे हैं किसान भाई, हमारा जो दिक्कत मैंने बताया ना, फसल जैसे जहां धान की खेती एक ऐसी है कि उसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है,
1: धान और गन्ना दोनों।
2: हाँ धान और गन्ना, तो इनकी खेती जहां पानी की उपलब्धता है वहां धान करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही खेती अगर किसान भाई जहां पानी के साधन कम है अगर वहां खेती कर रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि पानी का दोहन ज्यादा होगा। आप देखो पंजाब हरियाणा के अंदर जो धान की खेती करते हैं, जल स्तर, जमीन का जो जल स्तर है काफी नीचे चला गया है। हरियाणा में तो किसान ने जो गर्मी में अधिकतर किसान भाई इसकी धान की खेती लगाते हैं, तो हमें जो इस तरफ सोचना होगा कि ये जो ऐसी फसलें हैं जहां पानी की समस्या है वहां उनको ना लगाएं, दूसरी फसलें लगाएं।
1: पर पानी कम है श्री अन्न लगा सकते हैं,
2: बस श्री अन्न लगाएं, आपके मक्का लगाएं, दूसरी फसलें लगाएं, दलहन लगाएं, तिलहन लगाएं, वो फसलें लगाएं, तो उसकी जगह आपका पानी की बचत होगी और वो पानी दूसरों के भी उसमें काम में आएगा। आपकी जो आपकी आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
1: आपने माइक्रो इरिगेशन की बात की, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए।
2: हाँ जी हाँ जी, जैसे माइक्रो इरिगेशन में हम बोलते हैं जो बूंद बूंद सिंचाई होती है और आपके स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है, ये जो पद्धति है इनको किसान भाइयों को अपनाना चाहिए और सरकार इसमें सब्सिडी देती है। सरकार की बहुत सारी जो हमारी प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है उसके तहत किसानों को हर एक राज्य में अलग अलग तरह से इसकी सब्सिडी की मात्रा है, किसी में 50% है, किसी में 75% है, 90% तक इसमें सब्सिडी है किसान भाइयों को। तो ज्यादा से ज्यादा अपना जो क्षेत्र है जो माइक्रो इरिगेशन है, सूक्ष्म इरिगेशन है, इसकी तरफ किसान भाइयों को लाना चाहिए जिससे पानी का उपयोग समुचित हो और हमें ज्यादा एरिया हम सिंचाई के अंदर ला सकें।
1: डॉक्टर साहब समय की बाध्यता है, हम चाहेंगे कि लास्ट में आप क्या संदेश अपने किसान भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को आप देना चाहेंगे।
2: देखिए मैं किसान भाइयों से और सभी से, मैं किसान भाई नहीं, ये जल संरक्षण हम
1: बल्कि सब, हमारे सभी श्रोताओं
2: सभी
1: के लिए।
2: सभी नागरिक इसमें अपना योगदान दे सकते हैं क्योंकि ये केवल सरकारी की ही जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जो हमारे जल के जो स्रोत हैं, जल की जो मात्रा है उसका विवेकपूर्ण उपयोग करके जल संकट को हम जल सुरक्षा की ओर ले जा सकते हैं और हर पानी की बूंद को बूंद की कीमत समझें और उसको उपयोग करने से सोचें कि भाई ये खराब नहीं जाना चाहिए, वेस्ट नहीं जाना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है पानी, उसको हाँ, बचाने की जरूरत है।
2: बिल्कुल।
1: और डॉक्टर टीकम सिंह जी आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे सभी श्रोताओं को इतनी सरल भाषा में इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और कार्यक्रम के अंत में हम बस इतना ही कहेंगे कि आज की बचाई गई पानी की हर बूंद जो है वो कल की खुशहाली का बीज है, तो पानी को जरूर बचाएं, जैसे भी आप बचा सकते हैं वो जरूर बचाएं। सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि शहरों में रहने वाले सभी लोगों के लिए भी पानी जो है समान रूप से जरूरी है। तो इसी संदेश के साथ आज के इस कार्यक्रम किसान की बात से मुझे यानी कोमल
1: और निरंकार को दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।
3: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पासिंग आउट परेड की सलामी भी ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ओमान तट पर टैंकर एमटी सेट्टेबेलो पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के बाद यह बातचीत हुई। ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है। हालांकि ईरान ने कहा है कि वह तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमरीका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। केरला में स्थित प्रसिद्ध सबरीमला अयप्पा मंदिर कल से मलयालम माह मिथुनम की पूजा के लिए खुलेगा। तांत्री कंदारारू महेश मोहनारू की उपस्थिति में मेल संथी ईडी प्रसाद शाम 5 बजे गर्भगृह के द्वार खोलेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has left for France and Slovakia on a six-day visit. In his departure statement, Mr. Modi highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Prime Minister Modi will arrive at Nice in France at around 10:30 p.m. Indian time. Ahead of the Prime Minister's arrival, members of the Indian community, startup founders and business leaders in Nice have expressed

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़, और ये समय है मन भावन का, और हम आप तक पहुंचाएंगे वो फिल्मी नगमे, वो फिल्मी तराने जो आपकी पसंद है। जी हाँ, आपकी पसंद के तराने हम शामिल करने जा रहे हैं, और आप अपनी पसंद हमें भेज सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। यह हमारा ईमेल का पता है, दोबारा बोल देता हूँ, fmgoldairdelhi@gmail.com। सभी लेटर्स स्मॉल में है, और व्हाट्सएप का नंबर है 9868686753। जी हाँ, 9868686753। तो आप हमें संदेश भेज सकते हैं, हम आपकी फरमाइशों को शामिल करेंगे, जरूर करेंगे, और पूरी कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा आपकी संदेश शामिल करें। मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। आगाज इस नगमे से जो हमने लिया है फिल्म पुनर्मिलन से, और इस नगमे की जो फरमाइश हमारे पास आई है वो भी हम बताएंगे, मगर हम पहले बता दें कि इस नगमे में जो आवाज है वो है मोहम्मद रफी साहब की, और इसकी फरमाइश हमें भेजी है होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल। फिल्म है पुनर्मिलन। आप तक ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

जी हाँ, बहुत सारे पैगाम आप लोगों के हमारे पास लगातार आ रहे हैं, तो हम उनको शामिल करते हैं। हमारे पास व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से संदेश आया है भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिव्यन्दु भूषण, पौरुष, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और

हमारे पास ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महराज, जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से संदेश आया हुआ है और इन्होंने भी अपनी फरमाइश हमसे भेजी है। साथ ही मेरे पास जो संदेश आया है वो है कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह जहां बेगम, शाहजहां बेगम भी साथ में जुड़ी हुई हैं, और दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, इन्होंने भी हमसे एक फरमाइश भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की भी हमारे पास फरमाइश आई हुई है। और इंदिरानगर भवपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा जगदीश देवांगन की भी संदेश हमारे पास आए हुए हैं। साथ ही हमारे पास गंजर डुंडवाड़ा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान, तमाम लोगों का ये संदेश हमारे पास आया हुआ है। और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहतरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना भी हमसे जुड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गरिमा जुड़ी हुई हैं, उग्रसेन यादव हैं, शकुंतला यादव हैं और गरिमा है, ये तमाम लोग जुड़े हुए हैं, ये नई दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और चलिए तो हम एक नगमा आप तक पहुंचाते हैं जिसकी फरमाइश हमें भेजी है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाकर और निर्मला नावकर और विशाल नावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुरहेकर। तो चलिए नगमा किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में फिल्म एक बार मुस्कुरा दो आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
5: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
4: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
5: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
4: और विनर्स को क्या मिलेगा?
5: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
4: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
6: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आप सुन रहे हैं मनभावन, आपके साथ हूं मैं शिव प्रकाश, और आप तक पहुंचा रहे हैं वो नगमे जो आपकी फरमाइश के हैं, जो आप हम तक अपने संदेशों के जरिए पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, अगला नगमा हमने लिया है फिल्म गुमनाम से, जहां स्वर है मोहम्मद रफी और शारदा का, संगीत है शंकर जयकिशन का। तो लीजिए सुनिए बहुत ही प्यारा सा नगमा फिल्म गुमनाम से। जी हाँ, इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के तमाम सदस्य इस गीत के लिए फरमाइश भेज रहे हैं।

तो जी हाँ, कुछ पैगाम शामिल कर लेते हैं। अगला जो हम पैगाम लेने जा रहे हैं उसमें चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा विमला अनेजा जुड़े हुए हैं। इन्होंने फिल्म मेरा साया का गाना सुनना चाहा है, वो हमने ले लिया है और हम सुनवाएंगे, मगर साथ साथ हम कुछ संदेश आपके शामिल करते चले। हमारे पास विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा का पतेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पैगाम आया हुआ है। और साथ ही हमारे पास लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिलू परवेज बेगम

राना नाज, राधा नामदेव, इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है और ये कहते हैं कि सेव वाटर सेव लाइफ। बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने। पानी बचाना, पानी का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। पानी नहीं होगा तो जीवन की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। चलिए एक और सुनीत कुमार जुड़े हुए ख्याला दिल्ली से, अनुज कुमार, दिनेश कुमार, उमेश कुमार, ये सभी लोग एक साथ हैं। और राकेश कुमार, मुनीश कुमार भी जुड़े हुए हैं विष्णु गार्डन से। तमाम इन लोगों का हमने संदेश लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये इन्होंने हमें पैगाम भेजा है, गौरी शंकर जी हैं नांगलोई से, इन्होंने एक फरमाइश भी भेजी है, कोशिश करेंगे जरूर। और भी हमारे पास पैगाम आए हुए हैं। बासा रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नबीस, पलक लुबना और यश मंसूरी, इन्होंने कहा कि आपकी प्रस्तुति बेहद शानदार है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। गुरमीत सिंह नीता जी जुड़े हुए हैं अपने, अच्छा इन्होंने फरमाइश भेजी है और ये साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और शेरवानी स्कूल गंज डुंडवाड़ा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, अली अंसारी भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिल्म मेरा साया का ये नगमा आप तक पहुंचाते हैं आशा जी की आवाज में। और फरमाइश तो हमने आपको बताई दी थी, तो आप लोग बने रहें आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जी हाँ, हमारे पास और भी बहुत सारे पैगाम आपके लगातार आ रहे हैं, तो हम कुछ पैगाम शामिल कर लेते हैं। उनमें पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू मोहन, मधुनायक का पैगाम आया हुआ है। इन्होंने भी एक फरमाइश भेजी है। और हमारे पास सनावत से शेख मूसा मोहसिन का ये पैगाम आया हुआ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जॉन डी क्रेस्ट्रो का हमारे पास, रोजी डी कैस्ट्रो, पर्ल डी कैस्ट्रो, विलिस डी कैस्ट्रो का जनकपुरी सहारनपुर से पैगाम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिला खरगोन सनावत से हमारे पास मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खांडवा से, लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप का ये संदेश है। और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और गौरी सुरलकर का ये संदेश आया हुआ है। साथ ही हमारे पास वारली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, अजहर खान, अजीम खान का भी ये संदेश आया हुआ है। और सुरेश नारंग जी ने हमें ये भेजा हुआ है संदेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा नारंग सहारनपुर से ये पैगाम हमारे पास आया हुआ है। और राजकुमार डूडी जुड़े हुए हैं, पवन कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा जी कोई भी गीत सुनवा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे पास तो आप लोगों के बहुत सारे पैगाम हमारे सामने हैं। हमारे पास गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का ये संदेश आया हुआ है। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा नगमा हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। फिल्म है बालिका वधु और ये हमारा आज के इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा होगा। आप खुश रहें, खुश रखें अपने आसपास वालों को और खुशियां बांटते रहें तो आपको जाहिर तौर पर बहुत खुशी मिलेगी। आप बने रहें एफएम गोल्ड के साथ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार इस बहुत प्यारे से नगमे के साथ जो हमने लिया है फिल्म बालिका वधु से। और आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ।

0: समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट्स को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगुल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती हुई युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने बताया कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकी बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध व्यक्त किया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। ईरान ने कहा है कि वो अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश की वजह से टॉस अब तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना था। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन,
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय प्रशांत कुमार सिन्हा। Prime Minister Narendra Modi today embarked on a 6-day visit to France and Slovakia to further deepen bilateral ties with the 2 European countries. The visit will also reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. In the first leg of the visit, the Prime Minister will reach the French city of Nice tonight for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron tomorrow. The 2 leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which will bring together top innovation startups and venture capital funds from India, France and other countries. In his departure statement, Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
3: Nearly 10,000 Indian students are today studying in France, with both countries working towards 30,000 by 2030. In conversation with Akashvani, the Ambassador of India to France, Sri Sanjeev Sankla, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further deepen the people-to-people ties.
4: There is a core belief that key partnerships, for instance with France we have now a special global strategic partnership, they have to be driven by people-to-people relationships. There is only a certain point up to which the governments can push the relationship. So there

श्रोताओं, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। लीजिए सुनिए कुछ फिल्मी तराने। पहला तराना हमने लिया फिल्म आन मिलो सजना से, स्वर है किशोर कुमार का।

0: must reach IPC Ghaziabad within 45 days of publication of this advertisement. Detailed qualification and application forms are available on the IPC website. Do refer to www.ipc.gov.in. The Institute of Serology, Kolkata, under the Ministry of Health and Family Welfare, has invited applications for two laboratory technician positions on a purely contractual basis under the project Implementation of Water Waste Surveillance for Multi-Pathogens Across India at the National Polio Laboratory. The engagement is initially for 2 years with a consolidated remuneration of 18,000 rupees per month plus HRA. Candidates should possess 12th pass with MLT and DMLT qualifications from a recognized institute and 2 years of relevant experience. The upper age limit is 28 years. Applications must reach the institute within 10 days of publication of this notification. The positions are temporary and do not confer any claim for regular employment. For details, do refer to the website, that is at www.dghs.mohfw.gov.in. The Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, IHM Goa, an autonomous institution under the Ministry of Tourism, Government of India, has announced a vacancy for assistant lecturer cum assistant instructor, one unreserved post. IHM Goa has also invited applications for 5 teaching associate positions on a contractual basis, comprising 3 unreserved, 1 OBC and 1 SC vacancies. The institute is looking for hospitality professionals and educators capable of teaching hotel management and catering subjects. Interested candidates should carefully review the eligibility requirements, application procedure available on the institute's website. Detailed eligibility criteria, qualifications and selection procedures available on the institute's website, that is at www.ihmgoa.gov.in. Mera Yuva Bharat, MY Bharat, an autonomous body under the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, has invited online applications for the post of Assistant Director, District Youth Officer. The posts are placed in pay level 10 as per the 7 CPC. Recruitment is open to eligible candidates appearing in UPSC Civil Services Examination 2024. Disclosure list available through the Pratibha Setu portal. Selected officers will contribute to youth engagement, leadership development, community participation and implementation of youth-centric government programs across districts. Detailed eligibility conditions, application procedures and important dates are available on the ministry's website. Please do go on to the website, that is at www.yas.gov.in. I repeat, it is www.yas.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड दूर संचार संवर्ग में कनिष्ठ दूर संचार अधिकारी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पद हेतु प्रत्यक्ष भर्ती योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी और नवीनतम अपडेट के लिए बीएसएनएल की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका पता है www.bsnl.co.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधीक्षक, नर्सिंग सहायक, परीक्षा सहायक नियंत्रक, उप नर्सिंग अधीक्षक, सहायक नर्सिंग अधीक्षक, लेखाधिकारी, सहायक भंडार अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, चालक ग्रेड 2। इसके अतिरिक्त अनुबंध के आधार पर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, सीनियर प्रोग्रामर, जनसंपर्क अधिकारी, सहायक ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, विधि अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सहायक अभियंता, स्वच्छता अधिकारी, बायोमेडिकल इंजीनियर, लॉन्ड्री मैनेजर और परफ्यूजनिस्ट। इच्छुक उम्मीदवार एम्स देवघर की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.aimsdevghar.edu.in। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है पुस्तकालय अध्यक्ष, अधीक्षण अभियंता, उप पुस्तकालय अध्यक्ष, उप कुल सचिव, कार्यकारी अभियंता, सहायक कुल सचिव, सहायक कार्यकारी अभियंता, खेल अधिकारी और उप कुल सचिव। अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए देखिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता की वेबसाइट apply.iiserkol.ac.in। कर्मचारी राज्य बीमा निगम इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है जिनमें विशेषज्ञता के आधार पर निर्धारित विभाग हैं एनाटॉमी, एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साइकियाट्री, रेडियो डायग्नोसिस, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। वेतन संरचना, आयु, योग्यता शर्तें, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, शोध प्रकाशन और अन्य शर्तों के बारे में विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं आप कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर जिसका पता है www.esic.gov.in। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 27 जुलाई 2026। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं जया भारती और आपके साथ और हमारे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत कुमार सिन्हा। हेलो प्रशांत।
2: हेलो एंड गुड डे जया। लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम प्रशांत कुमार सिन्हा एंड विद मी टुडे इज माय को होस्ट जया भारती एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। सो ऑल ऑफ दीज कमिंग योर वे ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
1: बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी विल ऑल्सो अटेंड G7 समिट एट एवियन इन फ्रांस।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
2: इंडिया लॉजेस स्ट्रांग प्रोटेस्ट टू द US ओवर US नेवी स्ट्राइक्स ऑन ऑयल शिप इन द गल्फ, किलिंग 3 इंडियन सेलर्स।
1: वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त।
2: एंड इन मेंस क्रिकेट, टॉस फॉर द फर्स्ट ODI ऑफ 3 मैच सीरीज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान डिलेड ड्यू टू रेन इन धर्मशाला।

0: And listeners, now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today we will talk about Antyodaya in action. When we speak of development, what are we really talking about? Is it the infrastructure we build, the wealth we create, or the records we break?
1: बिल्कुल प्रशांत, और ये उपलब्धियां निश्चित रूप से मायने रखती हैं, लेकिन शायद किसी देश की तरक्की का असली पैमाना एक साधारण सवाल में छिपा है. जब मौका आता है तो क्या वे हर किसी तक पहुंचता है?
0: Absolutely. Does it reach the last household in the remotest village? Does it create opportunities for those who have long remained on the margins? Because development is meaningful only when no one is left behind.
1: और लंबे समय तक बहुत से लोग भारत की विकास गाथा के किनारे पर खड़े रहे. उन्होंने अपने आसपास बदलाव होते देखा, लेकिन अक्सर वे इसकी पहुंच से बाहर ही रहे.
0: एंड टुडे दैट स्टोरी इज चेंजिंग, एंड एट द हार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन लाइज अ पावरफुल आइडिया, अंत्योदया, द बिलीफ दैट डेवलपमेंट मस्ट बिगिन विद दोज हु नीड इट मोस्ट.
1: बिल्कुल, और अंत्योदय का मानना है कि जो व्यक्ति कतार में सबसे पीछे खड़ा है उसे अवसर मिलने में सबसे आगे रहने का हक है. और पिछले 12 वर्षों में यह विचार धीरे धीरे एक सोच से आगे बढ़कर असल काम में बदल गया है. भारत भर में, यानी कि पूरे देश भर के गांवों और समुदायों में कितने ही ऐसे बेहतरीन हुनर मौजूद हैं जिन्हें कभी पहचान नहीं मिल पाती.
0: Indeed, how much knowledge silently passes from one generation to another without ever becoming an opportunity. In tribal communities, traditional wisdom has existed for centuries. Knowledge of herbs, knowledge of medicinal plants, knowledge about nature's healing systems, isn't it?
1: और सालों तक कई आदिवासी परिवार जंगल से मिलने वाली उपज को उसी कीमत पर बेचते रहे जो व्यापारी उन्हें देते थे. हालांकि इसकी जानकारी तो उन्हीं के पास थी, लेकिन दुख इस बात का है कि इसका मुनाफा अक्सर उन्हें नहीं मिलता था.
0: Soon the story took a different direction. In a tribal community, women who had inherited generations of knowledge about medicinal herbs came together through a Vandhan Vikas Kendra.
1: और कच्चा माल बेचने के बजाय उन्होंने आयुर्वेद तेल, दवाइयां और हर्बल उत्पाद बनाना शुरू किया. उन्हें उद्यमिता की ट्रेनिंग, डिजिटल साक्षरता की ट्रेनिंग और मार्केटिंग में मदद मिली.
0: एंड टुडे दे रन अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज अंडर द ब्रांड छत्तीसगढ़ हर्बल्स. दिस इज सो फैसिनेटिंग, इज़न्ट इट? एन एज ओल्ड क्राफ्ट नर्चर्ड विद इन होम्स एंड कम्युनिटीज इज नाउ बिकमिंग अ सोर्स ऑफ इनकम एंड लोकल ग्रोथ.
1: और पूरे देश में ऐसे कितने ही छिपे हुए हुनर हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए बस सही सहारे की जरूरत है. पीएम जनमन जैसी पहले ठीक इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हैं.
0: There was a time when many particularly vulnerable tribal groups or PVTGs settlements lacked basic necessities. Well, when geography stands in the way of progress, the solution is simple: bringing opportunities closer to people rather than asking people to travel great distances in search of them.
1: पीएम जनमन योजना के पीछे ठीक यही सोच है. आदिवासी इलाकों में पीएम जनमन पहल बेहतर आवास, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और आजीविका में मदद जैसी सुविधाओं के जरिए बदलाव ला रही है.
0: The impact extends far beyond infrastructure, because a road is never only a road. Sometimes a road means a safer journey to the hospital for a pregnant woman. Sometimes it means a student no longer missing classes because the school is too far away.
1: और श्रोताओं, अब आइए आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बसे एक ऐसे ही छोटे गांव की ओर जहां सर्दियां बहुत कड़ाके की होती है. अक्सर सड़कें बर्फ के नीचे दब जाती हैं, बिजली की सप्लाई में भी कभी कभी अनिश्चितता आ जाती है. बहुत से बच्चे यह मानते हुए बड़े होते हैं कि मौके कहीं दूर दराज की जगहों पर ही मिलते हैं.
0: However, everything begins to shift when a good school is no longer a distant dream. Let's introduce our listeners to Jatin. Jatin enrolled in an Eklavya model residential school nearby. The school offered structured learning, dedicated teachers, laboratories, academic guidance, among others.
1: बिल्कुल, और पढ़ाई के दौरान पिता को खोने पर जिंदगी ने उनकी कड़ी परीक्षा ली. ऐसे हालात में कई छात्र शायद हार मान लेते, लेकिन जतिन के आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दी, प्रेरणा दी. उन्होंने जी जान से पढ़ाई की और आखिरकार जी एडवांस में ऑल इंडिया रैंक हासिल की.
0: एंड टुडे ही स्टडीज एट IIT जोधपुर. व्हाट डज जतिन्स जर्नी टेल अस? इट इज एक्चुअली अ मैसेज दैट टैलेंट कैन इमर्ज फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, no matter how remote across

0: across thousands of villages, countless young minds carry dreams of becoming scientists, doctors, engineers and innovators. The missing link was often not ability, but access. Today, that reality is beginning to change.
1: और ऐसे ही परिवर्तन और उम्मीद से भरी कहानियों को सुनते हुए प्रशांत, मुझे कवि दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
0: How beautiful. We too should remember that Walt Whitman once said, keep your face always towards the sunshine and the shadows will fall behind you.
1: और इमारतें कुछ ही महीनों में बनाई जा सकती है, सड़कें कुछ सालों में बन सकती है, लेकिन क्या खोई हुई भाषा को फिर से जीवित किया जा सकता है? क्या भूली बिसरी परंपराओं को आसानी से वापस लाया जा सकता है? विरासत को बचाना उतना ही जरूरी है जितना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि दोनों ही अलग अलग तरीकों से भविष्य को आकार देते हैं।
0: That is why tribal research institutes and tribal freedom fighter museums are playing an important role. They are preserving languages, traditions, indigenous knowledge, and the stories of heroes who fought for freedom long before many history books acknowledged them.
1: तो श्रोताओं, क्या आप हमारे आसपास नए दिन की शुरुआत के संकेतों के बारे में सोच सकते हैं? सड़कें साफ सुथरी हैं, कचरा उठा लिया गया है, अपने आकर्षक गाने के साथ कचरा उठाने वाली जानी पहचानी गाड़ी पहले ही गुजर चुकी है।
0: However, none of this happens on its own. It is the result of the dedication of thousands of sanitation workers who start their day while most of us are still asleep. Yet for years, many of them face unsafe and hazardous working conditions.
1: क्या शहरों को साफ सुथरा रखने वाले लोगों को अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए? इसका साफ जवाब है नहीं। इसलिए मशीनीकरण, सुरक्षा उपकरणों, ट्रेनिंग और आजीविका के वैकल्पिक मौकों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आखिरकार विकास का मतलब सम्मानजनक जीवन भी तो है।
0: Should a child's future depend on the district where he or she was born? Should a village remain disadvantaged because it is difficult to reach? The Aspirational Districts program was built around this very idea. Geography should not determine destiny. Across some of India's most underserved districts, local solutions have produced remarkable outcomes.
1: बिल्कुल, और अक्सर बाढ़ से प्रभावित रहने वाले एक जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट और नाव क्लिनिक के जरिए दूर दराज के गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गई। वहीं दूसरे जिले में डिजिटल मॉनिटरिंग के इस्तेमाल ने गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के तरीकों को बदला, जिससे स्वास्थ्य के नतीजों में जबरदस्त सुधार हुआ है।
0: Listeners, these are not one-size-fits-all solutions. These are examples of governance adapting to local realities, and perhaps that is where lasting transformation begins. Numbers tell one part of the story, while people's lives tell the rest. As we mentioned earlier as well, a well-built road is equal to opportunity in reach. A scholarship equals to a child not dropping out from school.
1: असल में स्किल प्रोग्राम का मतलब है परिवार की सम्मान के साथ कमाई। लड़की के लिए हॉस्टल का मतलब हो सकता है उसकी पढ़ाई का जारी रहना। असल में अंत्योदय का यही मतलब है। यह कोई एक स्कीम या प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक सामूहिक कोशिश है ताकि कोई भी समुदाय पीछे ना छूटे, कोई भी नागरिक खुद को भूला हुआ महसूस ना करे और देश के हर कोने तक विकास पहुंचे।
0: India's journey towards becoming a developed nation is not only about economic growth, it is also about inclusion, because the strongest nations are built when every citizen has the opportunity to contribute. And perhaps the most important change is that the communities once viewed as being on the margins are now increasingly becoming central to India's growth story.
1: बिल्कुल, और सफर जारी है, चुनौतियां अभी भी हैं, अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन दिशा साफ है। कोई देश तब सबसे मजबूती से आगे बढ़ता है जब वह एकजुट होकर आगे बढ़ता है, और यही अंत्योदय का मूल भाव है। एक ऐसी सोच जिसमें तरक्की को इस आधार पर नहीं मापा जाता कि सबसे तेज व्यक्ति कितनी दूर तक जा सकता है, बल्कि इस आधार पर मापा जाता है कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति कितनी तरक्की कर सकता है।
0: And as India moves towards Viksit Bharat 2047, that vision is helping shape a future where every citizen has a place, a voice and an opportunity to thrive, a future every Indian can take pride in.

0: and creating new economic opportunities for coastal communities in Andhra Pradesh. A key highlight is the center's decision to provide 72 crore rupees for the modernization of Kakinada port. The project is expected to strengthen export infrastructure, improve logistics, and support the growing seafood industry in the state. The state government has also agreed to allocate land for a regional office of the Union Fisheries Department, which is expected to improve coordination and speed up implementation of fisheries-related schemes. At the state level, Andhra Pradesh plans to develop an integrated aqua corridor connecting Amaravati, Bhimavaram, Kakinada, Vishakhapatnam, Krishnapatnam and Nellore. The proposed corridor will bring together research institutions, technology providers, startups and processing units to improve productivity in the aqua sector. The government has also announced the Andhra Shrimp India Seafood Branding Initiative to increase the global visibility of Indian seafood products. The center is also supporting efforts to expand seafood processing, improve market access and boost exports. With Andhra Pradesh already accounting for a major share of India's shrimp production and seafood exports, the growing center-state partnership is expected to drive investment, generate employment and strengthen the state's role in India's blue economy ambitions. Allu Murli for Parikrama, Akashvani News, Vishakhapatnam.
1: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जहां महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया।
2: एंड इन मेंस क्रिकेट द टॉस फॉर द फर्स्ट ओडीआई ऑफ द थ्री मैच सीरीज बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान हैज बीन डिलेड ड्यू टू रेन इन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। द मैच वॉज अर्लियर शेड्यूल्ड टू बिगिन एट 1:30 PM। स्टार इंडियन बैटर एंड फॉर्मर स्किपर रोहित शर्मा इज एक्सपेक्टेड टू बी इन एक्शन इन टूडेज match. The remaining two matches of the series will be played in Lucknow and Chennai.
1: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
3: आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी नरुथ नाथ का स्मरण कर रहे हैं, जो 13 जून 1930 को शहीद हुए थे। गुजरात के सूरत जिले के नरुतनाथ ने मई 1930 में धरसाणा नामक सत्याग्रह में भाग लिया था।
4: 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान जब गांधी जी ने धरसाणा सॉल्ट वर्क्स पर छापा मारने का निर्णय लिया, तो उन्हें वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा और उन्हें अपनी योजना की जानकारी दी। गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और पूना के निकट हिरासत में रखा गया। हालांकि गांधी जी की योजना के अनुसार धरसाणा सत्याग्रह आगे जारी रहा। 76 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश अब्बास तैयब जी ने कस्तूरबा गांधी के साथ मार्च का नेतृत्व किया।
3: तैयब जी और कस्तूरबा गांधी दोनों को धरसाणा पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया और 3 महीने जेल की सजा दी गई। उनकी गिरफ्तारी के बाद सत्याग्रहियों ने सरोजनी नायडू के नेतृत्व में मार्च जारी रखा।
4: सशस्त्र सैनिकों ने सत्याग्रहियों को स्टील की मूठ वाली लाठियों से पीटा। नरुथनाथ सहित बड़ी संख्या में सत्याग्रही बुरी तरह घायल हुए। चोट की वजह से 13 जून 1930 को नरुथनाथ की मृत्यु हो गई। स्वदेश की माटी के इस साहसी सपूत को हमारा नमन।
3: आज हम स्वतंत्रता सेनानी गणेशी सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। शुरुआत में गणेशी सिंह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान सेना की नौकरी छोड़ दी और विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमलों में शामिल हो गए। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को भी अंग्रेजों पर हमले के लिए प्रेरित किया और अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकने को ललकारा।
4: अंग्रेजों से मोर्चा लेते हुए वे पकड़ लिए गए और उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अप्रैल 1858 में बॉम्बे से अंडमान द्वीप भेज दिया गया। कारावास में ही 13 जून 1858 को उनका निधन हो गया। इस महान शहीद को हमारा शत शत नमन।
3: 13 जून 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से टोक्यो पहुंचे और उपमहाद्वीप से ब्रिटिश

0: ब्रिटिश शासन समाप्त करने के अपने लक्ष्य का उद्घोष किया। उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इसके लिए 2 जुलाई को सिंगापुर गए।
1: अक्टूबर 1943 में सिंगापुर के प्रसिद्ध कैथे सिनेमा हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन की औपचारिक घोषणा कर दी। नेताजी ने उद्घोष किया, संघर्ष की शुरुआत और संचालन अस्थायी सरकार का दायित्व होगा, जिससे भारत की धरती से ब्रिटिश और उनके सहयोगियों का निष्कासन सुनिश्चित होगा। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति का आह्वान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी के योद्धाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी।
2: आज का दिन भारतीय सैन्य इतिहास में शौर्य की उस कहानी का गवाह है जिसने 1999 के करगिल युद्ध का पूरा रुख पलट दिया था। आज तोलोलिंग फतह का दिन है, लेकिन इस फतह की कीमत देश ने अपने 2 जांबाज बेटों को खोकर चुकाई थी। आज देश मेजर मनोज तलवार और महावीर चक्र विजेता मेजर विवेक गुप्ता के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है।
3: Today is the death anniversary of freedom fighter Nanak Bhil. Hailing from the Bundi district in Rajasthan, he played a pivotal role in Indian independence movement in Bundi during British colonial rule in India.
2: जब भी देशप्रेम की बात होती है तो हमारे जहन में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का चेहरा उभर आता है, या फिर इन सभी शहीदों की बात करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में इन शहीदों के जज्बे को अपनी कलम से अमर कर देने वाला जादूगर कौन था? वो महान शख्सियत थे प्रेम धवन। आज उनकी जयंती है। प्रेम धवन सिर्फ एक गीतकार नहीं बल्कि आजादी के लड़ाई में शामिल एक सच्चे देशभक्त भी थे। उनकी आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली है।

प्रेम धवन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे जितने कमाल के गीतकार थे उतने ही बेहतरीन संगीतकार और कोरियोग्राफर भी थे। और दिलचस्प बात यह है कि प्रेम धवन ने जहां एक तरफ जोशीले देशभक्ति गीत लिखे, वहीं दूसरी तरफ चंदा मामा दूर के जैसी कोमल और प्यारी लोरी भी रची, जो उनकी लेखनी की विविधता को दर्शाती है। यह गीत दशकों से भारत में हर घर का हिस्सा रहा है और आज भी बच्चों को सुलाने के लिए सबसे प्रसिद्ध लोरी मानी जाती है। इसके अलावा फिल्म उपकार का वो सदाबहार गाना कस्मे वादे प्यार वफा सब भला कौन भूल सकता है।

0: Listeners, he was the winner of the National Film Award for Best Lyrics in 1971 and was honored by the Government of India in 1970 with the Padma Shri.
1: So, इन्हें हम याद कर रहे हैं उनकी जयंती पे, तो इसी में 1960 की फिल्म हम हिंदुस्तानी का बेहद लोकप्रिय गीत सुनते हैं, जिसके बोल आशा और पुरानी बातों को भूलकर भविष्य की ओर बढ़ने के संकल्प को दर्शाते हैं। सुनते हैं छोड़ो कल की बातें।

0: Listeners, today is the birthday of Arjuna Awardee Archer Deepika Kumari. Born in 1994 on today's date, she is a four-time Olympian and two-time World Championships silver medalist. She is one of the most decorated Indian archers and the first Indian archer to rise to the top of the world rankings, reaching the world number one ranking in 2012. She has been honored with the Arjuna Award in 2012 and the Padma Shri in 2016 for her contribution to Indian sports. So happy birthday once again.
1: आज ही हिंदी के विख्यात उपन्यासकार, नाटककार, समीक्षक और पत्रकार मुद्रा राक्षस साहब की भी पुण्यतिथि है। 21 जून 1933 को लखनऊ के पास जन्मे मुद्रा राक्षस जी का असल नाम सुभाष चंद्र गुप्ता था, लेकिन साहित्य की दुनिया उन्हें उनके उपनाम मुद्रा राक्षस से ही जानती है। वे सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि शोषितों और वंचितों की बुलंद आवाज थे। उनकी लेखनी में एक अद्भुत धार थी। वे मानते थे कि साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज को जगाना और उसे आईना दिखाना भी है। उनके इसी अनूठे योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया।
0: लिसनर्स, टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विलियम बटलर यीट्स, अ रेनाउंड आयरिश पोएट, राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक हु वाज वन ऑफ द फॉरमोस्ट फिगर्स ऑफ 20th सेंचुरी लिटरेचर। वाइडली नोन फॉर मेनी ऑफ हिज वर्क्स, इंक्लूडिंग द मोस्ट रिलेटेबल पोएम एन आयरिश एयरमैन फोरसीज हिज डेथ, ही वाज अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1923।
1: अब हम बात करते हैं कला की। कला वो नहीं सिर्फ जो दीवारों पर टंगी रहे, कला वो है जो बेजान पत्थरों और धातुओं में भी जीवन का एहसास करा दे। ऐसे ही थे पद्मश्री से सम्मानित महान मूर्तिकार विनायक पांडुरंग करमकर। उनकी कला की सबसे बड़ी खासियत थी सजीवता। जब आप उनकी बनाई मूर्तियां देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो वो अब भी बोल पड़ेंगी। आज ही के दिन साल 1967 में देश ने अपने इस जादुई कलाकार को खोया था, जिन्होंने अपनी मूर्तिकला से देश का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा किया था। आज ही हिंदी साहित्य की एक महान लेखिका कवयित्री कीर्ति चौधरी की भी पुण्यतिथि है। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि उन्होंने महादेवी वर्मा के बाद हिंदी कविता में आए खालीपन को अपनी मौलिकता से भरा। उनकी कविताओं में गांव की सौंधी खुशबू भी थी और शहर की आपाधापी का यथार्थ भी था। उनकी एक बेहद खूबसूरत कविता की कुछ पंक्तियां हैं। बरसते हैं मेघ झरझर, भीगती है धरा उड़ती गंध, चाहता मन छोड़ दो निर्बंध तन को, यही भींगे भीग जाए देह का हर रंध्र। और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के इस अंक को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए जया भारती और प्रशांत कुमार सिन्हा को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। अगर आप हमारा कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं newsonair.gov.in पर। इसके साथ ही अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। कुल 515 जेंटलमैन

0: और महिला कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। वायुसेना ने असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्नि वीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्नि वीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। दुर्घटनाग्रस्त विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और विस्फोट के बाद उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी 5 जवानों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। मौजूदा सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 162 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक आयरलैंड ने छठे ओवर में एक विकेट पर 28 रन बना लिए हैं। वहीं आज शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। उधर भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी तक नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi embarked on a 6-day visit today to France and Slovakia to further deepen bilateral ties with the two European countries. The visit will also reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. On the first leg of the visit, the Prime Minister will reach the French city of Nice tonight for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron tomorrow. The two leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which will bring together top innovation startups and venture capital funds from India, France and other countries. In his departure statement, Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of 5 air warriors. Indian Air Force IAF said a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. The IAF has expressed grief at the loss of lives. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief over the loss of 5 air warriors. In a social media post, Mr. Singh said their courage and service to the nation will always be remembered with pride and gratitude. Principal Secretary to the Prime Minister P.K. Mishra today said that India's cities must be economically productive, environmentally sustainable, socially inclusive, technologically advanced and institutionally resilient. Mr. Mishra said this while addressing the Golden Jubilee celebrations of the National Institute of Urban Affairs, NIUA, in New Delhi. The principal secretary said the NIUA has contributed significantly to shaping India's urban discourse, strengthening institutional

जी हाँ, गाते गुनगुनाते के सफर पे आपसे एक बार फिर से मुखातिब हूँ मैं शिव प्रकाश, लेकर बहुत सारे प्यारे प्यारे नगमे तराने आपको बेहद पसंद आएंगे, मुझे पक्का यकीन है, भरोसा है। मैं हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं हूँ आपके साथ शिव प्रकाश। तो आप सभी स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार और बने रहें AIRFM गोल्ड के साथ, जो आप सुन रहे हैं 101.1 मेगाहर्ट्ज पर। पहला नगमा हमने लिया है फिल्म मोहरा से। ये फिल्म आई थी 1 जुलाई 1994 को और फिल्म में जो मुख्य किरदार था वो था अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, रवीना टंडन का, और साथ ही थे नशीरुद्दीन शाह, पूनम झावर, रजा मुराद, परेश रावल, गुलशन ग्रोवर, सदाशिव अमरापुरकर। एक अच्छी इंटरटेनिंग फिल्म थी। फिल्म के निर्देशक थे राजीव राय और एक अच्छी फिल्म थी। गुलशन राय इस फिल्म के निर्माता थे। कहा जाए कि एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छी फिल्म थी, लोगों ने पसंद किया। फिल्म का संगीत भी काफी प्यारा था। फिल्म का संगीत तैयार किया था विजू शाह ने। चलिए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज में आप सबके लिए।

जी हाँ, तो बहुत ही प्यारा नगमा भी आपने सुना फिल्म मोहरा से, और अगला नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं 1942 लव स्टोरी से। बहुत ही प्यारी फिल्म थी ये, विधु विनोद चोपड़ा साहब ने बनाई थी। जैसा कि इसके नाम से पता लगता है कि ये ब्रिटिश राज की एक कहानी, देखा जाए तो एक कोई ऐतिहासिक कहानी नहीं है, लेकिन उसको जोड़कर, उस समय से जोड़ करके एक प्रेम कहानी ये है, और एक अच्छी सुपरहिट फिल्म थी ये। फिल्म में जो मुख्य किरदार निभाए थे वो अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ, डैनी, अनुपम खेर, चांदनी प्राण। फिल्म का जो संगीत था वो राहुल देव बर्मन का था, और ये जब फिल्म प्रदर्शित की गई 15 जुलाई 1994 को, तो राहुल देव बर्मन इस दुनिया में नहीं थे, तब तक वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। लेकिन ये फिल्म जब प्रदर्शित हुई तो उनके संगीत को बहुत पसंद किया गया, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया, और इस फिल्म के मैं कहूँ कि सारे के सारे गाने सुपर हिट हैं, तो कोई अजूबा या अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत ही प्यारा सा नगमा हम आप तक पहुँचा रहे हैं कुमार सानू की आवाज में। संगीत एक बार फिर से बता देते हैं, राहुल देव बर्मन साहब का है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर आप सबके लिए प्यारा सा ये नगमा।

जी हाँ, बारी आ गई है अगले ट्रैक की, और अगला ट्रैक हमने लिया है फिल्म दयावान से। और ये जो फिल्म थी बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी, 1988 में ये रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक थे फिरोज खान, और फिल्म के जो मुख्य कलाकार थे उनमें भी फिरोज खान शामिल थे। विनोद खन्ना लीड रोल में थे, माधुरी दीक्षित नायिका के रूप में थी, आदित्य पंचोली थे। और फिल्म का जो संगीत

तैयार किया था, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया था। बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया था इस फिल्म ने। और ये जो फिल्म थी, ये एक एक्शन क्राइम फिल्म कहा जा सकता है इस फिल्म को। और ये फिल्म पहले तमिल में बनी थी, फिल्म का नाम था नायकन। और इस फिल्म को भी हिंदी में डब किया गया था, लेकिन इस फिल्म को फिर से हिंदी में बनाया गया, फिरोज खान ने बनाया इस फिल्म को। और एक अच्छी फिल्म, फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म की थोड़ी बहुत फिल्म के साथ कुछ कहानियां भी जुड़ी रहीं। लेकिन कुल मिलाकर के दर्शकों का बहुत ही मनोरंजन इस फिल्म ने किया और फिल्म का संगीत भी बहुत प्यारा था। पंकज उधास और अनुराधा पौंडवाल की आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर फिल्म दयावान से नगमा।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
2: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

तो श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। अगला नगमा हम आपके लिए लेकर आए फिल्म बरसात से। इस फिल्म को बनाया था धर्मेंद्र ने बनाया और उन्होंने बॉबी देओल को लॉन्च किया। बॉबी देओल उनके पुत्र हैं और साथ ही राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना भी इस फिल्म से लॉन्च हुई। दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी और एज अ डेब्यू आर्टिस्ट इनको फिल्म फेयर ने बेस्ट डेब्यूटेंट के तौर पे सम्मानित भी किया और फिल्म काफी सुपरहिट रही। फिल्म का जो संगीत था वो नदीम श्रवण का था, वो काफी पसंद किया गया। फिल्म के निर्देशक थे राजकुमार संतोषी और इसी फिल्म का हम एक बहुत ही प्यारा सा नगमा कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म बरसात से।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

जी हाँ, आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आप सुन रहे हैं गाते गुनगुनाते, मैं हूं आपके साथ शिव प्रकाश। अगला जो हमने तराना लिया है आपके लिए, फिल्म बरसात से लिया है। और जी, बरसात का नगमा तो हमने आप तक पहुंचा ही दिया था, मगर अगला जो नगमा हमने लिया है फिल्म बॉम्बे से लिया है। और इस फिल्म के बारे में हम कुछ बातें तो करेंगे ही। ये फिल्म 1995 में आई थी और जो नगमा हम अब तक पहुंचाने जा रहे हैं उसमें हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजें हैं। और भी कुछ बातें हम इस नगमे को पहले आप सुनिए, उसके बाद आप तक हम कुछ बातें जरूर पहुंचाएंगे।

तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉम्बे का यह नगमा। अब हम आपको बता दें कि ये जो फिल्म आई थी 10 मार्च 1995 को, और मणिरत्नम साहब ने इसको निर्देशित किया था। अरविंद स्वामी और मनीषा कोइराला लीड रोल में थे, संगीत था एआर रहमान का, और बहुत ही अच्छी ये फिल्म थी। फिल्म के निर्माता झामू सुगंध, मणिरत्नम और एस श्रीराम थे। एक अच्छी फिल्म थी, लोगों ने खूब पसंद किया। फिल्म का संगीत तो लाजवाब था ही, एआर रहमान ने।

इस संगीत को तैयार किया था। अगला जो नगमा हम लेकर आए हैं वो एक बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म थी बॉलीवुड की, वो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख खान और काजोल की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नए नए कीर्तिमान रचे। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा लता जी और उदित नारायण की आवाज में आप सबके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

जी हाँ श्रोताओं, हमारे चलने का वक्त हो गया है और चलते चलते एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक हम लेके आए हैं आपके लिए करण अर्जुन से, और इस फिल्म का जो नगमा हम आप तक पहुंचा रहे हैं उसमें लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजें हैं। ये जो फिल्म थी ये बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी बॉक्स ऑफिस की अगर बात की जाए तो, और इसमें जो मुख्य भूमिकाओं में थे वो शाहरुख खान, सलमान खान और राखी, ममता कुलकर्णी, काजोल, अमरीश पुरी तमाम लोग थे। फिल्म के निर्देशक थे राकेश रोशन, फिल्म का संगीत तैयार किया था राजेश रोशन ने, और फिल्म के निर्माता भी राकेश रोशन ही थे। फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जो कि हमने आपको बताया, और फिल्म को दो फिल्म फेयर अवार्ड

अवार्ड्स भी मिले और 10 श्रेणियों में से नॉमिनेशन मिला। तो एक अच्छी फिल्म थी, एक इंटरटेनिंग फिल्म थी, एक फैंटसी एक्शन ड्रामा फिल्म थी। फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था। तो इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सबके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में आप सबके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां

0: की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1,600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi embarked on a 6-day visit to France and Slovakia today to further deepen bilateral ties with the two European countries. On the first leg of the visit, the Prime Minister will reach the French city of Nice tonight. Mr. Modi will hold bilateral talks with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will jointly inaugurate the Bharat Innovates event. In his departure statement, Mr. Modi said the focus of the visit to France will be on boosting economic as well as cultural linkages between the two countries. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
3: Nearly 10,000 Indian students are today studying in France, with both countries working towards 30,000 by 2030. In conversation with Akashvani, the Ambassador of India to France, Sri Sanjeev Sankla, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further deepen the people-to-people ties.
4: There is a core belief that key partnerships, for instance, with France, we have now a special global strategic partnership. They have to be driven by people-to-people relationship. There is only a certain point up to which the governments can push the relationship. So the relationship has to become much more organic. And that's why increasingly there's a focus on deepening these ties. They span a number of areas.
3: It is precisely the spirit of research, innovation, and people-to-people connect that Bharat Innovates brings to Nice Tomorrow, and with it, the promise of a partnership that only grows stronger. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of five air warriors. Indian Air Force IAF said a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has expressed grief over the loss of five air warriors in a social media post. Mr. Singh said their courage and service to the nation will always be remembered with pride and gratitude. The government has appointed Lieutenant General Dheeraj Seth as the next Chief of the Army Staff with effect from the 30th of this month. He is presently serving as the Vice Chief of the Army Staff. The present Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, is retiring from service the same day. Union Home Minister Amit Shah today said that Prime Minister Narendra Modi has nurtured a new culture of education.

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0464 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन। श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और आपके फोन कॉल्स पर पूछे गए सवालों को सीधा कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर अगर आप हमसे सवाल पूछना चाहें तो बेहिचक पूछें। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0464 और 2371-7106। दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जो जुड़ी जानकारियां हैं वो हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे। श्रोताओं, इस बात का ख्याल रखें। आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
2: जी नमस्कार,
0: वार्म वेलकम शिशिर।
2: थैंक यू।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लीव्स ऑन अ 6-डे विजिट टू फ्रांस एंड स्लोवाकिया। Domestic indices end the week with gains and US markets rise amid hopes of peace deal.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 दिन के दौरे पर रवाना हुए। घरेलू शेयर बाजार इस सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुए और पश्चिम एशिया में शांति समझौते की उम्मीदों के बीच अमरीकी शेयर बाजार में तेजी आई।

0: due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. We move on to the first headline story now. Prime Minister Narendra Modi has left for France and Slovakia on a six-day visit. In his departure statement, Mr. Modi highlighted that France has a special place in India's strategic vision. Mr. Modi said the focus of the visit will be on boosting economic as well as cultural linkages between India and France. He added that the visit will energize India's strategic partnership with the European Union, where Slovakia is an important and valued member. Shishi, what could be on the anvil when it is said that there are going to be boosting of economic as well as cultural linkages between India and France?
1: So there are three parts of this visit. First is, of course, the G7 meeting, which has a lot of strategical significance as well as the economic significance. Mm-hmm. The second part is the new, a conference being organized at Nice, that is the India Innovate. And the third one is, of course, the bilateral agreement or bilateral talks between India and France. So I think the first one, when we talk about the G7, going by the current global situation, this meeting has a lot of significance. And since G7 comprise of all the major economy of the world, whether we talk about US, whether we talk about UK, whether we talk about Japan, so all the major economies are part of the G7. And when the global economy is in a very kind of uncertain situation, this kind of meeting is very, very critical, and India is going to be and going to play an important role in this entire discussion.
0: Shishu, there's also the Bharat Innovates 2026, where India is showcasing its startup story to the world. What is the single most important narrative that Indian founders will be communicating to the rest of the world on this global stage?
1: I believe that 120 startups have been selected for this particular conference. And the basic intention is to show the world that what kind of capability we have in the startup ecosystem. We all know that our startups have done really well. Many of the startups have turned into unicorn. They are showing the world how can business be done. So this is another platform. And most important thing is this is being organized in France, where we will see more and more participation from the various international investors also. So on the one hand, we are going to show our potential. We are going to show what we can do, and at the same time the startups will be in a position to attract more and more capital. So that's the importance of this event. And the most important part is that this event is organized by the government of India. So another kind of assurance and the guarantee to the global investors that how Indian government is facilitating startup, new technology, innovation in the country.
0: And a big boost to the Indian startup also, who are going to be represented.
1: Certainly.
0: There.
1: I mean, if you take the number of 120, you may say out of, say, 2 lakh or 2.5 lakh.
0: They're the chosen one.
1: Mm-hmm. But these are the ones who can be called as the brand ambassador of the Indian startup ecosystem. And they will show that what kind of ecosystem we have, what kind of potentials we have, how the technology is doing. And please do not forget that the kind of success we have achieved in fintech, that is going to be a big part of this entire discussion.
2: Rajesh, समय आ गया है अपने पहले कॉलर को जोड़ने का. ये दिल्ली से हैं. इनका नाम है वीआर नाथ. कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. महोदय, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: Thank you everybody. खासतौर पे आपने एक्सपर्ट सर 26 AIS and AIS are still not updated. We are being done. Last payment to pensioners and salary persons, government plus others, is in 28 February. There is no payment in March. Why they take more than 90 days? Secondly, after this, why don't they update the things? This is the dates were there where before computer came. After computer came, things are smooth. Why are the people are especially income tax department? And as a patrakar, you should raise the voice of the person, common person.
1: Okay. Mr. Nath, I believe that you are talking about the updation of Form 26 AIS or AIS. I believe that the due date for filing return is July 31st. And today we are in the middle of the June. So we have some time, and I believe that by 30th of June, all the 26 AS will be updated, and you will be in a position to file your return very conveniently. And please also remember that at this moment, we have the utilities available from form ITR 1, ITR 2, and ITR 4. So there are four other forms where the utilities are to be available. So in next 10 or 15 days, you will find a lot of development on that issue, and your complaint about all those things will be resolved.
2: दिल्ली से ही हमारे साथ प्रकाश जुड़ रहे हैं. प्रकाश जी, अपना सवाल पूछिए.
4: हेलो
2: जी, अपना सवाल पूछिए.
4: मार्केट मंत्रा किम पर नमस्कार.
2: नमस्कार
4: सर, मेरा प्रश्न है, कल जो मार्केट में शेयर मार्केट में रैली हुई है, तो मुझे लग गया अब मार्केट में अनिश्चितता का दौर खत्म हो गया है. जो अगर वेस्ट एशिया का क्राइसिस अगर ठीक हो गया है, तो आगे मुझे लगता है कि ठीक रहेगा मार्केट. अब आपका क्या विचार?
1: प्रकाश जी, आपने कल की बात कही और अब हमें इंतजार कल का है, यानी कि आपने बीते हुए कल की बात की और अब हमें इंतजार आने वाले कल का है, क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि कल अमेरिका और ईरान के बीच में एक शांति समझौता हो सकता है. और उसी की सुगबुगाहट के चलते आपने देखा कि शुक्रवार को शेयर बाजार में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स और निफ्टी काफी चढ़े, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगर रविवार को जिनेवा में, जैसे कि उम्मीद है कि दोनों पक्षों के बीच हस्ताक्षर होंगे शांति समझौते पे, और उसके बाद परिस्थितियां सामान्य होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत हो जाएगी. और जो एक अनिश्चितता बहुत ही लंबे समय से, लगभग 100 दिन पूरे हो चुके हैं, वो उसके ऊपर जो है वो विराम लग सकेगा.
2: आइए श्रोताओं, हम सेंसेक्स और निफ्टी में विस्तार से बात करेंगे इसके ऊपर, मगर उससे पहले रुक करते हैं खबर की तरफ. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. घटते भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में कमी, वैश्विक निवेशकों का ठहराव और घरेलू संस्थागत निवेशकों की लगातार लिवाली के कारण बाजार में वृद्धि देखी गई. इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1285 अंक यानी लगभग 1.7% बढ़कर 75,528 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 256 अंक यानी 1% से अधिक बढ़कर 23,623 पर बंद हुआ. विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 इंडेक्स बिना किसी बदलाव के बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.5% की बढ़त देखी गई. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में इस सप्ताह भारतीय रुपया 17 पैसे कमजोर होकर एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.11 रूपये पर बंद हुआ. शिशिर, हमने जब इस सप्ताह की शुरुआत देखी तो लगभग मंडे को, सोमवार को मार्केट 1% नीचे कारोबार करके बंद हुआ, और जब हमने देखा फ्राइडे को, तो अभी आपने बताया कि उछाल आया, लगभग 2.5% का उछाल आया. तो एक साप्ताहिक अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखें, ग्राफ देखें मार्केट का, तो आप इसे कैसे देखते हैं?
1: देखिए, इस पूरे सप्ताह में कहते हैं ना कि अचानक खबर आती है कि चीजें सब बेहतर हो जाएंगी, तो बाजार में तेजी आती है. फिर खबर आती है कि नहीं जी, हमला हो गया है. और यह भी हमें ध्यान में रखना है कि सप्ताह तीन जो जहाज थे जिसमें भारतीय नाविक बड़ी संख्या में थे, उन पर हमला हुआ, तो उसको लेकर के भी थोड़ी सी एक संशय की स्थिति बनी कि कितने गंभीर हैं इस तरह के शांति प्रयासों को लेकर के. लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं और पिछले 48 घंटे से जो खबरें आई हैं कि रविवार को शायद जो है वो समझौते पर हस्ताक्षर हो जाए, तो पूरे सप्ताह के दौरान हर रोज के जो कहते हैं ना कि हर रोज की गतिविधि से शेयर बाजार प्रभावित हुआ. अब ये माफ कीजिएगा, यदि रविवार को अगर समझौता हो जाता है तो एक अनिश्चितता काफी हद तक खत्म होगी और उसका असर लंबे समय तक हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी के समय में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो हॉर्मुज का जो जल डमरू मध्य है उसका न खुलना केवल ईंधन के आपूर्ति को प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि सामान की आवाजाही को प्रभावित कर रहा है, कई देशों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर रहा है. तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी है, वो चुनौती रविवार को उम्मीद करें कि खत्म होगी और फिर शेयर बाजार उसके बाद आप देखेंगे कि बेहतर स्थिति में. इस बीच में ये भी देखिए कि कच्चे तेल के भाव में गिरावट आई है, नरमी आई है, और हमने देखा है कि कच्चे तेल के भाव जब गिरते हैं तो बाजार जो है वो ऊपर चढ़ता है. हालांकि बीच में परिस्थितियां ये भी देखने को मिला कि दोनों एक साथ ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन अभी के समय में चूंकि ओपेक प्लस ने उत्पादन बढ़ाने का भी फैसला किया है, तो इन सब का असर ये होगा कि बाजार में हम थोड़ी बेहतरी देख सकते हैं.
0: सो शिशिर, यस्टरडे वाज गुड, टुडे वी आर होपफुल, And tomorrow, hopefully, we'll be very, very happy with the partial or complete easing of the geopolitical tensions. So hopefully we'll have...
1: Please do not use the word complete, because there are other issues
0: you
1: also.
0: You missed partial, I said.
1: Partial or complete. But because there is another one.

0: which is going on.
1: Okay. So hopefully we'll have a softer crude oil prices. We'll have a moderate FII selling and also continued support from domestic institutional buying going forward. What is your take post tomorrow? Of course, the week that we will have from Monday onwards, is it going to be all hunky-dory? It's going to be very, very positive and good for the Indian markets as well.
0: So we will see a lot of positives, and also we should also keep an eye on what is the resolution of G7, because US president will be there, and the others, president, France president will be there. So apart from what is happening, what is going to happen on Sunday, the Monday will also be critical, that what kind of resolution coming from the G7
1: nation. We have to start worrying about the tax.
0: Tax, I mean, see, worry is always there, because there are some situations which we do not know that how this is going to pan out. But at least there are two positive developments which we are expecting in next 2 to 3 days. And those developments are going to have some good news for
1: hopefully
0: the market.
1: Hopefully we'll also have the trade deal done.
0: There are a lot of hopes.
1: Yeah, in the meantime, we are joined in by Shankar from Bhopal. A warm welcome, Shankar.
2: Hello, Market Master team.
0: Hi. Namaskar.
1: Welcome. Please ask your question.
2: Sir, SpaceX ki valuation so high hai because of Starlink or commercial launch services and AI. Kya ye sustainable hai longer term mein? Is tarah ki valuation?
0: Ye dobara jo sawal puchi, aapki awaaz kat rahi thi.
2: SpaceX ki valuation trillions of dollars mein aayi hai because of Starlink, commercial launch services and AI. क्या ये सस्टेनेबल है? बिकॉज इन तीन चीजों से तो सारी दुनिया नहीं बनती. इसी में सारा पैसा गया इंडिया का, इस वजह से हमारा थोड़ा सा मार्केट सफर हुआ. क्या ये वैल्यूएशन सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म में?
0: देखिए शंकर जी, हम कंपनी विशेष पर तो चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि पूरे आईटी स्पेस में एक बड़ी चिंता आज से महीने भर पहले ये थी कि एआई की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान कन्वेंशनल जो आईटी सेक्टर, ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर जो उनको होगा. लेकिन उसी बीच में एनविद्या के जो फाउंडर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि हमें एआई को चलाने के लिए एचआई की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत होगी. तो उसके बाद से आईटी कंपनियों के शेयरों में जो है हमने देखा कि तेजी आई, और न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी आई. हाँ, इस बीच में ये जरूर हुआ कि दो देश ऐसे भी थे, चाहे ताइवान की हम बात करें या दक्षिण कोरिया की बात करें, जहां पर वैल्यूएशन काफी बेहतर नजर आए और एआई को लेकर के एक अलग तरीके की चर्चा शुरू हो गई. लेकिन अभी के समय में मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर्स में आप थोड़ी बेहतरी देखेंगे, क्योंकि तमाम लोग अब इस बात पे सहमत होते हुए दिख रहे हैं कि उस मशीन को चलाने के लिए, उस इंटेलिजेंस को चलाने के लिए आईटी सेक्टर में आपके पास फ्रेश एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होगी. हाँ, ये बात जरूर है कि कई एजेंट्स ऐसे हैं जो अभी ह्यूमन थे, वो एआई एजेंट हो जाएंगे, लेकिन कोडिंग नए सिरे से शुरू होगी और वो एक आईटी सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर है. हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं कि अप स्किलिंग है, री स्किलिंग है, तो आईटी सेक्टर में भी अप स्किलिंग और रीस्किलिंग हमें देखने को मिलेगा, जिसका फायदा जो है आप आईटी सेक्टर के शेयरों में देख सकते हैं.
3: शशिर, क्या आपने जो अभी बात कही, क्या ये इंगित करता है कि ये समय सही है आईटी क्षेत्र में निवेश करने के लिए?
0: देखिए, जब कभी भी बाजार गिरे तो ऐसी जो प्रमुख आईटी कंपनियां हैं जिनके शेयरों के भाव नीचे आते हैं, अपने मान लीजिए कि 52 सप्ताह के ऊंचले स्तर से 10-15% नीचे आते हैं, वो आपके लिए एक मौका देता है. दूसरा, हम लोग कहते हैं कि पी रेशियो के ऊपर आप जरूर नजर रखिए, अगर आप बाजार में आना चाहते हैं, कि वो 20 के करीब में है, सॉरी 15 से 20 के बीच में है या कुछ इस तरीके का है, तो वो आपके लिए एक बेहतर संकेत देता है. तो इस तरह की कुछ चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर्स के कंपनियों में पैसा लगाने का समय है. बस एक ही बात मैं कहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, रोज रोज शेयर बाजार पर नजर मत रखिएगा. अगर ऐसा अगर आप करेंगे, घबराहट होगी और फिर आप कहेंगे कि हमारा पैसा डूब गया.
1: शशिर, इन द ब्रॉडर मार्केट ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, द मिड कैप 100 index ended on a flat note, while the small cap gained 0.5%. Should retail investors who are heavily invested in mid caps through SIPs be concerned about the divergence in volatility between large caps and broader market?
0: I think equity SIP has seen some kind of negative in the month of May also. apart from the April, because there was

0: ज्यादा इनकरेज कर रहे हैं फिर से वापस आने के लिए, और जबकि अपने जो यहाँ के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो उनका क्या हाल है, वो मतलब क्या आर दे रियली गेनिंग एनीथिंग कि वो सिर्फ अपने राष्ट्रीयता के हिसाब से बने हुए हैं और बाद में पता चला कि हाथ जला लिया अपना।
1: रवि जी, अगर मैं समझ पा रहा हूं तो आपके सवाल में दो तीन मुद्दे हैं। देखिए, अभी जो कुछ भी विदेशी निवेशकों के लिए किया गया है वो बॉन्ड मार्केट के लिए किया गया है, और ये बॉन्ड मार्केट में उनको प्रोत्साहित करने के पीछे एक बड़ी सोच ये है कि हमें एक स्थिर मुद्रा की जरूरत है, ठंडे मुद्रा की जरूरत है। देखिए, अर्थशास्त्र में तकनीकी भाषा है, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा अगर बोल दूं, कि हॉट मनी और कोल्ड मनी की हम लोग बात करते हैं, तो हमें कोल्ड मनी लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, इसलिए वो केवल उनके लिए दिया गया है। अब रहा सवाल कि डीएफआईज की बात है, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात है, तो आपने देखा कि अभी 1.25 लाख रुपए तक के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उनको छूट दी गई पिछले बजट में। हाँ, अभी चर्चा चल रही है कि क्या 12.25% रहना चाहिए या 20% वाला जो शॉर्ट टर्म है उसमें बदलाव करना चाहिए, ये एक चर्चा का विषय है। उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ अच्छा ही होगा।
2: आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्योगों की भागीदारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।
3: All major US indices ended higher yesterday as investors held out hope for a peace deal between Iran and the United States as SpaceX shares surged in the debut, making it Wall Street's biggest public listing in history. The Dow Jones Industrial Average surged 0.70% to end at 51,202. The S&P 500 gained 0.5% to finish at 7,431. And the Nasdaq Composite Index rose 0.3% to close at 25,889. Shishir, next week, Federal Reserve's policy meeting will be held, and this is going to be the first under the leadership of Kevin Warsh. So what are you looking forward to? Are there any signs of any further rate hike likely in the coming days?
1: See, of course, Kevin is very seasoned and a professional banker in the US. So people are much more interested in knowing the commentary, because the earlier whenever we had the Federal Reserve meeting, the most important discussion was that what is going to happen on the interest rate scenario. So at this moment we are thinking about that, what kind of commentary he is going to have. And please remember that the inflation in US is on slightly on a higher side, and if they increase the interest rate, that is also going to be a bad news for Indian equity market, because more money will flow out from the market. Yes. So if you talk about the interest rate, of course we should be slightly concerned about that if they raise the interest rate, but my focus would be more on the commentary, that what kind of direction he is going to give, because it's his first meeting as a chairperson.
3: Moving on, the global crude oil prices declined on Friday as traders grew more confident about an imminent peace agreement between the US and Iran. Yesterday, Brent crude August futures fell more than 3% to settle at $87.33 per barrel, to their lowest level since early March, while West Texas Intermediate July futures declined more than 3% to end at $88.88 per barrel. So if the deal is signed tomorrow, as we all are hopeful, how much is the level in which the oil will trade in the coming week? 3% is down now. So what do you expect? 5%, 10%, or slowly or gradually?
1: That's a very, very difficult question. But if anything comes below $90 a barrel, that's a very good news for India. And that is what we can hope for.
3: Okay. What are your expectations from the coming week?
1: On the oil thing?
3: Yes.
1: Yeah. Of course, it will have twin impact. One is, of course, the deal, and also the OPEC plus production thing.
3: And what is going to give the impetus to the market in the coming week to do well?
1: Equity? Of course, if you, as I mentioned about the what kind of Federal Reserve decision is there, but at the same time, if this deal is signed, we will have some good news for the Indian economy.

0: equity market, but one concern will always be there that what kind of direction Federal Reserve is going to take place.
1: Shashi ji, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं को तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे और राजेश के सवालों के जवाब देने के लिए भी आपका धन्यवाद.
2: Thank you, Shashi, for being with us. And before we close, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leaves on a six-day visit to France and Slovakia. Domestic indices end the week with gains, and U.S. markets rise amid hopes of peace deal. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगी। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जीतेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले माह एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। लुधियाना में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल लोकोन्मुखी और विकास को प्राथमिकता देने वाला रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कम्प्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी। बहुत बहुत स्वागत है पाटिल जी आपका।
2: नमस्कार।
1: दो कीर्तिमान स्थापित हुए 12 साल सरकार के और दूसरा प्रधानमंत्री ने वो रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी चर्चा अब तक सबसे ज्यादा होती थी जवाहरलाल नेहरू की। दोनों को आप किस तरह देखते हैं?
2: देखो, 12 साल कंटिन्यू काम करना, लोगों की जो आश है जो अपेक्षा है वो पूरी करना और बार बार जीतना और ऐसे मुश्किल परिस्थिति में जीतना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, वो सब लड़ते थे इलेक्शन उस टाइम। कांग्रेस के सामने कोई विरोध पक्ष नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है और उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिया?
2: देखिए, हमारा कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
2: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा वे समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक

0: समझता है अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांवों में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया, तब आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री

0: मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां तालाब सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया, और पहला रिवर लिंकिंग था। केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने पीकेसी की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहां तक पहुंचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में तो वहां जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट

0: आई, उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती वो पूरी वो देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहां के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से और दूसरा हर बात की बारीकी में डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। और उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं, तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने 2 शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है, कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया, मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्र से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को। और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेकर नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि ये आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, 2 देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया ऐसा नहीं है, पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है, तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है। और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड PM ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया CR पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी।

0: और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबीक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें, तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
1: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबीक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबीक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबीक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबीक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबीक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबीक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
0: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसी कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
1: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल डीपीआई कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
0: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल

0: देना एक बात कहते हैं, ये मिस कॉल मार देने से जनधन आधार मोबाइल ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने में।
1: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं है, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुलेगा। तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
0: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया, इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
1: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहां पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरे डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
0: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभागों को निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा, पश्चिम एशिया संकट के चलते ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं पर प्रभाव कम पड़ा है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने दीप विहार क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया और नई दिल्ली में नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्र के करदाताओं के लिए वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% की छूट की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभागों को निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों से मुलाकात की और जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री सिंह ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने भी आज जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों से समस्याएं सुनी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार रोहिणी के प्रत्येक नागरिक की सुविधा और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि किसी भी शहर का वास्तविक मूल्यांकन केवल उसकी भव्य अवसंरचना से नहीं बल्कि नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली जीवन गुणवत्ता से होता है। उन्होंने कहा कि विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए जो नागरिक जीवन को अधिक सुगम और बेहतर बनाते हैं। इसलिए रोहिणी में सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत श्री गुप्ता ने नवनिर्मित शौचालय सुविधा और मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाहरपुर गांव में नवनिर्मित सड़कों को भी जनता को समर्पित किया। दिल्ली सरकार में ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कारणों से ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। इससे पिछले एक महीने में बिजली खरीद की लागत भी लगभग 31% बढ़ी है। श्री सूद ने संवाददाताओं को बताया कि इस वृद्धि के बावजूद दिल्ली सरकार के प्रयासों से उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव कम पड़ा है।
3: सरकार की पूरी तरह से प्रतिबद्धता है कि कंज्यूमर पर बिजली के दामों का यथासंभव असर नहीं पड़ने देंगे। देश भर में बिजली कानूनों के चलते पीपीएसी की कॉस्ट लगातार हर महीने अलाउ की जाती है। उसी के अंतर्गत पिछले 14.5% जो 31 मार्च तक था ईंधन की कॉस्ट वेस्ट एशिया संकट के कारण, अब इस महीने 2.4% की बढ़ोतरी उसमें दी गई है। इसलिए हम पूरी तरह इस पे निगाह रखे हैं, जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ने।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष भारत के युवाओं के सपनों को साकार करने वाले रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस सेवा काल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक कौशल से जोड़ा गया जिससे युवाओं को नए अवसर मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि देश में रिकॉर्ड संख्या में बने नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान

0: संस्थान, विश्वविद्यालय और मेडिकल संस्थान युवाओं के उच्च शिक्षा के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। वहीं युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ने के लिए रोजगार मेले शुरू किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लाखों युवाओं को सीधे नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्टार्टअप से लेकर खेल के मैदानों तक और डिजिटल क्रांति से लेकर बड़े अनुसंधानों तक देश की युवा पीढ़ी हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को गति दे रही है। सौम्या की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रा सिंह ने आज दीप विहार क्षेत्र में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत वाली सड़कों और नालियों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार बवाना विधानसभा क्षेत्र में बेहतर और आधुनिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को भारत की बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली और नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल क्षमताओं के सफल परीक्षण पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताएं लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह उपलब्धि भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को और अधिक मजबूती प्रदान करेगी और वैश्विक स्तर पर उसकी रणनीतिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मालवीय नगर और सैदुलाजाब में आग लगने की घटनाओं के दौरान बहादुरी और तत्परता से कार्रवाई करने वाले नागरिकों और बचाव कर्मियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम भी शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस को और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन जवानों ने राष्ट्र की सेवा में अद्भुत साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा का परिचय दिया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने परीक्षा अधिकारियों के लिए iGOT कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें परीक्षा कर्मयोगी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य NTA परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं को सुचारू, सुरक्षित और मानवीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। इसमें नीट स्नातक पूर्व परीक्षा भी शामिल है। कार्यक्रम में संपूर्ण परीक्षा को कवर करने वाले 4 मॉड्यूल हैं। दिल्ली में कल यमुना स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर 500 से अधिक गैर सरकारी संगठन, स्वयंसेवी और सामाजिक संगठन राजधानी के यमुना घाटों की सफाई करेंगे। यह आयोजन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक होगा। दिल्ली के जल और सिंचाई मंत्री परवेश साहब सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यमुना को स्वच्छ बनाने का संकल्प एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। उन्होंने यमुना के घाटों और तटों को स्वच्छ रखने में जनता से भी सहयोग की अपील की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने अपने क्षेत्र के करदाताओं के लिए वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% छूट की घोषणा की है। परिषद ने बताया है कि यह छूट उन करदाताओं को प्रदान की जाएगी जो अपने संपत्ति कर का भुगतान 30 जून या उससे पहले कर देंगे। एनडीएमसी ने अपने क्षेत्र के सभी

0: संपत्ति धारकों से इस लाभकारी योजना का लाभ उठाते हुए समय पर संपत्ति कर का भुगतान करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि एनडीएमसी क्षेत्र के करदाता परिषद के ऑनलाइन भुगतान पोर्टल अथवा परिषद द्वारा अधिसूचित अन्य अधिकृत भुगतान माध्यमों के जरिए भी अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज ने लगभग 4 दशकों के अपने विशिष्ट सैन्य करियर में सेना की युद्ध क्षमता और दीर्घकालिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। यह महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आईमे स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रिविंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार।
0: दक्षिण दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी सांसद रामवीर सिंह विधोड़ी के सरकारी आवास पर आज टीबी यानी तपेदिक जांच अभियान चलाया गया। इस अवसर पर श्री विधोड़ी ने लोगों से नियमित रूप से टीबी की जांच कराते रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस बीमारी के लक्षणों के प्रति अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। श्री विधोड़ी ने कहा कि टीबी का समय पर पता चल जाए तो इलाज आसान हो जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षा और बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत जिला और यातायात पुलिस की सड़कों पर मौजूदगी बढ़ेगी। पुलिस आयुक्त ने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को संयुक्त पैदल गश्त के निर्देश दिए हैं। पुलिसकर्मियों को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक दफ्तर के काम और आंतरिक बैठकों से बचने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही जिला और यातायात पुलिस की टीमें सप्ताह में 4 दिन संयुक्त रूप से गश्त करेंगी, ताकि सड़क अवरोधों को हटाया जा सके और यातायात जाम की समस्या का समाधान हो सके। केंद्र सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर में बालिकाओं के सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के समय का लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह योजना बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राजधानी में आज अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा शाम के दौरान गरज के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अन्य अधिकारियों ने जनहित से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान के लिए विभागों को निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा, पश्चिम एशिया संकट के चलते ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बावजूद उपभोक्ताओं पर प्रभाव कम पड़ा है। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने दीप विहार क्षेत्र में 20 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने क्षेत्र के करदाताओं के लिए वर्ष 2026-27 के संपत्ति कर पर 10% छूट की घोषणा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभाल लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का ज्यादा प्रभाव न पड़े। लुधियाना में श्री पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल लोकोन्मुखी और विकास को प्राथमिकता देने वाला रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुच्चेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ

0: एफएम गोल्ड, खरा सोना।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम मधुरिमा। और मधुरिमा प्रोग्राम लेकर मैं आ चुकी हूं स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ हेमा शमी। समय मिलाइए, समय हुआ है 8:11 और पूरे 4 सेकेंड। शो की शुरुआत करेंगे आंधी फिल्म के इस गीत के साथ। और ये जो गीत है ये यमन राग पर आधारित है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मधुरिमा जो प्रोग्राम है वो रागों पर आधारित होता है, तो चलिए इस गीत को बिल्कुल अभी आप तक पहुंचाते हैं।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

प्रोग्राम चल रहा है मधुरिमा और मैं हूँ आपके साथ हेमा शमी सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। वैसे तो अब जो गीत हम आप तक पहुंचाने वाले हैं वो है फिल्म कुदरत का गीत, और ये जो गीत है ये राग यमन की छाया लिए ये गीत आज भी संगीत प्रेमियों की पहली पसंद है। आज भी जब ये गीत हमारे कानों में पड़ता है तो बस कहीं घुल सा जाता है। बहुत ही खूबसूरत गीत।

वही समय आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि आपसे इजाजत ले ली जाए, लेकिन हम छोड़े जा रहे हैं आपको मेरा साया फिल्म के बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। आप 8:30 बजे सुनेंगे स्पोर्ट्स स्कैन, फिर समाचार संध्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला धर्मशाला में जारी। अफगानिस्तान ने दिया भारत को 195 रन का लक्ष्य। महिला टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी। बर्मिंघम में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। एशियन गेम्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की घोषणा। पीवी सिंधु, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पराग्वे पर 4-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। ग्रुप बी के मुकाबले में कल कतर और स्विट्जरलैंड होंगे आमने सामने। और भारतीय हर्डलर तेजस शिरसे ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में किया ऐतिहासिक प्रदर्शन। 13.27 सेकंड के साथ बनाया नया रिकॉर्ड।

0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, जहां धर्मशाला में पहला एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। अफगानिस्तान के रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है और कप्तान शुभमन गिल 6 रन और रोहित शर्मा 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। यह श्रृंखला आगामी एक दिवसीय विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर अहम मानी जा रही है। और अब रुख कर लेते हैं T20 महिला विश्व कप की ओर, जहां मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 20वें ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। आज खेले गए एक अन्य मुकाबले में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने निर्धारित ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाए। 162 रन के लक्ष्य के जवाब में आयरलैंड की टीम 5 गेंद शेष रहते 121 रन पर सिमट गई। उधर बर्मिंघम में कल भारत का मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। सुनते हैं इस महामुकाबले पर यह खास रिपोर्ट।
1: भारत और पाकिस्तान के बीच कल हाई वोल्टेज मुकाबले के दौरान एस्बेस्टन में माहौल बेहद जोशीला रहने की उम्मीद है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम में अनुभव और आक्रामक खेल का शानदार मिश्रण है। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी में जहां स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा शुरुआत से ही मैच की गति तय कर सकती हैं, वहीं भारत के पास एक संतुलित गेंदबाजी क्रम भी है। इंग्लिश कंडीशन में रेणुका सिंह की स्विंग और दीप्ति शर्मा की निरंतरता महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्रांति गौड़ भी इस मैच में अपनी चमक बिखेर सकती हैं। मैच से पहले कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि बर्मिंघम में भारतीय प्रशंसकों से उत्साह की पूरी उम्मीद है।
2: आई थिंक बिकॉज द मैच इज इन बर्मिंघम और वहाँ पर आई थिंक सपोर्टर विल बी यू नो इक्वल बिकॉज वहाँ पर काफी सारे इंडियंस हैं और पाकिस्तानी रहने वाले हैं और हमने बहुत सालों से उनको डोमिनेट करा है।
1: भारतीय स्टार जेमिमा रोड्रिक्स ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुकाबला हमेशा प्रेशर वाला होता है।
3: आई रिमेम्बर व्हेन आई प्लेड माय फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान गेम इन द ड्रेसिंग रूम हैरी actually spoke. She's like, we'll not deny it. There is pressure from outside because we know the history of India versus Pakistan. We know what the fans expect. Even like my building watcher will be like, kisi ke saath haro par Pakistan ke saath mat haro. That is the kind of pressure because they love cricket. They love this rivalry.
1: भारतीय कोच अमोल मजुमदार ने कहा कि इस फॉर्मेट में कोई भी गेंदबाज घातक साबित हो सकता है।
4: Look, I mean, I'll be very neutral here. You know, I have to balance it out. I mean, every bowler on a given day, it's T20 cricket. So you know, it's the shortest version of the game.
1: दूसरी तरफ फातिमा सना की कप्तानी में पाकिस्तान की युवा टीम मैदान पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करेगी। पाकिस्तानी टीम में स्पिनर सादिया इकबाल और निदा डार की भूमिका अहम होगी। भारत इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। 2020 अंतर्राष्ट्रीय में

0: भारत का हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर रहा है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में अक्सर अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले हैं। इससे पाकिस्तान का आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोनों देशों की महिला टीमों के बीच अब तक कुल 16 2020 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 मैच जीते जबकि 3 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लिश कंडीशंस में कल कौन सी टीम अंडर प्रेशर बेहतर प्रदर्शन कर पाती है। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन।
1: इसी क्रम में पूर्व भारतीय कप्तान अंजुम चोपड़ा ने T20 विश्व कप के समीकरण पर हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला से अपने विचार साझा किए।
2: नमस्कार अंजुम जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: अगर ग्रुप स्टेज की बात करें तो इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम है, तो कितना मुश्किल होगा भारतीय टीम के लिए ये सफर?
3: तो डिफिकल्ट तो सभी के लिए है, किसी एक टीम के लिए नहीं है, एंड सभी की दावेदारी है। 12 टीमों का अगर विश्व कप है तो 12 की 12 दावेदारी है। हाँ, कोई ज्यादा स्ट्रांग है, कोई ज्यादा स्टैंडिंग ज्यादा अच्छी है बाकी टीमों से, तो लेकिन ऐसा कोई क्लियर फेवरेट नहीं है कि यही टीम है जो खेलेगी या यही टीम है जो जीतेगी। सबको मेहनत करनी पड़ेगी, सबको कम्पीट करना पड़ेगा, एंड वही स्थिति सभी के लिए, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, किसी के लिए भी हो, सबके लिए सेम है।
2: जी, जैसा कि आपने कहा कि स्थिति लगभग सभी के लिए सेम है, मेंस क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी जो है वो लगभग खत्म होती नजर आ रही है, तो वुमेन्स क्रिकेट में आपका इस पर क्या कहना है?
3: चैलेंजेस वही रहेंगे, सबका स्किल लेवल अलग रहता है, सबकी गेम प्लान अलग रहती है, लेकिन खेलने तो विश्व कप आए हैं, तो जितना कीन इंडिया रहेगी मुकाबला जीतने के लिए उतना पाकिस्तान भी रहेगा, एंड ऐसा कोई कंपैरिजन या सिमिलैरिटी नहीं है अदर देन द फैक्ट दोनों टीमें मैच खेलती हैं, यहाँ भी दोनों टीमें मैच खेलेंगी एंड कम्पीट करेंगी।
2: इंडिया टीम ने अभी हाल ही में इंग्लैंड में एक सीरीज खेली, भले ही उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पिच कंडीशन और मौसम को समझने का उनको मौका मिला है।
3: सिमिलैरिटी तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, आई थिंक मौसम का फर्क

0: नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समय सबको लगता है अब, क्योंकि भारतीय टीम यहाँ पर है तो आई एम श्योर एडजस्ट हो चुकी होगी।
1: बल्लेबाजी की बात तो हम काफी करते हैं, स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर की, बॉलिंग में ऐसे कौन से नाम होंगे जो भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं?
0: देखिए T20 मुकाबले में सबका योगदान है, कोई ऐसे एक या दो गेंदबाज नहीं आएंगे जिसपे आप पूरा अपना दारोमदार रखते हैं। दारोमदार हम सिर्फ एक गेंदबाज रखते हैं, जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं, बट सब खिलाड़ियों की अपनी स्ट्रेंथ है, तो चाहे वो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट हो लेड बाय दीप्ति शर्मा इन जर्नी, या हमारा फास्ट बोलिंग डिपार्टमेंट हो लेड बाय क्रांति गौड़ एंड रेणुका, हर एक का रोल रहेगा और किसी का रोल ज्यादा या कम नहीं है, सबको अपना रोल अदा करना पड़ेगा क्योंकि इसी तरीके का अब T20 क्रिकेट हो गया है।
1: तो T20 खेल को समझते हुए सबको रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर बात करें एक्स फैक्टर की तो कौन भूमिका में नजर आएगा?
0: ऋचा घोष मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा भारतीय टीम के लिए, कि ऋचा घोष किस तरीके से इस विश्व कप में खेल पाती हैं या उनको कितना खेलने का अवसर मिल पाता है, तो उनसे काफी उम्मीदें हैं मेरी। मेरे को लगता है कि वो एक एक्स फैक्टर का, एक्स फैक्टर तो नहीं कहूंगी क्योंकि पहले हमें, वो तो कंसिस्टेंट मेंबर है भारतीय टीम की, लेकिन हाँ उनपे थोड़ी ज्यादा अपेक्षाएं रहेंगी, उनसे ज्यादा मुझे रहेगा कि वो गेम चेंजर वाला रोल खेल सकती हैं।
1: हमने बात करी ग्रुप ए की, लेकिन ग्रुप बी में आपको ऐसी कौन सी दो टीमें लगती हैं जो आगे जा सकती हैं?
0: हाँ फिलहाल तो इंग्लैंड मुकाबला जीत चुकी है तो वो अच्छा स्टार्ट कर चुके हैं, न्यूजीलैंड डिफेंडिंग चैंपियंस है तो आप उनकी तरफ जरूर देखेंगे, लेकिन जो बाकी टीमें भी हैं वेस्ट इंडीज है आप उनको हटा नहीं सकते पिक्चर से, तो मैंने कहा जैसे कि 12 टीमें हैं वो सब दावेदारी के साथ आई और अच्छा खेलना चाहेंगी। हाँ दो ही जा सकती हैं आगे हर पूल से आगे, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरे पूल में वेस्ट इंडीज भी है और वो भी एक अच्छी अच्छी टीम है, अच्छा खेल दिखाएगी, सो वेरी कीन कि स्कॉटलैंड कैसे खेलता है और आयरलैंड कैसे निकल कर आता है वहां से।
1: कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: और अब बात बैडमिंटन की। एशियन गेम्स के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम की घोषणा कर दी गई है। पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारत का नेतृत्व करेंगे। एशियन गेम्स इस वर्ष जापान के आईची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच आयोजित होंगे। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: दो बार के मेडलिस्ट पीवी सिंधु और एशियन गेम्स 2022 में पुरुषों के डबल्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन कमेटी नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के हालिया नतीजों और 26 मई 2026 तक की BWF रैंकिंग को देखने के बाद टीम को मंजूरी दी। भारत के टॉप रैंक वाले पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी लक्ष्य सेन की अगुवाई वाली इस टीम में अनुभवी HS प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत भी शामिल हैं, जिन्होंने पिछले एडिशन में भारत के ऐतिहासिक सिल्वर मेडल में अहम भूमिका निभाई थी। पुरुषों की टीम में इस साल के BWF थॉमस कप में कांस्य पदक जीतने वाले अधिकतर मुख्य खिलाड़ी शामिल हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले आयुष शेट्टी, BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप की इंडिविजुअल चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली तन्वी शर्मा और टीम चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली उन्नति हुड्डा को इंटरनेशनल सर्किट पर शानदार प्रदर्शन के चुना गया। पुरुषों की डबल्स टीम में हरिहरन, अमसाक करुणन और MR अर्जुन मजबूत फॉर्म में हैं। अर्जुन के पास 2022 के पुरुषों की टीम इवेंट में भारत के सिल्वर मेडल जीतने का अनुभव भी है। महिलाओं की डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौतियों की अगुवाई कर रही हैं, जिन्हें सिमरन सिंघी और कवि प्रिया सेल्वम का साथ मिल रहा है। थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 चैंपियन देविका सिहाग, ईशा रानी बरुआ और थारून मन्नेपल्ली के साथ मिलकर भारत की सिंगल्स की ताकत को और है। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो डबल्स स्क्वाड में अतिरिक्त कौशल और अनुभव लाते हैं। व्यक्तिगत चैंपियनशिप में भारत सभी 5 इवेंट्स में हिस्सा लेगा। सेन और शेट्टी पुरुषों के सिंगल्स में हिस्सा लेंगे, जबकि सिंधु और हुड्डा महिला सिंगल्स की अगुवाई करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज चिराग और हरिहरन अर्जुन मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में ट्रिसा गायत्री और कवि प्रिया सिमरन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। शीर्ष मिक्स डबल्स टीम में ध्रुव और तनीषा भी हिस्सा लेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैट।
2: उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल में आज जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को 22-20, 21-12 से हराया। अमेरिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पराग्वे पर 4-1 की धमाकेदार जीत दर्ज की। ग्रुप बी के मुकाबले में कल कतर और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। सुनते हैं मुकाबले पर एक खास रिपोर्ट।
4: One game! One win! Let's go! अमेरिका की ओर से फोलारिन बालोगुन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल

0: देखिए, अमेरिका की टीम पूरे मैच में हावी नजर आई और पराग्वे को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। अमेरिका के लिए मैच की शुरुआत शानदार रही। मुकाबले के सातवें मिनट में ही अमेरिका ने एक शून्य की बढ़त बना ली। डेमियन बोबाडिला ने पराग्वे के डिफेंस को भेदते हुए बेहतरीन गोल दागा। मैच के 31वें मिनट में फोलारिन बालोगुन ने अमेरिका की बढ़त को दोगुना कर दिया। फोलारिन के शानदार स्किल्स के सामने पराग्वे का डिफेंस पूरी तरह बेबस दिखाई दिया। पहले हाफ में फोलारिन का एक बार फिर दमदार खेल देखने को मिला और उन्होंने अमेरिका को मुकाबले में 3-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ में ही अमेरिका की जीत लगभग पक्की हो गई। हालांकि दूसरे हाफ में पराग्वे ने आक्रामक खेल दिखाया और वापसी का प्रयास किया। टीम को मैच के 73वें मिनट में सफलता हाथ लगी। पराग्वे के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी मॉरिसियो ने पराग्वे के लिए मैच में पहला गोल दागा। इसके बाद अमेरिका ने अपने खेल में आक्रामकता बढ़ाई और पराग्वे के डिफेंस पर लगातार दबाव डाला। काफी प्रयास करने के बावजूद पराग्वे की टीम को गोल में सफलता नहीं मिली। निर्धारित 90 मिनट के बाद स्टॉपेज टाइम में गियोवानी रेयना ने अमेरिका की बढ़त को 4-1 कर दिया। उन्होंने मैच की आखिरी सीटी बजने से ठीक पहले पराग्वे के डिफेंस को एक बार फिर भेदा और अमेरिका की दमदार जीत पर मोहर लगा दी। फोलारिन बालोगुन 1930 के बाद फीफा विश्व कप में 2 गोल करने वाले पहले अमरीकी खिलाड़ी बन गए और इस जीत के साथ ही अमरीका ने टूर्नामेंट का आगाज शानदार अंदाज में किया और टीम इस लय को आने वाले मुकाबले में भी बरकरार रखना चाहेगी। स्पोर्ट्स कैन के लिए मुनीश शर्मा।
1: और अब बात एथलेटिक्स की। भारतीय हर्डलर तेजस शिरसे ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। तेजस ने 13.27 सेकंड में पुरुषों की 110 मीटर हर्डल रेस पूरा करते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की टीम में अपनी जगह बनाने की दावेदारी मजबूत कर ली है। और अब बात हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम FIH प्रो लीग के पहले मुकाबले में कल मेजबान नीदरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। और चलते चलते श्रोताओं, आपको बता दें कि भारत ने 5वें ओवर में बिना किसी नुकसान के 38 रन बना लिए। शुभमन गिल ने 15 और रोहित शर्मा 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी

0: ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉ मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 2,50,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
1: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही हैं। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं।

0: पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले तीन चार दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने सातवें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने तीन तीन विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
2: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase.

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते

0: तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मॉनसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके हैं। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है, तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है। न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंड पंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है, इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का, जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है, एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है, और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत

0: बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
0: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
1: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी, इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए, खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए माइने सामान्य, बी माइने उससे और कठिन, सी माइने और कठिन, डी माइने उससे भी कठिन और ई माइने परम कठिन आसन। ऐसे हमने कैटेगरी तय की और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके, उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्टर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
0: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
1: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
0: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा किया, इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
1: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग श्री स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए। तो उस वार्ता में यह निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थीं कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
0: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
1: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन है। साफ स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे कोचेस तैयार किए जाएं और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में

0: ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, सो ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है, और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है, और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने, और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा। तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं हैं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूं। 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्हें आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा, और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा, और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं, और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता

के विस्तार में फैलती है तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे आईआईटी कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मूर्य मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेघ में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है, तो वो गाना हमने खुद बनाया है। वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक वर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख परख के।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग इस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहां पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: सॉरी, आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेट अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपए एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स। तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया।

0: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज़्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं अब. अब हमें भी जैसा शौर्य बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है. हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने. 1-1.5 घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है. ये आपको एक लेवल पे, आपको सर्किट में कम से कम 10-10 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको 1.5 घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक. पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं.
1: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं
0: जी हैं,
1: राधर देन योर ओन कॉम्पोजिशंस?
0: बिल्कुल हैं. पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं.
1: अच्छा,
0: हम बोलते भी हैं वी कुल्फी फाइव डेट.
1: जैसे भी आपने एक एग्जांपल दिया, संभव जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे
0: जी
1: आपने एक नया
0: जी
1: टच दिया।
2: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज वॉट वी एज अ बैंड ऑल्सो डू.

कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं।

0: बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है, और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिशी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: I would say it is a civilizational memory, just like महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. रामायण का जो स्पंदन है, जो लय है, वो निरंतर है, वो शाश्वत है। आपको व्याख्या मिलती है किस तरह से आपके अंदर वो इमोशंस और भावनाएं हैं। और मैंने दो लाइन लिखी थी कैकेयी का प्रसंग, कि कैकेयी के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।

0: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिशी गुरु विदुषी शेरन लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
1: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about or significant is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
0: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की, जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
2: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमें धारण किया है और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के, रह के, उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे हैं।
0: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंभ रामायण का विशेष उल्लेख किया।
3: There is also a very beautiful and very important play, a scene to behold, to seeing them come, the Shurpanakas, Alarcha, the...
0: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
3: Going and proposing to Rama and Lakshmana, from that rakshasi bhavam, the hand goes into a beautiful pallava.

राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियां देह में भले हमारे साथ ना हो, वो हमारी संस्कृति में, हमारी स्मृतियों में, हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिम यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथूला मार्ग से यात्रा करेगा। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। यह आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 22वें ओवर में 3 विकेट पर 176 रन बना लिए हैं। उधर मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सरकार की आशंकाओं के बीच वहां विरोध प्रदर्शन तेज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के बीच निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रतिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा दोनों देशों के लिए सहयोग के नए द्वार खोलेगी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे सोमवार को ब्रातिस्लावा में श्री मोदी के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। फ्रांस की यात्रा के बाद श्री मोदी कल से 16 जून तक स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के आमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। श्री मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति पेलिग्रिनी से मिलेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऑटो विनिर्माण तथा रेलवे बुनियादी ढांचा में सहयोग पर चर्चा करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। संभावना है कि श्री ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता करेंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार G7 सम्मेलन अमरीकी आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा मित्र देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक कृषि उत्पादन में तकरीबन 42% का योगदान ब्रिक्स देशों का है। सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इनमें प्राकृतिक और सृजनात्मक कृषि पर संयुक्त शोध के लिए उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क बनाना, कृषि में यंत्र बुद्धि और डिजिटल तकनीक लाने के लिए ब्रिक्स डिजिटल नेटवर्क की स्थापना करना, बीज और परंपरागत बीज किस्मों के संरक्षण से जुड़े किसान अधिकारियों को सुरक्षित करने के लिए वैश्विक मंच की स्थापना करना और ब्रिक्स एग्री एन नेटवर्क की स्थापना करना शामिल है। चौहान ने कहा कि भारत सरकार किसानों के लिए प्रति बोरी DAP 1350 रूपये और यूरिया 266 रूपये उपलब्ध कराना जारी रखेगी। इसका अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में लेने की पाकिस्तान सरकार की आशंकाओं के बीच वहां विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने इसे स्वीकार नहीं किया है। कमेटी का कहना है कि बातचीत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने कभी अपने वायदे पूरे नहीं किए हैं। समाचार एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के लिए मौजूदा विरोध प्रदर्शनों से निपटना कठिन होता जा रहा है। इस बार विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानी प्रवासी भी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन और अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बलूचिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि पूरे बलूचिस्तान में नागरिकों के विरुद्ध हिंसा बढ़ गई है। बलोच एकजहती कमेटी ने एक नागरिक के मारे जाने और दो के लापता होने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया है। कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों, पत्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन घटनाओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन का संज्ञान लेने की अपील की है। ईरान ने कहा है कि वो अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमरीका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और तीन अन्य घायल हैं। रूस के गवर्नर वेन्यामिन कोंद्रात्वेव ने कहा कि दक्षिणी प्रांत क्रास्नोदर में ड्रोन के हमले से एक समुद्री टर्मिनल पर आग लग गई है। यूक्रेन ने इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि यूक्रेन ने एक तेल ठिकाने और रूस के नियंत्रण वाले सैन्य ठिकानों पर सफल हमले का दावा किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक यात्रा से स्लोवाकिया भारत सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह फ्रांस में होने वाले G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न, सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Renuka with World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. Slovak President Peter Pellegrini says Prime Minister Modi's historic visit will open new opportunities for Slovakia-India cooperation. US President Donald Trump to meet Prime Minister Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. 5-day BRICS agriculture conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration focusing on food insecurity and smart technology in farming. And in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, protests intensify amid fears of Islamabad's bid to seize direct control. Prime Minister Narendra Modi will reach French city of Nice tonight, marking the beginning of his six-day visit to France and Slovakia. The visit to two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. In conversation with Akashwani, the Ambassador of India to France, Sri Sanjeev Sangla, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further deepen the people-to-people ties.
3: There is a core belief there that key partnerships, for instance, with France, we have now a special global strategic partnership. They have to be driven by people-to-people relationship. There is only a certain point up to which the governments can push the relationship. So the relationship has to become much more organic. And that's why increasingly there's a focus on deepening these ties. They span a number of areas.
2: Our correspondent covering Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
4: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m., Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron. Discussions are expected to cover defense, artificial intelligence, space, trade, education and other global challenges. Here in Nice, expectations are high that the visit will inject fresh momentum into one of India's most trusted strategic partnerships. This is Shailesh Menon for Akashwani News, Nice, France.
2: On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart, Robert Fico, in Bratislava. The Slovak president, in a social media post today, said that Prime Minister Modi's historic visit will open new opportunities for Slovakia-India cooperation. President Pellegrini stated that he is looking forward to welcome Mr. Modi in Bratislava. Our correspondent reports that the Indian community in Bratislava is preparing a unique welcome for Prime Minister Modi during his maiden visit to Slovakia.
5: As Slovakia prepares to host an Indian Prime Minister for the first time, members of the Indian community are making special arrangements to accord a grand welcome. Paintings, cultural programs and dance programs are being planned to mark the historic visit. Indian Ambassador to Slovakia, Apurva Srivastava, says the excitement is clearly visible among the Indian diaspora. Preparations are underway across the community and the national flags of India and Slovakia can be seen in the capital city, Bratislava. The enthusiasm has been further boosted by the significant increase in travel and exchanges between the two countries over the past 5 years. Bratislava's strategic location in Central Europe is also expected to help strengthen tourism links with India. Smithy M. Palluruthi for Akashvani News from Bratislava.
2: After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in eastern part of the country in Evian on 16th and 17th of this month. The White House today said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi on Wednesday during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. On the final leg, Prime Minister Modi will travel to Paris on 18th of this month to attend the Europe's largest technology and startup event, Viva Tech Summit. This is Akashwani. You're listening to World News. We bring you the top international news and updates around the globe. 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh today. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and use of smart technology in farming. In Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK, protests have intensified amid fears of Islamabad's bid to seize direct control. Although the Pakistani authorities have made an offer for talks, the Joint Awami Action

10:30 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर स्वागत है आप सबका प्रोग्राम हर सिंगार में। आपके साथ मैं विकास, नमस्कार।

आराधना फिल्म का ये गीत और किशोरदा की आवाज लता मंगेशकर की जोड़ी थी इस गीत में। पर्दे पर शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की खूबसूरत सी एक और जोड़ी नजर आती है, लेकिन इस गीत को कुछ और भी खूबसूरत बनाता है। धुन और बोल तो इस गीत के प्लस पॉइंट हैं ही, लेकिन इस गीत में नजर आने वाली वादियां और खूबसूरत से पहाड़ इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग पहाड़ों को मिस करते हैं, या पहाड़ों पर जब भी जाना होता है तो बस कुछ न कुछ अपने साथ समेट कर लाना चाहते हैं। मेरा भी बीते दिनों जाना हुआ पहाड़ों पर, कैसा रहा मेरा अनुभव वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक गीत पहुंचता है आप तक। फिल्म का नाम है मेरा साया। 1966 की ये खूबसूरत सी फिल्म खूबसूरत से संगीत के साथ।

बीते दिनों जाना हुआ मेरा पहाड़ों पर, बादलों को जितना जी भर कर देख सकता था, बर्फ से ढकी कुछ कुछ ऊंची चोटियों को जितना निहार सकता था, उससे कम ही देख पाने का मलाल है।

घर पहुंचने के बाद ख्याल आया कि किसी ऊंचाई पर बैठकर एक टक अच्छे से थोड़ा सा और देखना चाहिए था पर्वत के शांत व्यक्तित्व को। उसकी बहुत सी प्राचीन घास पर लेटकर खुद को थोड़ा सा और तरोताजा करना था। बर्फ से ढकी कुछ कुछ ऊंची चोटियों को जितना निहार सकता था उससे कम ही देख पाने का मलाल रहा। जी, कई दफा हमारे साथ ऐसा ही होता है, जैसे ही हम पहाड़ों के बीच में जाते हैं, अपने पुराने जगह को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन भूल जाना चाहते हैं और चाहते हैं उस पहाड़ को एक टक निहारना, उस पहाड़ को जो किसी ऋषि की तरह न जाने कितने बरसों से एक टक निहार रहा है अपने आसपास को।

नई पीढ़ी के लेखक सौरभ अनंत अपनी एक कविता में लिखते हैं कि यात्राएं पहाड़ों के स्वप्न देखती हैं, पहाड़ यात्राओं के, नदी रेलगाड़ी में अकेली बैठी पुल पार करने के स्वप्न देखती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जुड़े हुए आप प्रोग्राम हर श्रृंगार, आपके साथ इस सफर में मैं विकास।

0: पर्वत को याद करते हुए धर्मेश लिखते हैं कि मैंने तुमसे मांगा प्रेम, जैसे चिड़ियों ने मांगे पेड़ों से घर। तुमने रख दिया था अपना हाथ मेरे कंधे पर, जैसे नदियों ने रखा मछलियों के लिए जल। तुम्हारे हृदय पर ठहरा रहा मेरा माथा, जैसे धरती पर ठहरते हैं पर्वत। प्रोग्राम का आखिरी गीत, थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार, लेकिन आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ यानी FM गोल्ड के साथ।
1: मेरी जान जा, ये सब आग था यहाँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवर्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरिटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोहराट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाहन 7:35 तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his six-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia tomorrow. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart, Robert Fico, in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the Eastern

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
1: नमस्कार। 10 जून 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जो कि इतिहास के पन्नों में भी दर्ज होगी और लोकतंत्र जिसकी बात सिर्फ बात नहीं होती बल्कि भारत उस पर गर्वान्वित महसूस करता है उस इतिहास में भी लिखी जाएगी। नरेंद्र मोदी एक तरीके से जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। निर्वाचित एक प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने अपना पूरा किया है और इसके अलावा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार के 12 साल भी कम्प्लीट हुए हैं। तो अब विकसित भारत की बहुत बात होती है लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जिसकी बात गांव गांव तक पहुंचती है और सिर्फ बात नहीं क्या वाकई में गांव के लोग उस बात को महसूस भी करते हैं। जी हाँ, हर घर जल और नल ये एक ऐसी योजना रही जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा 12 साल में रही और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं।

0: और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके सामने तो बहुत ही पावरफुल लोग, सीनियर लोग, कांग्रेस खुद लड़ती है, उसके अंदर अपने बलबूते पे लड़कर वो आना और 12 साल कंटिन्यू सेवा करना और करते रहना, यही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उसको हम देखेंगे कि 12 साल में क्या किया उन्होंने, लोगों की सभी अपेक्षा पूर्ण करने में उत्तीर्ण हुए। एक लाइन में अगर कह सकते हैं तो इतना कह सकते हैं, क्योंकि काम तो उसके अगर लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही और सरकार ने 12 साल कम्प्लीट कर लिया?
0: देखिए, हमारा कहते ना अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है। और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले ही उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
0: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा वे समझते थे। आज एक आम आदमी में से एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, मैं आपने बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहाँ तक उनको पहुँचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांवों में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपंप डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का।

0: पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने के बाद ही 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसको आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ, महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबको ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था। आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था, हमने अचीव किया 27,50,000 पर हम पहुंच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको रिसिल्टिंग करना था, उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है, और सिर्फ सोच नहीं उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था, केन बेतवा दूसरा रहा मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में। 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने PKC की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गाँव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम, इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे तो ये जल संचय की वजह से हमको वहां की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं बीजेपी के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिला देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था, वो देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की, आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में तो वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है, और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुंच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था, तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती, वो पूरी देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहां के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती, और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता, और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी, तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था, और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था, और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट, और उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था, मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर, उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला। मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना। जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना।

0: ना, मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए, उनसे सीखे जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं। तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने दो शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं नहीं वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा, 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहां के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था, और वहां उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है, कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया, मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्र से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे, बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेकर नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी, आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों के हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया, ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कुछ पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है, ऐसे समय में

0: के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में इतना जीडीपी जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है। पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में, डेवलपमेंट हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, देश का हो, चंद्र पे जाना है, अवकाश में जाना है, हमें फाइटर प्लेन लेने हैं, अच्छी सबमरीन लेनी है, वो भी देश में बनाना है। तो सब काम एक ही आदमी इतनी ताकत के साथ कर रहा है और ये बैठे बैठे बस उनकी एक ही सोच है कि बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। क्यों बना दो, उसका कोई वजह नहीं है उनके पास, उनको खानदानी ये सीट उनकी है ऐसा उनको लगता है। ये चाय वाला कैसे आ गया, ये चाय वाला पूरे देश के लोगों की चाहना लेकर आया है और इसको हटाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है।
1: चलते चलते पाटिल साहब, मैं यही जानना चाहूंगी, जब प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने ग्रीट किया, स्टैंडिंग ओवेशन दी, इतना रिकॉर्ड पीएम ने बनाया, प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन था?
0: नहीं, मोदी साहब ने सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने 2 बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का 3रा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबिक्विक के फाउंडर और सीईओ बिपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है बिपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबिक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबिक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबिक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबिक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबिक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबिक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है।

0: के बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
1: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा, उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें, वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं तीन प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसी कौन सी तीन बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
0: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है, तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करें। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी, जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास, हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता, और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात किया, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने?
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं खुल
1: सकता।
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना

0: मतलब आपको एक लॉस उठाना है, तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खोले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया। इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से?
0: देखिए, डिजिटल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है, और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहां पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने DBT बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरे डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की, आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

11:45 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हैं आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। प्रोग्राम गीत मेरे मनमीत आपके साथ इस खूबसूरत से गुलदस्ते में कुछ फूल लेकर मैं आया हूँ आपका साथी विकास।

प्रोग्राम का ये आखिरी गीत आई मिलन की बेला फिल्म से लता जी की आवाज में, और विकास अब आपसे चाहता है इजाजत इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवार्ड गेफ्रे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, एल्प्स मैरीटाइम्स प्रीफेक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसो एडब्ले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सीओटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट श्नाइडर शामिल थे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में

0: प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ओर से ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी हेड पोस्ट ऑफिस और रहधर ब्रांच पोस्ट ऑफिस के बीच शुरू की गई। ये पहल केंद्रीय मंत्री की ग्रामीण डाक सेवकों और डाक सहायकों के साथ बातचीत के दौरान मिले फीडबैक पर आधारित है, जिसमें दूर दराज और मुश्किल इलाकों में तेज और बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत पर जोर दिया गया था। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाह्न 7:35 बजे तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत के लिए डेब्यू करने वाले हर्ष दुबे और गुरनूर बड़ार ने 3-3 विकेट लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. The Prime Minister will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron today. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his two-nation tour, Mr. Modi will travel to Slovakia today. Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini. He will also hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico in Bratislava. After concluding his Slovakia visit, Prime Minister Modi will return to France to take part in the G7 summit in the eastern part of the country in Auvergne on the 16th and 17th of this month. The White House said US President Donald Trump will meet Prime Minister Modi during the G7 summit. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The 5-day BRICS Agriculture Conference concluded at Indore in Madhya Pradesh. At the end of the conference, the Indore Declaration was adopted unanimously. The declaration outlines key decisions on food security, farmers' welfare, climate-friendly farming, agricultural trade and use of smart technology in farming. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said, Indore Declaration is not just a document of agreement but a symbol of the collective will and shared responsibility of BRICS nations. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam yesterday during a routine sortie, claiming the lives of five air warriors. The Indian Air Force, IAF, has expressed grief at the loss of lives. The IAF said that a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has also expressed grief at the loss of five air warriors. Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri said that tensions arising from the conflict involving Iran, the United States and Israel have increased challenges in the global petroleum sector, leading to a rise in crude oil prices. Speaking to the media at Ludhiana in Punjab, Mr. Puri asserted that the centre has, however, taken measures to ensure that Indian citizens are not adversely affected by the increase in fuel prices. The Indian Space Research Organization Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. The Embassy of India in Abu Dhabi has announced a change in the outsourced service provider handling Indian passport, visa and consular services across the United Arab Emirates. According to an official statement, Al Hind Tours and Travels LLC will become the new service provider from 1st of July 2026. Meanwhile, the current providers BLS International Services Limited and SGIVS Global will continue accepting and processing applications until 30th of this month. As part of the celebrations leading up to the International Day of Yoga IDY 2026, the Ministry of Ayush, in collaboration with the Morarji Desai National Institute of Yoga and Hebbled, will organize a landmark global online yoga event this morning. The online yoga session will be held from 6:15 a.m. to 7:35 a.m. and is expected to witness participation from more than 130 countries. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in a rain-affected first one-day international of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. Chasing 195 runs, India overhauled the target in 22.5 overs. Indian skipper Shubman Gill scored unbeaten 84 of 66 balls. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And that is the end of this news bulletin.

101 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज मंजू। शुरू हो चुका है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम पानी पर लिखी कहानी, जिसमें आज मैं सुनाने जा रही हूं अपने ही कलम से सजी कहानी, अपनी ही जुबानी पानी पर लिखी कहानी आवाजों के साए। प्रस्तुति है रश्मि कुकरीती की। कहानी की शुरुआत इस खूबसूरत गीत के साथ।

तेरी सादगी पर दिल हारा है मैंने, तेरी हर बात को दिल से माना है मैंने। तू ही मेरी पहली और आखिरी चाहत है, तुझ में ही अपना सब कुछ पाया है मैंने।

तुमसे मिलकर जाना मोहब्बत क्या होती है, कैसे दिलों में चाहत की शमा जलती है, हर लम्हा तेरे संग बिताना चाहता हूँ, अब तो बस यही इबादत दिल करता है।

मोहब्बत वो नहीं जो लफ्जों में बयां हो जाए, असली मोहब्बत वो है जो खामोशी में भी महसूस हो जाए।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 और इस वक्त गीत सुहाने का ये सुहाना सा सफर मैं और आप तय कर रहे हैं। यहां पर लिखूं तो लफ्ज तुम हो, लिखूं तो लफ्ज तुम हो, सोचूं तो ख्याल तुम हो, मांगूं तो दुआ तुम हो, सच कहूं तो मोहब्बत तुम हो।

ही देर में सुनिएगा समाचार और उसके बाद 2:10 पर एक बार फिर से आप और मैं होंगे साथ साथ आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेस मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए रविवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जल डमरू मध्य

पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 2:11 और इस वक्त रात सुरमई हो तो भला दिल में उमंगे क्यों ना उमड़े, समुद्र में उफनती लहरों सी दिल की आवाज सुने या दिल की तन्हाइयों से कुछ बात करें। ये सफर कुछ ऐसा ही रहेगा, एहसास जज्बात सभी रंगों में रंगे गीत पहुंचेंगे आप तक। सुनते रहे आकाशवाणी गोल्ड 100.1, अंजलि है आपके साथ।

0: इसलिए।
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: मुस्कुराई पहले जरा आप मुस्कुराई।
1: राज सुरमई आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 अंजलि है आपके साथ। और चलिए बता ही देते हैं कि क्यों आपके साथ इस सफर पर हम साथ साथ हैं। तो ये पूछा है ना सवाल कि आप यहाँ आए किस लिए। तेरे प्यार की राहों में चलते जाना है, तेरे प्यार की राहों में चलते जाना है, हर मुश्किल को हंसते हुए सहते जाना है, थाम कर तेरा हाथ ओ मेरे हम सफर, जिंदगी के हर मोड़ पर मुस्कुराते जाना है।

हर रात तेरी यादों का जहर पीता हूँ, टूटता हूँ बिखरता हूँ फिर भी जीता हूँ, शायद यही किस्मत में लिखा था मेरे, तेरे बिना हर पल यूं ही तड़पता रहता।

समर्पण चाहिए। ये समर्पण बहुत से रंग रूप लिए होता है। जीना उसकी गली, मरना उसकी गुली, वही मेरी दुनिया, वही संसार, सांस भी वही, आस भी वही, जिंदगी की चाहत भी वही, जिंदगी की हकीकत भी वही।

प्यार में ही तड़प नहीं, प्यार में जो नहीं होते वो भी दर्द में रह सकते हैं। दर्द भी जीवन का ही एक रूप है और इस रूप में ढलना, रंगना, डूबना और उससे निकलना भी एक ही तरह का आर्ट है। हर किसी को कभी न कभी इस रंग में डूबना पड़ता है, इस रंग से रूबरू होना पड़ता है। इसलिए इस कला को, इस आर्ट को समझना, जानना और सीखना भी बेहद जरूरी है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 और जो हम ये सफर गीत सुहाने का तय कर रहे हैं ना, अब हमें वक्त तो ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी चलते चलते देखिए एक बहुत ही प्यारा सा नगमा आप सबके लिए यहाँ पर हमने चुनकर रखा है, फिल्म दिल एक मंदिर, और मीना कुमारी जी, राजेंद्र कुमार और राजकुमार जी आपको स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। इस फिल्म में बहुत ही मर्म स्पर्शी ये गीत है, लता जी की आवाज में शंकर जयकिशन का संगीत है। तो चलिए लुत्फ उठाइए इस गीत का और इसी के साथ अंजलि को दीजिए इजाजत, लेकिन आप सुनते रहें हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीश शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता के साथ याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और काउंसलर सेवाओं को संभालने वाले आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर में बदलाव की घोषणा की है। ये बदलाव 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। उस तारीख से भारतीय पासपोर्ट, वीजा और काउंसलर सेवाओं के लिए सभी आवेदन अल हिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स द्वारा संचालित तथा तय केन्द्रों के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में कभी रात दिन हम दूर थे। ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, ना समझ ही रहने दीजिए अब हमें, इतना समझदार होकर भी क्या करना है। समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है कुछ, समझदारी के इस दौर में समझ में ही नहीं आता है कुछ, इससे तो हम ना समझ ही अच्छे हैं। 3:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

मिल जाए अगर समय से सजा हर गुनाह की, मिल जाए अगर समय से सजा हर गुनाह की, तो फिर शायद इतने गुनाह ही ना हो। मिलने लगे सुबह के कर्मों की सजा अगर शाम तक, मिलने लगे सुबह के कर्मों की सजा अगर शाम तक, तो फिर शायद कर्म भी उसी हिसाब से ही हों। नीचे की अदालत में तो मिलती है सजा तमाम सबूतों गवाहों और के बयानात पर, नीचे की अदालत में तो मिलती है सजा तमाम सबूतों गवाहों के बयानात पर, ऊपर की अदालत में जहां खुदा ही गवाह खुदा ही जज हो, वहां क्यों होती है देर, मेरी इस बात का कोई जवाब तो हो। होगी खुद खुदा की भी कुछ मजबूरियां शायद, होगी खुद खुदा की भी कुछ मजबूरियां शायद, वरना हर जगह इतने गुनहगार ना हो। मिल जाए समय से सजा हर गुनाह की, तो फिर शायद इतने गुनाह ही ना हो। 3:26 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

वो है जरा खफा खफा। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:32 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

लता मंगेशकर जी की आवाज में हम तो तेरे आशिक हैं। वो कहते हैं लिखो कुछ लाइनें मेरे लिए भी सही, वो कहते हैं लिखो कुछ लाइनें मेरे लिए भी सही, मैंने कहा तुम कभी मिलो तो सही। लिखने को कुछ लाइनें क्या पूरा उपन्यास भी लिख दूं तुम पर, लिखने को कुछ लाइनें क्या पूरा उपन्यास भी लिख दूं तुम पर, बस तुम कुछ देर मेरे साथ रुको तो सही। 3:39 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

करोगे अगर तलाश तो पा ही लोगे जिसे तुम चाहते हो। करोगे अगर तलाश तो पा ही लोगे जिससे तुम चाहते हो। यूं घर बैठे तो तलाश पूरी नहीं होगी। निकलो जरा घर से बाहर, निकलो जरा घर से बाहर, क्या पता तुम्हारी तलाश में कोई और भी भटक रहा हो। 3:51 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

3:58 हो चुके हैं, अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। अब से कुछ ही देर बाद आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे, अहम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे और G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नीस पहुंचने पर होटल नेग्रेस्को में भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी और उत्साह के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड्स के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इस अनुभव को यादगार बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की तरह ही मजबूत बना हुआ है। असम के जोरहाट में कल सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। AN-32 विमान कल सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए रविवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके तुरंत बाद रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज जल डमरू मध्य सभी के लिए खुला रहेगा। ट्रंप का यह बयान पाकिस्तान के उस संकेत के कुछ घंटों बाद आया जिसमें कहा गया था कि अमरीका और ईरान बातचीत के आखिरी चरण में हैं और समझौते के लिए रविवार को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाना है। हालांकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ने रविवार को हस्ताक्षर करने की योजना से इनकार किया और कहा कि इसका ढांचा अभी तक तय नहीं हुआ है और साथ ही उन्होंने इस दिन को लेकर ट्रंप के अजीब आग्रह की आलोचना भी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 से पूर्वाह्न 7:35 तक होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। फीफा

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा। बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, बनी रहने दीजिए कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही सही, सारी पूरी हो जाएं ये जरूरी तो नहीं। सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, सुकून ए जिंदगी पर ही ध्यान दीजिए सारा, क्योंकि ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं। 4:11 हो चुके हैं, कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और एक बार फिर से मैं ही हूं आपके साथ, आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम मेरे यानी अर्चित के साथ।

किशोर कुमार जी की आवाज में ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। सिर्फ भागने से अगर मिल जाती मंजिलें, सिर्फ भागने से अगर मिल जाती मंजिलें, तो भाग तो पूरी दुनिया ही रही है। हासिल ए मंजिल यहाँ उसी को होती है, हासिल ए मंजिल यहाँ उसी को होती है जिसकी दिशा भी सही होती है। 4:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ ना करना। कुछ गलत काम करने से लाख गुना बेहतर है कुछ ना करना, क्योंकि गलती से की गई गलतियां तो सुधारी जा सकती हैं, पर जानकर किए गए गलत कामों को सुधारना अक्सर मुश्किल होता है।

हसरत तो सभी की है कि बिताए जिंदगी कुछ सुकून से। हसरत तो सभी की है कि बिताए जिंदगी कुछ सुकून से, पर उस सुकून को पाने की तलाश में दिन रात और बेचैन होते जा रहे हैं। चार बजकर 31 मिनट हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित।

होती होंगी कुछ मजबूरियां रात से लेकर सुबह तक जागने वालों की भी, होती होंगी कुछ मजबूरियां रात से लेकर सुबह तक जागने वालों की भी, वरना सुकून भरी नींद और ताजगी भरी सुबह किसे पसंद नहीं। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

दिन रात उलझे रहते हैं दुनिया से मिलने में कहीं, दिन रात उलझे रहते हैं दुनिया से मिलने में कहीं, खुद से मिलने की फुर्सत ही नहीं। कुछ पल खुद के साथ बैठो तो सही, कुछ पल खुद के साथ बैठो तो सही, फिर इतने लोगों से मिलने की जरूरत ही नहीं। चार बजकर 44 मिनट हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा, मेरे यानी अलचित के साथ।

एसटी बर्मन वॉज वेरी ग्रेट मास्टर एंड इंस्पायर्ड मैन. ज्यादा पिक्चर लेता नहीं था, धरती पर बैठ के कंपोज करता था. सुबह 8 बजे फोन कर देता था, देव शाम को क्या कर रहे हो, आ जाओ, या मैं शाम को आ रहा हूँ. और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही सिटी में 3-3 गाने फाइनलाइज हुए हैं.

सिर्फ काटना ही हो मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी। सिर्फ काटना ही हो मकसद तुम्हारा तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी। पर हम लोग यहाँ पर जिंदगी काटने नहीं, जिंदगी जीने आए हैं। 4:57 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस

0: के नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स की भी श्री मोदी संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी होटल नेग्रेस्को में उनका गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया। श्री मोदी ने इस स्वागत के लिए उनका धन्यवाद किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये अनुभव उनके लिए यादगार रहेगा। उन्होंने कहा कि घर से हजारों मील दूर होने के बावजूद भारतीय समुदाय का भारत के साथ जुड़ाव पहले की ही तरह मजबूत बना हुआ है। स्लोवाकिया में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने ब्रेस्टिलावा में आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। असम के जोरहाट में कल सुबह वायुसेना के AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत की खबर है। विमान नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन समाप्त हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में उन्नत तकनीकों के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आज आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली और हविल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाहन 7:35 तक आयोजित होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले एक दिवसीय मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 से हरा दिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय मुकाबला 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ करेगा। मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए मैचों में 16 से 13 मुकाबले अपने नाम कर चुका है। शुक्रवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप बी के मैच में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कॉटलैंड ने 5 पर 161 रन बनाए। आयरलैंड की टीम 19 ओवर और 1 गेंद में 121 रन पर ही सिमट गई। शुक्रवार को ही प्रतियोगिता के पहले मैच में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रन से हराया। उधर फीफा विश्व कप के तीसरे दिन सैन फ्रांसिस्को बे एरिना स्टेडियम में ग्रुप बी का मैच कतर और स्विट्जरलैंड के बीच ड्रॉ रहा। स्विट्जरलैंड कतर के खिलाफ 1 से आगे था, लेकिन बाद में कतर ने बराबरी का गोल किया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। कल ग्रुप सी में ब्राजील और मोरक्को का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:30 से होगा। अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे ओडिशा तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 5:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं हूं हाजिर आपके साथ, आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम।

जो दोपहर के सूरज में होती है, ठीक वैसे ही किसी भी काम की शुरुआत हमेशा धीरे धीरे ही होती है। कुछ समय लगता है किसी भी चीज को अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। 5:16 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

जीवन का मकसद हमेशा कुछ हासिल करना नहीं होता है। हासिल करने का वो सफर अक्सर हासिल की गई चीज से ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि अक्सर मंजिलों पर पहुंचकर ही एहसास होता है कि मंजिल से ज्यादा मजा तो सफर में था। 5:21 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, कोई और आपसे वादा करे या ना करे, हम आपसे जरूर मिलेंगे।

यूं तो जागने का कोई समय नहीं होता है, यूं तो जागने का कोई समय नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा होता है, पर अगर सूरज की पहली किरण के साथ जागा जाए तो वो सवेरा हमेशा बेहतर ही होता है। 5:27 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।